103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है एफएम शिमला। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के वैशाख मास के 29वीं तिथि तदनुसार 19 मई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:58 और 35 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की ये सभा आरंभ होती है।

103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। 6 बजने को हैं। समाचार के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियो।

0: 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। 6 बजने को हैं। समाचार के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियो।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत नॉर्वे को समझौते के तहत 100 अरब अमेरिकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी कल ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री योनास गहर स्तोरे भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
2: आज नॉर्वे और भारत के बिजनेस और रिसर्च कम्युनिटी के बीच होना, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कुछ साथियों को जो सुना, ये सुनकर ये विश्वास होता है कि हमारी पार्टनरशिप की नींव बहुत ही मजबूत है। ये केवल संभावनाओं की नहीं, ये एक प्रूवन पार्टनरशिप है।
1: प्रधानमंत्री ने भारत की तेज आर्थिक प्रगति, युवा शक्ति, निवेशकों के अनुकूल माहौल और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का उल्लेख करते हुए नॉर्वे से मछली उत्पादन, जहाज निर्माण, हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में अधिक निवेश का आह्वान किया। उन्होंने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की भी सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से भी बातचीत करेंगे।
3: श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया है। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के प्रति प्रतिबद्ध है, लेकिन वो परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में देश में वाटर मेट्रो सेवाओं की शुरुआत को लेकर समीक्षा बैठक की। श्री सोनोवाल ने कहा कि केंद्र सरकार पहले चरण में गुवाहाटी समेत 18 शहरों में वाटर मेट्रो सेवा शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वाटर मेट्रो सेवा पर्यावरण अनुकूल और किफायती सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था होगी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। IPL क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्ले

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। 6:10 हुए हैं। लीजिए पेश है भक्ति संगीत का कार्यक्रम हिमांजलि।

FM शिमला पर आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम हिमांजलि। राम भक्त हनुमान का साथ हो तो हर मुश्किल में भी विश्वास होता है।

कार्यक्रम हिमांजलि में आज बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। 6:40 हुए हैं, आइए सुनते हैं मानस कान।

काक भुशुंडी से श्री रामचरित और स्वयं उनके पूर्व जन्मों की कथा सुनकर पक्षीराज गरुड़ के मन का संशय सर्वथा मिट गया। किंतु एक प्रश्न फिर भी उनके मानस में कौंध किया। प्रश्न था कि संत, ऋषि मुनि, वेद सभी ज्ञान को सर्वाधिक दुर्लभ उपलब्धि बताते हैं, किंतु काकभुशुंडी ज्ञान को भक्ति का सा स्थान नहीं देते। ज्ञान और भक्ति में कितना और क्या अंतर है? काकभुशुंडी ने उत्तर दिया, हे पक्षीराज, ज्ञान और भक्ति में कोई भेद नहीं है, दोनों ही भौतिक दुख दैन्य मिटाने वाले हैं। ज्ञान, वैराग्य, योग, विज्ञान ये सब पुरुष हैं जिसका प्रताप प्रबल होता है। इसके विपरीत माया और भक्ति स्त्री वर्ग की हैं। ज्ञानी मुनि भी चंद्रमुखी हिरण सी आंखों वाली स्त्री का रूप देखकर मोहित हो जाते हैं। उधर माया दूसरी स्त्री अर्थात भक्ति को देखकर सकुचा जाती है। रघुनाथ जी को भक्ति अधिक प्रिय है, अतः माया भक्ति से सदा भयभीत रहती है और उस पर हावी नहीं हो सकती।

अभी आप सुन रहे थे मानस गान। गायक कलाकार थे लता मंगेशकर, सुरेश वाडेकर और साथ ही संगीतकार सतीश भाटिया। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। आइए सुनते हैं देश गान।

0: देशगान अभी आपने सुना। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है एफएम शिमला। लीजिए पेश है एफएम न्यूज हेडलाइंस।
1: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं सरुपमा शर्मा। प्रदेश में 47 शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद राज्य में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हालांकि नगर परिषद व नगर पंचायतों के चुनाव पार्टी चिन्ह पर नहीं करवाए गए, लेकिन फिर भी कांग्रेस व भाजपा दोनों ही प्रमुख दल इन चुनावों में अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दावा किया है कि कुल 47 नगर निकायों में से कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों ने 32 निकायों पर जीत हासिल की है। दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने दावा किया है कि भाजपा ने 47 में से 30 शहरी निकायों पर जीत हासिल की है। उन्होंने कहा कि 25 नगर परिषदों में से 18 और 22 नगर पंचायतों में से 12 पर भाजपा समर्थित प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। शहरी निकायों के चुनाव परिणामों के बाद भाजपा व कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने कहा है कि शहरी निकायों में कांग्रेस पार्टी को करारी हार मिली है। उन्होंने कहा कि इन चुनावी नतीजों से ये स्पष्ट हो गया है कि अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी का सूपड़ा साफ हो जाएगा। कांग्रेस संगठन के प्रदेश महासचिव विनोद जिंटा ने शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि सत्ता के इस सेमीफाइनल में कांग्रेस पार्टी का शानदार प्रदर्शन रहा है। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि हिमाचल को कौशल हब के रूप में विकसित किया जा रहा है और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए बहुआयामी प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने शिमला में विभाग की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में बताया कि प्रदेश में सूक्ष्म लघु उद्यम और स्टार्टअप इको सिस्टम का निर्माण किया जा रहा है। FM न्यूज हेडलाइंस में अभी बस इतना ही। 7:57 पर फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार।
2: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर एफएम शिमला जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।

0: 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। 7 बजने को हैं। हिंदी में समाचार के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियो।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे को 100 अरब अमरीकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी कल ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री योनस गहरस्तुर भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
2: आज नॉर्वे और भारत के बिजनेस और डिजिटल

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे को 100 अरब अमरीकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी कल ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री योनस गहरस्तुर भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: आज नॉर्वे और भारत के बिजनेस और रिसर्च कम्युनिटी के बीच होना ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कुछ साथियों को जो सुना, ये सुनकर ये विश्वास होता है कि हमारी पार्टनरशिप की नींव बहुत ही मजबूत है। ये केवल संभावनाओं की नहीं, ये एक प्रूवन पार्टनरशिप है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह भी किया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज शाम इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेल्ला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से भी बातचीत करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया है। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में देश में वाटर मेट्रो सेवाओं की शुरुआत को लेकर समीक्षा बैठक की। श्री सोनोवाल ने कहा कि केंद्र सरकार पहले चरण में गुवाहाटी समेत 18 शहरों में वाटर मेट्रो सेवा शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वाटर मेट्रो सेवा पर्यावरण के अनुकूल और किफायती सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था बनेगी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने पिछले वर्ष 12 अगस्त को इस समिति का गठन किया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ मुकदमा चलाने को मंजूरी दे दी है। ये कार्रवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश और सीबीआई की जांच के बाद की गई है। संदीप घोष पर मेडिकल कॉलेज में खरीद से जुड़े मामलों में वित्तीय अनियमितताओं का आरोप है। सीबीआई ने भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के तहत मामला दर्ज किया है, जबकि प्रवर्तन निदेशालय भी धन शोधन के पहलुओं की जांच कर रहा है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के अनुरोध पर उन्होंने ईरान पर सैन्य हमले को फिलहाल स्थगित कर दिया है। श्री ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम के लिए गंभीर वार्ता हो रही है, जिसके कारण सैन्य हमलों को स्थगित कर दिया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि जल्द ही ऐसा समझौता हो सकता है जो अमरीका और पश्चिम एशिया के देशों को स्वीकार्य होगा। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से जयपुर में शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: वन जीरो 3.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। 7:05

एक राजकुमार था, उसके 5-7 मित्र घोड़ों पर उसके साथ घूम रहे थे। वहां बहुत सी गुज्जर स्त्रियां दूध, छाछ, दही आदि की बिक्री करने जा रही थीं। राजकुमार को भगवान श्री कृष्ण की याद आ गई कि वे भी दूध दही लूटा करते थे, तो हम भी आज वैसा ही करें, एक तमाशा कर लें, फिर उनको दाम दे देंगे। राजकुमार और उसके साथियों ने उनके मटके फोड़ दिए। गुज्जरियां बेचारी रोने लगीं। उनमें से एक ऐसी थी जिसका मटका टूट गया, छाछ बिखर गई, फिर भी वो हंस रही थी। राजकुमार ने उससे पूछा, तू रोई क्यों नहीं? उसने कहा, महाराज मेरी बात बहुत लंबी है, मैं छाछ गिरने का शोक क्यों करूं? राजकुमार ने उससे कहा, अपनी बात सुनाओ। वो कहने लगी, मैं अमुक शहर के सेठ की पत्नी थी, मेरी गोद में एक बालक था। सेठ कमाने के लिए दूसरे देश में चले गए। वहां के राजा की नीयत खराब थी, मेरी छोटी अवस्था थी और सुंदर रूप था। राजा ने मुझ पर खराब दृष्टि डाली और कहा, अमुक दिन मुझे आकर मिलना। मैंने अपने पति को पत्र भेजा कि जल्दी आओ, मुझ पर ऐसी आफत आई। पति आ गया, उसे सारी बात कही और आपस में सलाह की कि क्या किया जाए। सेठ ने कहा कि तुम राजा को समय दे दो। मैंने राजा के पास समाचार भेज दिया कि आप शहर के बाहर अमुक जगह रात में आ जाओ, पर शर्त यह है कि उस स्थान के मील भर नजदीक में कोई अन्य व्यक्ति ना रहे। राजा ने स्वीकार कर लिया। हम दोनों पति पत्नी घर से निकल गए। मैं रात्रि में वहां तलवार लेकर गई, पति को एक टूटे फूटे खंडहर में छिपने के लिए कह दिया। जब राजा आया तो मैंने तलवार से उसको मार दिया और भागकर पति के पास गई। वहां जाने पर मैंने पति को मरा हुआ पाया, उसको जहरीले सांप ने काट लिया था। फिर तो मैं अकेली वहां से भागी कि अगर पकड़ी गई तो लोग मुझे मार देंगे। लड़का पीछे छूट गया। आगे भागते हुए जंगल आ गया तो वहां डाकू मिल गए। उन लोगों ने मेरे सब गहने छीन लिए और एक वैश्या के घर ले जाकर बेच दिया। उधर दूसरा राजा बैठा तो उसने मेरे लड़के को पालकर बड़ा किया। मेरा लड़का वहीं राज्य में नौकरी करने लगा और इधर वैश्याओं के संघ के प्रभाव से मैं भी वैश्या हो गई। एक बार वो लड़का मेरे यहाँ आया और रात भर रहा। मुझे वहम हो गया कि ये कौन है। सुबह होते ही पूछा तो उसने अपना नाम पता बताया। तब पता लगा, अरे ये तो मेरा ही बेटा है। मुझे बहुत ग्लानि हुई कि मैं क्या थी और कुसंग के प्रभाव से क्या हो गई। पंडितों से पूछा कि ऐसा पाप किसी से हो जाए तो क्या करे। उन्होंने बताया कि चिता जलाकर आग में बैठ जाए। विचार आया कि चिता में बैठ जाऊंगी तो मेरे पीछे गंगा जी में फूल कौन डालेगा, इसलिए गंगा के किनारे लकड़ियां इकट्ठी करके बैठ गई और आग लगा दी। लकड़ियां जलने लगी, इतने में पीछे से बाढ़ आ गई। मैं लकड़ियों के साथ उसमें बह गई, आग बुझ गई और एक लकड़ी पर बैठे बैठे एक गांव के किनारे मैं पहुंच गई। उस गांव में गुज्जर बसते थे। अब वहां उनका दूध दही बिक्री करके काम चलाती हूं। आज छाछ लेकर आई थी, छाछ गिर गई तो अब इसकी चिंता क्या करूं। जीवन में ऐसी कितनी घटनाएं घटी हैं, क्या क्या दशा हुई है, अब थोड़े से नुकसान में क्या चिंता करूं। ऐसी बातें तो होती ही रहती हैं और बीतती रहती हैं। अब छाछ गिर गई तो क्या हो गया, हमारे ना जाने कितने जन्म हुए हैं, उनमें क्या क्या दशा हुई है। उनमें कभी बेटा मर गया, कभी पति मर गया, कभी पत्नी मर गई, कभी धन आया, कभी धन चला गया। ये सब कई बार मिले और कई बार बिछड़े। हवा चलती है तो कहां कहां की घास आकर इकट्ठा हो जाती है और दूसरे झोंके में सब अलग अलग हो जाता है। इसमें नई बात क्या हो गई। संसार में सब आने जाने वाले हैं, इनके लिए चिंता क्यों करूं।

7:10 हुए हैं, तो चलिए अब आपको बता दें कि आज आप FM शिमला पर अब से लेकर रात 11:10 तक कौन कौन से कार्यक्रम और किस समय पर सुनेंगे। 7:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग शिमला। FM न्यूज हेडलाइंस आप सुनते हैं 7:57, 8:30 और 9:57 पर। प्रादेशिक समाचार आप रोजाना सुनते हैं 9:20, 11:00, 3:00, 6:00 और 7:45 पर। हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे 8:00, 12:00, 1:00, 2:15, 8:45 और 11:00।

अंग्रेजी में समाचार सुबह 8:15, दोपहर 12:05, 1:05, शाम 7:05, रात 9 बजे और रात 11:05 पर। लोक संगीत का आनंद आप लेंगे सुबह 8:32 और 11:30 पर। फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं सुबह 8:45 पर।

10 बजे आप फिल्म संगीत सुनेंगे, दोपहर 12:10, 4 बजे रात 8:30 और दोपहर 3:10 पर ओल्ड हिट्स फिल्म म्यूजिक।

पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम पेश किया जाएगा 11:05 पर। महिला सम्मेलन कार्यक्रम आप सुनेंगे 12:20 पर। सबरंग कार्यक्रम पेश किया जाएगा 2:00। खेल खिलाड़ी कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 2:30 पर।

युववाणी कार्यक्रम पेश किया जाएगा 3:30 पर। हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम के अंतर्गत शाम 4:20 पर आप सुनेंगे सिरमौरी कार्यक्रम। महास्वी कार्यक्रम पेश होगा 4:50 पर। 5:20 पर आप सुनेंगे स्पीति कार्यक्रम। कांगड़ी कार्यक्रम पेश किया जाएगा 6:05 पर। पर आप सुनेंगे लाहौली कार्यक्रम। कृषि जगत कार्यक्रम आप सुनते हैं शाम 7:10 पर। भूले बिसरे गीत पेश किए जाएंगे रात 8:00। एक फिल्म से कार्यक्रम आप सुन सकते हैं रात 9:15 पर। 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम दिल की आवाज भी सुन। गजलों का आनंद आप लेंगे रात 10:00 और सदाबहार नगमे आप सुनेंगे 10:30 पर। इन तमाम कार्यक्रमों को सुनने के लिए आप सुनते रहिए FM शिमला 103.7 MHz पर।

सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला।

103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। 7:15 हो चुके हैं। ये समय है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग शिमला का। सभी सुनने वालों को आपकी रेडियो हमसफर रीना वर्मा का नमस्कार। तो चलिए करते हैं कार्यक्रम का आगाज इस विचार के साथ। जिंदगी में खुश रहना है तो हर बात को दिल से लगाना छोड़ दीजिए। लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, अगर हम हर बात पर ध्यान देंगे तो अपनी खुशियों से दूर हो जाएंगे। खुद पर भरोसा रखिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए और हर दिन को मुस्कुरा कर जीना सीखिए, क्योंकि सच्ची खुशी वहीं मिलती है जहां मन शांत हो और आत्मविश्वास मजबूत हो।

0: हिमाचल के युवाओं, अब सिर्फ सोशल मीडिया पर ओपिनियन देने का नहीं, वोट देने का भी वक्त आ गया है।
1: इस पंचायत इलेक्शन में 50 लाख से ज्यादा वोटर्स अपने मत का अधिकार इस्तेमाल करेंगे और हजारों फर्स्ट टाइम वोटर्स भी बनेंगे इस बदलाव का हिस्सा। 26 मई, 28 मई और 30 मई, याद रखिए ये तारीखें।
0: आपकी एक वोट आपके गाँव की सोच, विकास और लीडरशिप को तय करेगी। तो निकलिए घर से और बनिए जिम्मेदार नागरिक। पंचायत चुनाव 2026, वोट जरूर करें।
2: FM शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग शिमला। जिंदगी में हर दिन एक जैसा नहीं होता है। कभी खुशियों की धूप खिलती है तो कभी परेशानियों के बादल छा जाते हैं, लेकिन इन सब के बीच अगर कुछ हमें हर हाल में मजबूत बनाए रखता है तो वो है एक प्यारी सी मुस्कान। मुस्कान वो ताकत है जो बिना कुछ कहे भी दिलों को करीब ले आती है। तो बस मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए FM शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम चल रहा है गुड मॉर्निंग शिमला।

0: हिमाचल में फिर से सज गया है लोकतंत्र का महापर्व, पंचायत चुनाव 2026।
1: 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में होने जा रहे हैं पंचायत इलेक्शंस, जहां आपकी एक वोट तय करेगी आपके गांव का कल।
0: सड़क, पानी, सफाई, रोजगार और गांव के विकास से जुड़े फैसलों में आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है।
1: इस बार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और चुनिएगा ईमानदार, योग्य और जिम्मेदार प्रतिनिधि। हिमाचल पंचायत इलेक्शंस 2026, मजबूत पंचायत, मजबूत हिमाचल।
2: FM शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग शिमला। कभी कभी जिंदगी की भागदौड़ में कुछ पल ऐसे आते हैं जब पुरानी यादें अचानक दिल के दरवाजे पर दस्तक दे जाती है। बचपन की शरारतें, दोस्तों की बातें और वो खूबसूरत पल जो आज भी हमारे चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं।

0: गांव की पहचान होती है उसकी मजबूत पंचायत से, और पंचायत मजबूत बनती है आपके एक वोट से।
1: क्योंकि ईमानदारी और बिना किसी के प्रभाव में आए दिए गए आपके वोट ही तय होते हैं गांव, और बनती है सड़क, पानी, स्वच्छता और रोजगार संबंधी नीतियाँ।
0: इसीलिए 26 मई, 28 मई और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपनी भागीदारी निभाएं।
1: अपने परिवार और गांव वालों को भी जागरूक बनाएं और 100% मतदान के संकल्प को हासिल करने का लक्ष्य बनाएं।
0: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
2: FM शिमला 103.7 MHz पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग शिमला। यादें कभी पुरानी नहीं होती, वो बस दिल के किसी कोने में खामोशी से मुस्कुराती रहती हैं। यादें वो अनमोल

खजाना है जिन्हें ना कोई चुरा सकता है और ना ही वक्त मिटा सकता है। कभी किसी तस्वीर में तो कभी किसी छोटी सी बात में यादें फिर से जिंदा हो जाती हैं। जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा शायद यादें ही होती हैं, क्योंकि वक्त गुजर जाता है, लोग बदल जाते हैं, लेकिन यादें हमेशा दिल के करीब रहती है। इसलिए कोशिश करें कि हर दिन कुछ अच्छे पल बनाएं, कुछ अच्छी बातें करें, ताकि कल जब उन्हें हम याद करें तो दिल फिर से मुस्कुरा उठे।

हर दिन अपने साथ कुछ नई यादें, नई सीख और इतिहास के कई अनमोल पन्ने लेकर आता है। 19 मई का इतिहास भी कुछ ऐसा ही है। सन 1961 की अगर हम बात करें तो रूस ने शुक्र ग्रह की ओर वेनेरा 1 अंतरिक्ष यान भेजा था और ये अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में एक बड़ा कदम माना गया। सन 1971 में मंगल 2 मंगल कार्यक्रम की मानव रहित अंतरिक्ष जांच सोवियत संघ द्वारा आज ही के दिन शुरू की गई थी। मार्स 2 का लैंडर मंगल की सतह तक पहुंचने वाला पहला मानव निर्मित वस्तु बन गया। सन 1971 में रूस ने मार्स 2 प्रोग्राम लॉन्च किया था और 1976 की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने सोने के स्वामित्व को कानूनी मान्यता दी थी। सन 2011 में 98 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा हुई थी।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। तो चलिए हम आपको एक बार फिर याद दिला दें, आज सुबह 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम कुदरत के रंग। राग छाया कार्यक्रम आप सुन सकते हैं सुबह 10:00। पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम पेश होगा 11:05 पर। महिला सम्मेलन कार्यक्रम आप सुनेंगे 12:20 पर। सबरंग कार्यक्रम पेश किया जाएगा 2:00 और फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे 1:10 पर। खेल खिलाड़ी कार्यक्रम आप सुनेंगे 2:30 पर।

0: एफएम शिमला पर लीजिए पेश है एफएम न्यूज हेडलाइंस।
1: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं सरुपमा शर्मा। केंद्र सरकार देश में पेट्रोल, डीजल व एलपीजी की आपूर्ति सुचारू बनाए रखने के लिए ठोस कदम उठा रही है और सभी राज्यों में इनकी आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में बताया कि पिछले लगभग अढ़ाई महीने से पश्चिमी एशिया संकट जारी है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अभी भी स्थिति सामान्य नहीं हुई है। राजधानी शिमला में सहब सोसाइटी से जुड़े स्थाफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। इस हड़ताल के कारण शहर में सफाई व्यवस्था चरमरा गई है और शहर में जगह जगह कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं। सहब सोसाइटी कर्मचारी यूनियन के उपाध्यक्ष अमित भाटिया ने कहा कि सोसाइटी के लगभग 800 कर्मचारी 10% वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी और लू के संबंध में एक व्यापक जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया है। इसमें पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, भीषण गर्मी के समय धूप में निकलने से बचने, हल्के सूती कपड़े पहनने और मौसमी फलों व इलेक्ट्रोलाइट से भरपूर तरल पदार्थों के सेवन पर बल दिया गया है। सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि केंद्रीय बजट 2026-27 में गोविंद सागर और महाराणा प्रताप सागर को राष्ट्रीय जलाशय विकास कार्यक्रम में शामिल किया जाना हिमाचल के लिए बड़ी उपलब्धि है। गौरतलब है कि भाखड़ा बांध और पौंग बांध को केंद्रीय बजट 2026-27 के तहत देश भर में चिन्हित 400 जलाशयों की सूची में शामिल किया गया है, जिनका एकीकृत विकास किया जाएगा। थल सेना अग्निवीर भर्ती 2025-26 के तहत हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना जिला के युवाओं के लिए आयोजित अग्निवीर लिपिक और स्टोर कीपर की भर्ती का फाइनल परिणाम घोषित कर दिया गया है। ये परिणाम वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर उपलब्ध है। सभी सफल उम्मीदवारों से आज सुबह 9 बजे थल सेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर में आगामी औपचारिकताओं के लिए रिपोर्ट करने की अपील की गई है। FM न्यूज हेडलाइंस में अभी बस इतना ही। नमस्कार।
2: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर एफएम शिमला जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।
1: आठ बजने को है समाचार के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियो।

मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत ईएफटीए समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी 5 नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का मजबूत आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को रिपोर्ट सौंपी। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई।

0: पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे को व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश लक्ष्य को प्राप्त करने और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करने के लिए प्रयास करने चाहिए। प्रधानमंत्री कल ओस्लो में आयोजित भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। क्राउन प्रिंस हकॉन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनिस गहरस्तुर भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते टीईपीए के लागू होने के बाद द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एफ्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत के हरित परिवर्तन पर बल देते हुए देश के विकास, बढ़ती ऊर्जा मांग, जलवायु प्रतिबद्धताओं और नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रिड अवसंरचना, हरित हाइड्रोजन और स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार का उल्लेख किया।
1: 2030 तक हमने 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी और 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा है। क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट नॉर्वे वेल्थ फंड की भी प्राथमिकता है। मैं नॉर्वे को भारत के क्लीन एनर्जी फ्यूचर में अहम हिस्सेदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारिक समुदायों से नई साझेदारियां बनाने, सहयोग के उभरते क्षेत्रों की पहचान करने और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने का आग्रह किया। शिखर सम्मेलन में 50 से अधिक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और भारत तथा नॉर्वे के व्यापार और अनुसंधान समुदायों के 250 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम सिबी जॉर्ज ने प्रेस वार्ता में इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के हरित और समुद्री अर्थव्यवस्था में साझेदारी से अधिक निवेश आएगा, रोजगार सृजित होगा और भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा सहित सतत ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा।
2: Recognizing the ambitious
3: भारत के महत्वाकांक्षी समुद्री अमृतकाल विजन 2047 को मान्यता देते हुए दोनों नेताओं ने जहाज निर्माण, हरित जहाज रानी, जहाज पुनर्चक्रण, बंदरगाह अवसंरचना का विकास, नाविकों का प्रशिक्षण, मत्स्य पालन, जलीय कृषि और बंदरगाहों के हरितकरण सहित समुद्री अर्थव्यवस्था साझेदारी को बढ़ाने का आह्वान किया है।
2: ग्रीनिंग ऑफ पोर्ट्स।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। अधिक जानकारी ओस्लो से हमारी संवाददाता से।
4: भारत और 5 नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। टीईपीए लागू होने के परिप्रेक्ष्य में यह शिखर सम्मेलन व्यापार और निवेश संबंधों को अधिक मजबूत करने का प्रयास करेगा। वर्तमान में इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य 19 अरब डॉलर है। तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेल्ला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से बातचीत भी करेंगे।

0: रोम पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में बसे भारतीय समुदाय के सदस्यों से मुलाकात करेंगे, जिनकी यहां उल्लेखनीय उपस्थिति है। वे भारतीय मूल के बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखेंगे, जिसमें प्रवासी भारतीय समुदाय के बच्चों द्वारा गाया गया एक पंजाबी लोकगीत शामिल है। ये बच्चे रोम के पास स्थित फोंदी कस्बे से आते हैं, जहाँ उनके माता पिता कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। ये पंजाबी लोक शैली का गीत एक जट किसान के गर्व, शक्ति और उत्साहपूर्ण जीवन का उत्सव मनाता है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।
4: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पिछले 6 दशकों के दौरान नक्सलवाद के कारण बस्तर को बड़े पैमाने पर जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अगले 5 वर्षों में करेगी। उन्होंने कहा कि अगले 1.5 वर्षों के दौरान बस्तर में स्थापित सुरक्षा बलों के करीब 200 कैंपों में से 70 कैंपों को जन सेवा केंद्रों में बदलकर उन्हें आदिवासी कल्याण का केंद्र बनाया जाएगा। इन सेवा केंद्रों में बैंकिंग, आधार, राशन कार्ड, कौशल प्रशिक्षण सहित केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। एक रिपोर्ट।
5: उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा पिछले वर्ष 12 अगस्त को एक समिति का गठन किया गया था। रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में उचित समय पर प्रस्तुत किया जाएगा। न्यायाधीश जांच समिति के पीठासीन अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर और कर्नाटक उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता बीवी आचार्य ने श्री बिरला को न्यायाधीश जांच समिति की रिपोर्ट सौंपी। आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय को मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आधिकारिक आदेश जारी कर निदेशालय को घोष के खिलाफ कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। श्री अधिकारी ने कहा कि पूर्व की तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इस मामले की जांच प्रक्रिया को लंबे समय तक जबरन और अनैतिक रूप से रोक रखा था। ये मामला एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या से भी संबंधित है। सीबीआई ने 29 नवंबर 2025 को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में आरोप पत्र दाखिल किया था। अमरीका ने समुद्र में पहले से मौजूद रूस के तेल पर प्रतिबंधों की छूट की अवधि को एक महीने के लिए बढ़ा दिया है। अमरीका के वित्त विभाग ने कल एक आदेश जारी कर 17 अप्रैल या उससे पहले समुद्र में फंसे रूसी तेल पर प्रतिबंधों से मिली छूट की समय सीमा को

0: जून तक बढ़ा दिया है। इससे पहले अमेरिका ने 5 मार्च को एक महीने के लिए रूस का तेल खरीदने पर भारत को प्रतिबंधों से छूट दी थी। कुछ दिनों बाद ये छूट अन्य देशों को भी दी गई, जो 11 अप्रैल को समाप्त हो गई थी। अमेरिका इस वर्ष 30 और 31 अक्टूबर को जॉर्जिया के अटलांटा शहर में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कल घोषणा की कि इस बैठक में दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के विदेश मंत्री शामिल होंगे, जिससे वैश्विक स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए G20 के मुख्य उद्देश्यों को आगे बढ़ाया जा सके। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। चेन्नई में पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 19 ओवर में 5 विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आज जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से शाम 7:30 बजे से होगा। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में दिन के समय मौसम गर्म और उमस भरा रहने की संभावना है। राजस्थान, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज रात भी गर्मी बने रहने का अनुमान है। जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में आज बादल गरजने के साथ बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपना शीर्षक बनाया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका प्रतिबंध हटाए या लगाकर रखे, रूस से तेल खरीद जारी रखेगा भारत, सरकार की दो टूक, अपने देश की ऊर्जा जरूरत के हिसाब से तेल खरीदेंगे। हिंदुस्तान ने अमरीकी मीडिया रिपोर्ट के दावे को प्रमुखता दी है। ईरान का नया शांति प्रस्ताव भी खारिज। पंजाब केसरी ने लिखा है, ट्रंप ने युद्ध पूरी तरह खत्म करने के लिए रखी 5 शर्तें, जवाब में तेहरान ने भी 5 शर्तों की सूची थमाई। देशबंधु की खबर है, ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर लागू की नई व्यवस्था, स्ट्रेट के प्रबंधन के लिए नया निकाय बनाने की घोषणा की गई है। नवभारत टाइम्स के अनुसार, नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने सोमवार को महाराष्ट्र के लातूर से 10वीं गिरफ्तारी की। सीबीआई का दावा, नीट से 10 दिन पहले मिले थे सवाल। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा पर विश्लेषण दिया है। नए समीकरणों की उम्मीद शीर्षक से पत्र लिखता है, गहरे भू राजनीतिक संकटों और आर्थिक अनिश्चितताओं के दौर में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की 6 दिवसीय यात्रा सिर्फ औपचारिक राजनयिक दौरा भर नहीं है, बल्कि इसके व्यापक कूटनीतिक, आर्थिक और सामरिक निहितार्थ भी हैं। दैनिक भास्कर की विशेष खबर ध्यान आकर्षित करती है, स्मार्ट से उबे लोग, बेसिक चीजों में सुकून की तलाश, जो गैजेट चुपचाप काम करे अब वही ज्यादा समझदार।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत EFTA समझौते के तहत $100 अरब अमरीके निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी 5 नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉल्स फॉर $100 billion इन्वेस्टमेंट एंड 1 million जॉब्स अंडर इंडिया EFTA एग्रीमेंट एट बिजनेस एंड रिसर्च समिट इन ओस्लो, नॉर्वे। Prime Minister Modi to meet leaders of all 5 Nordic nations at 3rd India-Nordic summit today. Defence Minister Rajnath Singh describes Operation Sindoor as testament to India's transformation into strong, confident and capable nation. Judges Inquiry Committee investigating allegations against Justice Yashwant Verma submits report to Lok Sabha Speaker Om Birla. West Bengal government allows ED to prosecute former principal of RG

0: विद्यार्थियों की शारीरिक उपस्थिति न्यूनतम 75% नहीं होगी, उन्हें वार्षिक परीक्षाओं में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। भाजपा ने पंचायती राज एवं नगर निकाय चुनावों में पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए गए नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। नालागढ़ पंजेरा मंडल से जिला परिषद चुनाव में किसान मोर्चा जिला महामंत्री ज्ञान ठाकुर द्वारा पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के विरुद्ध चुनाव लड़ने और किसान मोर्चा जिला प्रवक्ता अमित राणा के खिलाफ पार्टी विरोधी गतिविधियों के बाद इन दोनों नेताओं को पार्टी से 6 वर्षों के लिए निलंबित कर दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने अनुशासन समिति की सिफारिश पर यह निर्णय लिया है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT हमीरपुर में कंप्यूटर विज्ञान व अभियांत्रिकी विभाग द्वारा डीप लर्निंग के शोध अनुप्रयोग विषय पर 5 दिवसीय ऑनलाइन अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम ESTC का आयोजन किया जा रहा है। 18 से 22 मई तक आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षकों, शोधार्थियों और विद्यार्थियों को डीप लर्निंग के शोध एवं व्यवहारिक उपयोगों की जानकारी प्रदान करना है। FM न्यूज़ हेडलाइंस में अभी बस इतना ही। नमस्कार।
1: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 MHz FM शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 MHz FM शिमला।
2: वन जीरो 3.7 MHz पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। लीजिए पेश है लोक संगीत। शुरुआत करते हैं बसंत लाल ठाकुर और रेखा देवी के गाए इस लोक गीत के साथ।

लोक संगीत में अभी बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। 8:45 हुए हैं। लीजिए पेश है फिल्म संगीत। मन फिल्म में लीजिए सुनते हैं उदित नारायण को। गीतकार हैं समीर, संगीतकार संजीव दर्शन।

ओम शांति ओम फिल्म में लीजिए सुनिए श्रेया घोषाल और अभिजीत को। शब्द रचना है जावेद अख्तर की, संगीत रचना विशाल और शेखर की।

ओम शांति ओम फिल्म में लीजिए सुनिए श्रेया घोषाल और अभिजीत को। शब्द रचना है जावेद अख्तर की, संगीत रचना विशाल और शेखर की।

धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन

गोलमाल फिल्म में अभी आपने शेखर और स्नेहा पंत को सुना। गीतकार थे विशाल डजलानी, संगीतकार विशाल और शेखर। फिल्म संगीत में अभी बस इतना ही। वन जीरो 3.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। तो चलिए अब आपको बता दें, आज आकाशवाणी शिमला से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के

मुख्य आकर्षण। 9:30 पर आप सुनेंगे सुरबेला कार्यक्रम। रिमझिम कार्यक्रम का आनंद आप लेंगे सुबह 10:00। लोक संगीत आप सुन सकते हैं 11:05 रात 8:00 धारा रेगेत। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग पेश किया जाएगा 11:30 पर। फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे 12:10 और रात 8:15 पर। महिला सम्मेलन कार्यक्रम आप सुनेंगे 12:20 पर। सैनिकों के लिए कार्यक्रम आप सुनते हैं 1:10 पर। सुनहरी किरणें कार्यक्रम आप सुनेंगे 2:00। दो बजकर 30 पर कार्यक्रम खेल खिलाड़ी आप सुन सकते हैं। कृषि जगत कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:10 पर। सुगम संगीत आप सुन सकते हैं 8:30 पर। गजलों पर आधारित कार्यक्रम गुलदस्ता पेश किया जाएगा 9:15 पर। 9:30 पर मनी टॉक, 9:45 पर मंथन कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। आज 10:00 आप सुनेंगे नाटक विनाश काले विपरीत बुद्धि, लेखक डॉक्टर सुषमा कौशल, प्रस्तुति अक्षर सिंह परमार की होगी। 10:30 पर सुरबहार पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम पेश किया जाएगा। यह आज आकाशवाणी शिमला से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के मुख्य आकर्षण।

0: शिविर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार जिन्हें आप आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ एफएम शिमला से भी सुन सकेंगे। प्रादेशिक समाचार डीटीएस सेवा और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। इन संदेश के बाद
1: चुनाव सिर्फ एक शब्द नहीं, ये है सच्चे लोकतंत्र की नींव और मतदान है एक जागरूक नागरिक की पहचान जिसे इस्तेमाल कर वो तय करते हैं अपने क्षेत्र राज्य और देश की दशा व दिशा।
2: तो आइए अपनी जिम्मेदारी निभाएं, आगामी पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लें और गांव के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।
1: आपका एक एक वोट तय करेगा पंचायत का भविष्य। तो निर्धारित तिथि को अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर सोच समझ कर और बिना किसी प्रभाव के मतदान जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी ही नहीं अधिकार है।
2: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रियंका ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज। 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में होगा मतदान। प्रदेश में शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद कांग्रेस व भाजपा अपने अपनी जीत के कर रहे दावे। प्रदेश हाईकोर्ट ने ईंधन और सरकारी खर्च बचाने के लिए लिया अहम फैसला। 50% कर्मचारी सप्ताह में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम पर रहेंगे। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना गरीब परिवारों के लिए हो रही कारगर साबित। और राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ। मौसम विभाग ने मैदानी क्षेत्रों में आज लू चलने का येलो अलर्ट किया जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है। सभी उम्मीदवार मतदाताओं को रिझाने के लिए अपनी प्राथमिकताएं उनके सामने रखकर वोट मांग रहे हैं। मतदान 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में होगा। इस बीच पंचायती राज चुनाव के सफल और निष्पक्ष संचालन के लिए चुनाव अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण

0: प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस दौरान मतदान प्रक्रिया, मतदान सामग्री प्रबंधन और मतदान केंद्रों पर पालन किए जाने वाले नियमों की जानकारी दी जा रही है। इसके साथ ही चुनाव कर्मियों को मतपेटी के उपयोग और चुनाव प्रक्रिया का अभ्यास भी करवाया जा रहा है। प्रदेश में 47 शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद कांग्रेस व भाजपा दोनों ही प्रमुख दल इन चुनावों में अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे मंडी जिला संवाददाता।
1: मंडी जिला के शहरी निकाय चुनावों में इस बार हिमाचल की राजनीति में बड़ा संदेश दिया है। भाजपा के मजबूत गढ़ माने जाने वाले मंडी में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों के बेहतर प्रदर्शन ने सियासी हलकों में नई बहस छेड़ दी है। सबसे बड़ा झटका भाजपा को नेरचौक में लगा, जहां कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों ने एक तरफा जीत दर्ज करते हुए 9 में से 8 वार्ड अपने नाम किए। वहीं सुंदरनगर में भाजपा ने जोरदार वापसी करते हुए 9 सीटों पर जीत हासिल कर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी। जिले के 6 शहरी निकायों में कुल 48 वार्डों में कांग्रेस समर्थित 23, भाजपा समर्थित 19 और 6 निर्दलीय उम्मीदवार विजय रहे हैं। करसोग और रिवालसर में भी कांग्रेस ने बढ़त बनाई, जबकि जोगिंदरनगर और सुंदरनगर में भाजपा पक्ष में रहे। अब नजर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनावों पर है, जहां निर्दलीय पार्षद सत्ता की चाबी बन सकते हैं। उधर पूरे प्रदेश की नजरें अब 31 मई को आने वाले नगर निगम चुनाव परिणामों पर टिक गई हैं। आकाशवाणी समाचारों के लिए मंडी से मैं मुनीश सूद।
0: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ईंधन और सरकारी खर्च बचाने के लिए अहम फैसला लिया है। अब हाईकोर्ट के न्यायाधीश दफ्तर आने जाने के लिए कारपूलिंग करेंगे और इसके साथ ही 50% कर्मचारी सप्ताह में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम पर रहेंगे। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे शिमला जिला संवाददाता।
2: केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायाधीश भी कारपूलिंग करेंगे, यानी एक ही गाड़ी में कई न्यायाधीश दफ्तर आएंगे ताकि पेट्रोल की खपत कम हो सके। साथ ही हाई कोर्ट के 50% कर्मचारियों को सप्ताह में अधिकतम 2 दिन घर से काम करने की सुविधा दी गई है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधवालिया ने इस व्यवस्था को तुरंत लागू करने के आदेश दिए हैं। इन आदेशों के बाद रजिस्ट्रार जनरल की ओर से आधिकारिक सर्कुलर भी जारी किया गया है। सर्कुलर के अनुसार बढ़ते खर्चों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दी है। इसके तहत रजिस्ट्री की प्रत्येक शाखा या सेक्शन का 50% स्टाफ हफ्ते में अधिकतम 2 दिन घर से काम करेगा। कामकाज प्रभावित ना हो इसके लिए बाकी का 50% स्टाफ ऑफिस में मौजूद रहेगा। रजिस्ट्रार को सप्ताह शुरू होने से पहले साप्ताहिक रोस्टर तैयार करने के निर्देश जारी किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
0: हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक गुणवत्ता और अनुशासन बनाए रखने के लिए सभी सरकारी स्कूलों को हर कक्षा में न्यूनतम 75% उपस्थिति अनिवार्य करने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों की शिक्षा वार्षिक परिणामों में सुधार करना है। जिन विद्यार्थियों की शारीरिक उपस्थिति न्यूनतम 75% नहीं होगी, उन्हें वार्षिक परीक्षाओं में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे हर महीने कम उपस्थिति वाले छात्रों की सूची नोटिस बोर्ड पर लगाएं और उनके अभिभावकों को समय रहते चेतावनी भेजे। आदेशों की अवहेलना करने वाले स्कूलों और अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना गरीब परिवारों के लिए कारगर साबित हो रही है। इसी कड़ी में मंडी जिला के माघेल गांव के रहने वाले एक बेहद गरीब मरीज नेता सिंह के लिए यह योजना किसी वरदान से कम नहीं रही। अधिक जानकारी के साथ हमारी सहयोगी।
3: आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवार के लिए अस्पताल का खर्च उठाना संभव नहीं था। ऐसे में जोनल अस्पताल मंडी में आयुष्मान मित्र ने उनका गोल्डन कार्ड बनाया, जिसके बाद उनका ऑपरेशन, दवाइयां और पूरा इलाज मुफ्त में किया गया। नेत्र सिंह अचानक हर्निया की बीमारी से पीड़ित हो गए थे, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें तुरंत सर्जरी करवाने की सलाह दी। मंडी जिले में अब तक 85% से ज्यादा परिवारों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और जिले के 14 अस्पताल इस योजना से जुड़े हैं। स्वास्थ्य विभाग अब आयुष्मान आपके द्वार अभियान के तहत दूर दराज क्षेत्रों में भी लोगों के कार्ड बना रहा है, ताकि हर जरूरतमंद तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिल सके। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं सरूपमा शर्मा।
0: भाजपा ने पंचायती राज एवं नगर निकाय चुनावों में पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए गए नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। भाजपा द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इन चुनावों के लिए गठित अनुशासन समिति को नालागढ़ पंजेहरा मंडल से जिला परिषद चुनाव में किसान मोर्चा, जिला महामंत्री ज्ञान ठाकुर द्वारा पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के विरुद्ध चुनाव लड़ने तथा किसान मोर्चा जिला प्रवक्ता अमित राणा के खिलाफ पार्टी विरोधी गतिविधियों की शिकायत प्राप्त हुई थी। भाजपा ने इन दोनों नेताओं को

पार्टी से 6 वर्षों के लिए निलंबित कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने अनुशासन समिति की सिफारिश पर यह निर्णय लिया है। भाजपा ने स्पष्ट किया कि संगठन में अनुशासन सर्वोपरि और पार्टी विरोधी गतिविधियों को किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया की अध्यक्षता में कल रोपवे एवं तीव्र परिवहन विकास निगम की बैठक आयोजित की गई, जिसमें नड्डी जीपलाइन परियोजना की प्रगति एवं विभिन्न विभागीय औपचारिकताओं को लेकर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। बैठक में अधिकारियों द्वारा परियोजना से संबंधित वर्तमान स्थिति की विस्तृत जानकारी दी गई। पठानिया ने उपायुक्त कांगड़ा को NAC प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही संबंधित विभागों को आवश्यक NOC शीघ्र जारी करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि नड्डी जिपलाइन परियोजना में साहसिक पर्यटन को नई पहचान प्रदान करेगी और इससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। यह परियोजना प्रदेश को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर और अधिक सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज भी मौसम साफ बना हुआ है। प्रदेश में मैदानी इलाकों सहित पहाड़ों पर भी तपिश बढ़ने लगी है। राज्यों के कई क्षेत्रों में तापमान तेजी से बढ़ रहा है। ऊना का अधिकतम तापमान लगभग 40 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने मैदानी जिलों कांगड़ा, बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी और सिरमौर में आज लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि जनजातीय जिलों किन्नौर और लाहौल स्पीति में बारिश होने की संभावना जताई है। अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला के शब्द है, 9 शहरी निकायों में निर्दलीय तय करेंगे अध्यक्ष उपाध्यक्ष की कुर्सी, टिकी निगाहें। दैनिक भास्कर ने निर्विरोध चुनी गई 131 पंचायतों को राज्य सरकार देगी 25-25 लाख रुपये। दैनिक जागरण के अनुसार कुनिहार में 2 बैलेट पेपर गायब, ARO सहित 8 कर्मी चुनाव ड्यूटी से हटाए, आपदा में मौत पर अब मिलेंगे 10 लाख। शीर्षक से दिव्य हिमाचल ने लिखा है, केंद्र सरकार बदलने जारी राहत नियमावली। मौसम से जुड़ी खबर को पंजाब केसरी ने शीर्षक दिया है, शिमला में सीजन का सबसे गर्म दिन, ऊना में पारा 39.7 डिग्री। हिमाचल दस्तक के नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हवाले से लिखा है, कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों ने 32 निकायों में जीत की हासिल। दैनिक सवेरा टाइम्स के अनुसार हिमाचल बनेगा देश का पहला पोषण नीति वाला राज्य, 31 मई तक नीति तैयार करने के निर्देश। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज, 26, 28 और 30 मई को 3 चरणों में होगा मतदान। प्रदेश में शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद कांग्रेस व भाजपा अपनी अपनी जीत के कर रहे दावे। प्रदेश हाईकोर्ट ने ईंधन और सरकारी खर्च बचाने के लिए लिया अहम फैसला, 50% कर्मचारी सप्ताह में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम पर रहेंगे। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना गरीब परिवारों के लिए हो रही कारगर साबित। और राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ, मौसम विभाग ने मैदानी क्षेत्रों में आज लू चलने का येलो अलर्ट किया जारी। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।

0: शिमला की वादियों से आपके दिलों तक आ गया है आपका अपना भरोसेमंद साथी 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी FM शिमला।
1: कहाँ ये यादियाँ थी तेरे मिलने से पहले।
0: खबरें, संगीत, संस्कृति और मनोरंजन का बेमिसाल

0: पर्यटन की बात हो या संस्कृति की, हर मुसाफिर की जो आवाज बनता है, जुड़िए उस आवाज से जो हिमालय की गूंज जैसी है। आकाशवाणी FM शिमला, शुभवाणी लाभवाणी, ये है जन जन की वाणी, आकाशवाणी।
1: MHz पर आप सुन रहे हैं FM शिमला, कुदरत के रंग कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपकी रेडियो

हमसफर रीना वर्मा। हर सुबह सूरज की पहली किरण से लेकर रात की ठंडी चांदनी तक, हर फूल की मुस्कान से लेकर पेड़ की छांव तक, हर चीज जो हमें बिना कुछ मांगे मिलती है वही है कुदरत। कुदरत अपने हर रंग में हमें सुकून, जीवन और संदेश देती है।

और देखिए शिमला अपने आप में जितना खूबसूरत है ना, उतना ही खूबसूरत है शिमला जिले का नारकंडा शहर। हिमाचल प्रदेश का खूबसूरत हिल स्टेशन है। यहाँ पर कम भीड़ और ज़्यादा ताजगी मिलेगी, साथ ही यहाँ घूमने के लिए काफ़ी कुछ है और यहाँ के प्राकृतिक नज़ारे तो आपको लुभाते ही हैं। जी हाँ, इस कार्यक्रम में आज हम आपको सैर करवाएंगे नारकंडा की।

नारकंडा में आपको प्राकृतिक सौंदर्य के साथ ही कई प्राचीन मंदिर देखने को मिलेंगे और एक से बढ़कर एक ऊंची और खूबसूरत पहाड़ियां, बागान यहां पर आप देख सकते हैं। यहां पर महामाया मंदिर, हाटूपेक थानेदार मंदिर है और सेब के बगीचे और झरने, घाटियां शामिल हैं।

घने जंगल, ठंडी हवाएं और पहाड़ों की शांत फिजा हर किसी का दिल जीत लेती है। शिमला से कुछ दूरी पर स्थित ये सुंदर हिल स्टेशन प्रकृति प्रेमियों और सुकून की तलाश करने वालों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। जी हाँ, नारकंडा सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि भागदौड़ भरी जिंदगी से कुछ पल सुकून से चुराने की जगह है। और अगर आप इन दिनों शिमला आए हैं तो यहाँ से आप नारकंडा का प्रोग्राम बहुत आसानी से बना सकते हैं।

जी हाँ, हर कोई कुदरत के इन हसीन वादियों का दीवाना है। यहाँ पर स्कीइंग और ट्रैकिंग का लुत्फ आप उठा सकते हैं। ट्रैकिंग और साइकिलिंग के लिए नारकंडा में गर्मी का मौसम सबसे सही रहता है, तो ज़्यादा सोचिए मत, प्लान बना लीजिए आने का।

0: कुदरत के रंग कार्यक्रम में आज बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। लीजिए पेश है FM न्यूज हेडलाइंस।
1: नमस्कार, FM न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं सरुपमा शर्मा। राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के तबादलों से जुड़े मामलों में बिना विभागीय प्रक्रिया अपनाए सीधे अदालत जाने पर सख्ती बढ़ा दी है। कार्मिक विभाग ने व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांत 2013 में संशोधन करते हुए स्पष्ट किया है कि यदि कर्मचारी निर्धारित व्यवस्था का उल्लंघन कर सीधे न्यायालय जाता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। संघ लोक सेवा आयोग UPSC पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 के प्रोविजनल आंसर की परीक्षा के तत्काल बाद जारी करेगा। देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा को लेकर आयोग के इस कदम का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना है। अंतिम उत्तर कुंजी के प्रकाशन की लंबे समय से मांग के बाद ये नया सुधार लाया गया है। UPSC भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा और भारतीय पुलिस सेवा समेत कई संघीय सेवाओं के लिए हर वर्ष अधिकारियों का चयन करता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ईंधन और सरकारी खर्च बचाने के लिए अहम फैसला लिया है। पेट्रोल की खपत कम करने के लिए अब न्यायाधीश दफ्तर आने जाने के लिए कार पूलिंग का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हाईकोर्ट के 50% कर्मचारियों को सप्ताह में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम करने की अनुमति दी गई है। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक गुणवत्ता और अनुशासन अपनाए रखने के लिए सभी सरकारी स्कूलों को हर कक्षा में न्यूनतम 75% उपस्थिति अनिवार्य करने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। इसका उद्देश्य छात्रों की शिक्षा और वार्षिक परिणामों में सुधार करना है। जिन विद्यार्थियों की शारीरिक उपस्थिति न्यूनतम 75% नहीं होगी उन्हें वार्षिक परीक्षाओं में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से तेज धूप निकलने से मैदानी क्षेत्रों की तरह अब पहाड़ भी तपने लगे हैं। राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों में पारा तेजी से बढ़ने लगा है। राजधानी शिमला में पिछले कल सीजन का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया और तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं ऊना और नेरी में सबसे अधिक 39.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में जल्द ही पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से 21 से 24 मई तक कई भागों में वर्षा होने की संभावना है। FM न्यूज हेडलाइंस में आज बस इतना ही। नमस्कार।
2: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। 10 बजे हैं, ये समय है राग छाया कार्यक्रम का, जहां सुरों की मिठास, भावनाओं की गहराई और गीतों की खूबसूरती मिलकर एक ऐसा माहौल बनाती है जो दिल को सुकून दे जाए। तो चलिए कार्यक्रम का आगाज करते हैं सरस्वती चंद्र फिल्म के इस गीत के साथ। आवाज है मुकेश की, गीतकार है इंदिवर, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

0: पारस मनी फिल्म में लीजिए सुनते हैं लता मंगेशकर और रफ़ी साहब को, बोल हैं आसद भोपाली के, तर्ज दी है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: वो जब याद आए।

0: चुनाव सिर्फ एक शब्द नहीं, ये है सच्चे लोकतंत्र की नींव, और मतदान है एक जागरूक नागरिक की पहचान, जिसे इस्तेमाल कर वो तय करते हैं अपने क्षेत्र, राज्य और देश की दशा व दिशा।
1: तो आइए अपनी जिम्मेदारी निभाएं, आगामी पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर भाग लें और गांव के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।
0: आपका एक एक वोट तय करेगा पंचायत का भविष्य। तो निर्धारित तिथि को अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर सोच समझ कर और बिना किसी प्रभाव के मतदान जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी ही नहीं अधिकार है।
1: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

संगीत जो सिर्फ सुरों का मेल नहीं बल्कि दिल के एहसासों की सबसे खूबसूरत भाषा है, और जब बात रागों की हो तो हर धुन अपने भीतर एक अलग रंग, एक अलग भावना समेटे होती है। अनपढ़ फिल्म में लीजिए सुनिए लता मंगेशकर को।

0: जो आवाज लगाई चोटी कर दूंगा।
1: తజ్జను తజ్జను

0: ಚತುರ ನಾರ ಅಮ ಜೋಳದ ನಜೆ ಚತುರ ನಾರ ಅಮ ಪಕಡ ಕರಕ ಗಜೆ
1: ಮೇದೆ ಮಣ್ಣಕ್ಕೆ

0: पड़ोसन फिल्म में अभी आपने मन्ना डे, किशोर कुमार और महमूद को सुना। गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार राहुल देव बर्मन।
1: आपका गांव है आपका गर्व, इसको विकसित बनाने के लिए आइए मिलके मनाएं लोकतंत्र का पर्व।
2: हो चुकी है देवभूमि हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा। ये मतदान 3 चरणों में 26, 28 और 30 मई को होगा। ऐसे में आए एक सच्चा नागरिक बनकर मिलकर निभाएं जिम्मेदारी और भारी संख्या में मतदान देकर दिखाएं अपनी भागीदारी।
1: आपका हर एक कीमती वोट आपके गांव की दशा और दिशा तय करेगा, तो अपने मताधिकार का प्रयोग करना ना भूलें। राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: FM शिमला पर आप सुन रहे हैं राग छाया कार्यक्रम। कुदरत फिल्म में लीजिए सुनते हैं लता मंगेशकर को, बोल है मजरूह के तर्ज दी है राहुल देव बर्मन ने।

दोस्तों, संगीत केवल मनोरंजन नहीं बल्कि मन की भाषा भी है। कभी यह हमें पुरानी यादों से जोड़ता है तो कभी नई उम्मीदों से भर देता है। मौसम फिल्म का गीत सुनिए, आवाज़ है भूपेंद्र की, गीतकार हैं गुलजार, संगीतकार मदन मोहन।

0: हमारा गांव है हमारी पहचान, हमारा गांव है हमारा अभिमान। आइए मिलकर दें इसके विकास में अपना योगदान।
1: हम सब ने ठाना है कि 100% मतदान के लक्ष्य को पाना है।
0: पंचायत चुनाव आ रहे हैं, जहां आपका हर ईमानदारी से दिया गया वोट तय करता है गांव की दशा और दिशा, साथ ही बनता है गांव के विकास का आधार।
1: तो 26, 28 और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और अपने परिवार और आस पास के हर वोटर को मतदान के लिए प्रेरित करे।
0: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
2: FM शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं राग छाया कार्यक्रम। हर गीत अपने साथ एक एहसास लेकर आता है। कुछ धुनें मुस्कुराना सिखाती है तो कुछ दिल की खामोशी को आवाज़ दे जाती है। यादों की बारात, इस फिल्म में लीजिए सुनिए आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी को। शब्द रचना है मजरूह की, संगीत रचना आर डी बर्मन की।

FM शिमला 103.7 MHz पर आप सुन रहे हैं राग छाया कार्यक्रम। अनुपमा फिल्म का गीत सुनिए जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। गीतकार हैं कैफी आजमी, संगीतकार हेमंत कुमार।

0: हिमाचल के युवाओं, अब सिर्फ सोशल मीडिया पर ओपिनियन देने का नहीं, वोट देने का भी वक्त आ गया है।
1: इस पंचायत इलेक्शन में 50 लाख से ज्यादा वोटर्स अपने मत का अधिकार इस्तेमाल करेंगे और हजारों फर्स्ट टाइम वोटर्स भी बनेंगे इस बदलाव का हिस्सा। 26 मई, 28 मई और 30 मई, याद रखिए ये तारीखें।
0: आपकी एक वोट आपके गाँव की सोच, विकास और लीडरशिप को तय करेगी। तो निकलिए घर से और बनिए जिम्मेदार नागरिक। पंचायत चुनाव 2026, वोट जरूर करें।
2: राग छाया कार्यक्रम आप सुन रहे हैं FM शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। प्रेम पुजारी इस फिल्म में लीजिए सुनिए किशोर कुमार को। गीतकार हैं नीरज, संगीतकार ST बर्मन।

रागों की छाया में जब सुर खेलते हैं तो मन के हर कोने में सुकून उतर आता है। शर्मीली फिल्म में लीजिए सुनते हैं किशोर कुमार को, शब्द रचना है नीरज की, संगीत रचना एस डी बर्मन के।

राग छाया कार्यक्रम का आखिरी गीत नमस्ते लंदन फिल्म से है, जिसे गाया है राहत फतेह अली खां और कृष्णा ने। बोल हैं जावेद अख्तर के, तर्ज दी है हिमेश रेशमिया ने।

जाने किसकी तलाश उनकी आंखों में थी, आरजू के मुसाफिर भटकते रहे। जितने भी वो चले उतने ही बिछ गए राह में फासले। ख्वाब मंजिल थे और मंजिलें ख्वाब थीं, रास्तों से निकलते रहे रास्ते, जाने किस वास्ते आरजू के मुसाफिर भटकते रहे।

के बीते दिनों की छाँव में बैठें, उस लम्हे की बात करें कि जिसमें कोई फूल खिला था, उस लम्हे की बात करें कि जिसमें किसी आवाज़ की चांदी खनक उठी थी, उस लम्हे की बात करें कि जिसमें किसी की नज़रों के मोती बरसे थे। कोई पुरानी याद मेरा रास्ता रोके मुझसे कहती है, इतनी जलती धूप में यूं कब तक घूमोगे।

कोई पुरानी याद मेरा रास्ता रोके मुझसे कहती है, इतनी जलती धूप में यूं कब तक घूमोगे, आओ

0: सच तो ये है कसूर अपना है, चांद को छूने की तमन्ना की, आसमां को जमीन पर मांगा, फूल चाहा के पत्थरों पे खिले, कांटों में की तलाश खुशबू की, आरजू की।
1: राग छाया कार्यक्रम में आज बस इतना ही। अपनी रेडियो हम सफ़र रीना वर्मा को दीजिए इजाज़त। आप सुनते रहिए FM शिमला 103.7 MHz पर। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
2: मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हमारे आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र भी रिले करेंगे। साथ ही FM शिमला 103.7 MHz और DTH सेवा पर भी सुने जा सकते हैं।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब प्रियंका ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है। सभी उम्मीदवार मतदाताओं को रिझाने के लिए अपनी प्राथमिकताएं उनके सामने रखकर वोट मांग रहे हैं। मतदान 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में होगा। इस बीच पंचायती राज चुनाव के सफल और निष्पक्ष संचालन के लिए चुनाव अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस दौरान मतदान प्रक्रिया, मतदान सामग्री प्रबंधन और मतदान केंद्रों पर पालन किए जाने वाले नियमों की जानकारी दी जा रही है। इसके साथ ही चुनाव को मतपेटी के उपयोग और चुनाव प्रक्रिया का अभ्यास भी करवाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ईंधन और सरकारी खर्च बचाने के लिए अहम फैसला लिया है। अब हाईकोर्ट के न्यायाधीश दफ्तर आने जाने के लिए कार पुलिंग करेंगे और इसके साथ ही 50% कर्मचारी सप्ताह में दो दिन तक वर्क फ्रॉम होम पर रहेंगे। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे शिमला जिला संवाददाता।
4: केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायाधीश भी कारपूलिंग करेंगे, यानी एक ही गाड़ी में कई न्यायाधीश दफ्तर आएंगे ताकि पेट्रोल की खपत कम हो सके। साथ ही हाई कोर्ट के 50% कर्मचारियों को सप्ताह में अधिकतम दो दिन घर से काम करने की सुविधा दी गई है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधवालिया ने इस व्यवस्था को तुरंत लागू करने के आदेश दिए हैं। इन आदेशों के बाद रजिस्ट्रार जनरल की ओर से आधिकारिक सर्कुलर भी जारी किया गया है। इसके तहत रजिस्ट्री की प्रत्येक शाखा या सेक्शन का 50% स्टाफ हफ्ते में अधिकतम दो दिन घर से काम करेगा। कामकाज प्रभावित ना हो इसके लिए बाकी का 50% स्टाफ ऑफिस में मौजूद रहेगा। रजिस्ट्रार को सप्ताह शुरू होने से पहले साप्ताहिक रोस्टर तैयार करने के निर्देश जारी किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
3: प्रदेश में 47 शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद कांग्रेस और भाजपा दोनों ही प्रमुख दल इन चुनावों में अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे मंडी जिला संवाददाता।
5: मंडी जिला के शहरी निकाय चुनावों में इस बार हिमाचल की राजनीति में बड़ा संदेश दिया है। भाजपा के

0: बूथगढ़ माने जाने वाले मंडी में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों के बेहतर प्रदर्शन ने सियासी हलकों में नई बहस छेड़ दी है। सबसे बड़ा झटका भाजपा को नेरचौक में लगा, जहां कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों ने एक तरफा जीत दर्ज करते हुए 9 में से 8 वार्ड अपने नाम किए। वहीं सुंदरनगर में भाजपा ने जोरदार वापसी करते हुए 9 सीटों पर जीत हासिल कर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी। जिले के 6 शहरी निकायों में कुल 48 वार्डो में कांग्रेस समर्थित 23, भाजपा समर्थित 19 और 6 निर्दलीय उम्मीदवार विजय रहे हैं। उधर पूरे प्रदेश की नजरें अब 31 मई को आने वाले नगर निगम चुनाव परिणामों पर टिक गई हैं। आकाशवाणी समाचारों के लिए मंडी से मैं मुनीश सूद।
1: प्रदेश शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक गुणवत्ता और अनुशासन बनाए रखने के लिए सभी सरकारी स्कूलों को हर कक्षा में न्यूनतम 75% उपस्थिति अनिवार्य करने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों की शिक्षा और वार्षिक परिणामों में सुधार करना है। जिन विद्यार्थियों की शारीरिक उपस्थिति न्यूनतम 75% नहीं होगी, उन्हें वार्षिक परीक्षाओं में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे हर महीने कम उपस्थिति वाले छात्रों की सूची नोटिस बोर्ड पर लगवाएं और उनके अभिभावकों को समय रहते चेतावनी भेजे। आदेशों

0: छात्रों की शिक्षा और वार्षिक परिणामों में सुधार करना है। जिन विद्यार्थियों की शारीरिक उपस्थिति न्यूनतम 75% नहीं होगी उन्हें वार्षिक परीक्षाओं में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे हर महीने कम उपस्थिति वाले छात्रों की सूची नोटिस बोर्ड पर लगवाएं और उनके अभिभावकों को समय रहते चेतावनी भेजें। आदेशों की अवहेलना करने वाले स्कूलों और अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया की अध्यक्षता में रूपवे एवं तीव्र परिवहन विकास निगम की बैठक आयोजित की गई, जिसमें नदी जीपलाइन परियोजना की प्रगति एवं विभिन्न विभागीय औपचारिकताओं को लेकर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। बैठक में अधिकारियों द्वारा परियोजना से संबंधित वर्तमान स्थिति की विस्तृत जानकारी दी गई। पठानिया ने उपायुक्त कांगड़ा को NAC प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए, साथ ही संबंधित विभागों को आवश्यक NOC शीघ्र जारी करने के निर्देश भी दिए। उन्हें कहा कि नदी जिपलाइन परियोजना में साहसिक पर्यटन को नई पहचान प्रदान होगी और इससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। यह परियोजना प्रदेश को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर और अधिक सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना गरीब परिवारों के लिए कारगर साबित हो रही है। इसी कड़ी में मंडी जिला के माघेल गांव के रहने वाले एक बेहद गरीब मरीज नेतर सिंह के लिए यह योजना किसी वरदान से कम नहीं रही। नेतर सिंह गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गए थे। आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवार के लिए अस्पताल का खर्च उठाना संभव नहीं था। ऐसे में जोनल अस्पताल मंडी में आयुष्मान मित्र ने उनका गोल्डन कार्ड बनवाकर पूरा इलाज मुफ्त में किया। मंडी जिले में अब तक 85% से ज्यादा परिवार के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और जिले के 14 अस्पताल इस योजना से जुड़े हैं। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज मौसम साफ बना हुआ है। प्रदेश में मैदानी इलाकों सहित पहाड़ों पर भी तपिश बढ़ने लगी है। राज्य के कई क्षेत्रों में तापमान तेजी से बढ़ रहा है। ऊना का अधिकतम तापमान लगभग 40 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने मैदानी जिलों कांगड़ा, बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी और सिरमौर में आज लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि जनजातीय जिलों किन्नौर और लाहौल स्पीति में बारिश होने की संभावना जताई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 2:00 PM। नमस्कार।
1: आकाशवाणी शिमला FM शिमला 103.7 MHz और आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों पर आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
2: 103.7 MHz पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। 11:05 हुए हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम पुराने फिल्मों से।
3: ये चीज खास मैंने उस अनजान देवी के नाम लिखी है जो शायद कहीं किसी जिंदगी के मोड़ पर मेरा इंतजार कर रही है, या यूं समझिए कि मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ।

एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम। बादल फिल्म में लीजिए सुनते हैं मन्ना डे को।

0: हिमाचल में फिर से सज गया है लोकतंत्र का महापर्व, पंचायत चुनाव 2026।
1: 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में होने जा रहे हैं पंचायत इलेक्शंस, जहां आपकी एक वोट तय करेगी आपके गांव का कल।
0: सड़क, पानी, सफाई, रोजगार और गांव के विकास से जुड़े फैसलों में आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है।
1: इस बार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और चुनिएगा ईमानदार, योग्य और जिम्मेदार प्रतिनिधि। हिमाचल पंचायत इलेक्शंस 2026, मजबूत पंचायत, मजबूत हिमाचल।

0: चुनाव सिर्फ एक शब्द नहीं, ये है सच्चे लोकतंत्र की नींव, और मतदान है एक जागरूक नागरिक की पहचान, जिसे इस्तेमाल कर वो तय करते हैं अपने क्षेत्र, राज्य और देश की दशा व दिशा।
1: तो आइए अपनी जिम्मेदारी निभाएं, आगामी पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लें और गांव के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।
0: आपका एक एक वोट तय करेगा पंचायत का भविष्य। तो निर्धारित तिथि को अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर सोच समझ कर और बिना किसी प्रभाव के मतदान जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी ही नहीं अधिकार है।
1: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: हरियाली और रास्ता, इस फिल्म में लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और मुकेश को। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन।

0: पुरानी फिल्मों में से आज बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं एफएम शिमला के साथ।
1: चुनाव सिर्फ एक शब्द नहीं, ये है सच्चे लोकतंत्र की नींव, और मतदान है एक जागरूक नागरिक की पहचान, जिसे इस्तेमाल कर वो तय करते हैं अपने क्षेत्र, राज्य और देश की दशा व दिशा।
2: तो आइए अपनी जिम्मेदारी निभाएं, आगामी पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर भाग लें और गांव के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।
1: आपका एक एक वोट तय करेगा पंचायत का भविष्य। तो निर्धारित तिथि को अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर सोच समझ कर और बिना किसी प्रभाव के मतदान जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी ही नहीं अधिकार है।
2: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं एफएम शिमला के साथ। एफएम शिमला पर अब आपको करवाते हैं ठंडी ठंडी हवाओं का एहसास कार्यक्रम पहाड़ी संगीत में। कृष्णलाल सहगल की आवाज में कार्यक्रम का पहला लोकगीत।

लोकगीतों में आप देखते हैं सरल जीवन के वर्णन से लेकर देवी देवताओं के संबंध कथाओं, अद्भुत वीर राजाओं और उनके कार्यकलापों और अन्य अनुभूतियों का वर्णन मिलता है हमें इन लोकगीतों में। निशा बाला की आवाज़ में कार्यक्रम का अगला लोकगीत।

0: आपका गांव है आपका गर्व, इसको विकसित बनाने के लिए आइए मिलके मनाएं लोकतंत्र का पर्व।
1: हो चुकी है देवभूमि हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा। ये मतदान 3 चरणों में 26, 28 और 30 मई को होगा। ऐसे में आए एक सच्चा नागरिक बनकर मिलकर निभाएं जिम्मेदारी और भारी संख्या में मतदान देकर दिखाएं अपनी भागीदारी।
0: आपका हर एक कीमती वोट आपके गांव की दशा और दिशा तय करेगा, तो अपने मताधिकार का प्रयोग करना ना भूलें। राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: लोक संगीत लोकगीत एक ऐसी विधा है जिसका लिखित रूप बहुत कम है। ये विधा पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से प्रचलित और विकसित हुई है। गुलाब सिंह की आवाज में कार्यक्रम का अगला लोकगीत।

0: रोशनी शर्मा को अभी आपने सुना।
1: हमारा गांव है हमारी पहचान, हमारा गांव है हमारा अभिमान, आइए मिलकर दें इसके विकास में अपना योगदान।
2: हम सब ने ठाना है कि 100% मतदान के लक्ष्य को पाना है।
1: पंचायत चुनाव आ रहे हैं, जहां आपका हर ईमानदारी से दिया गया वोट तय करता है गांव की दशा और दिशा, साथ ही बनता है गांव के विकास का आधार।
2: तो 26, 28 और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और अपने परिवार और आस पास के हर वोटर को मतदान के लिए प्रेरित करे।
1: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
0: हिमाचल के लोकगीत मधुरता, लय और तन्मयता के लिए प्रसिद्ध हैं। अधिकतर लोकगीतों का विषय प्रणय है, क्योंकि प्रणय जीवन का स्रोत है। प्रेम प्रकाश निहालटा की आवाज में कार्यक्रम का अगला लोकगीत।

0: हिमाचल के युवाओं, अब सिर्फ सोशल मीडिया पर ओपिनियन देने का नहीं, वोट देने का भी वक्त आ गया है।
1: इस पंचायत इलेक्शन में 50 लाख से ज्यादा वोटर्स अपने मत का अधिकार इस्तेमाल करेंगे और हजारों फर्स्ट टाइम वोटर्स भी बनेंगे इस बदलाव का हिस्सा। 26 मई, 28 मई और 30 मई, याद रखिए ये तारीखें।
0: आपकी एक वोट आपके गाँव की सोच, विकास और लीडरशिप को तय करेगी। तो निकलिए घर से और बनिए जिम्मेदार नागरिक। पंचायत चुनाव 2026, वोट जरूर करें।
2: आइए अब सुनते हैं मंजू भारद्वाज की आवाज में कार्यक्रम का अगला लोकगीत।

0: पहाड़ी संगीत में अभी बस इतना ही। 12 बजने वाले हैं। हिंदी और अंग्रेजी में समाचार अब रिले होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कीजिए कुछ ही पलों का इंतजार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: भारत और पांच नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण, यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: प्रधानमंत्री आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का दो दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं।
3: इटली के विभिन्न हिस्सों से आए भारतीय समुदाय के सदस्यों के लिए यह अवसर किसी ऐतिहासिक पल से कम नहीं है। शिक्षा, कृषि, डेयरी फार्मिंग, रियल एस्टेट और अन्य व्यवसायिक क्षेत्रों से जुड़े ये लोग दोनों मित्र देशों के शीर्ष नेताओं के बीच होने वाली इस उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक से अपनी अपनी आकांक्षाएं और अपेक्षाएं लेकर आए हैं। भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन नागरिक भी भारत में उभरते व्यवसायिक अवसरों को लेकर उत्साहित हैं। आकाशवाणी के लिए रोम से सुपर्णा भाटिया।
1: भारत और स्वीडन ने फैसला किया है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग साझा समृद्धि और सतत भविष्य का रास्ता तय करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया के सामने एक निर्णायक विकल्प है, या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाना या फिर अपनी साझेदारियों को मजबूत बनाना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा

रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। अदालत ने बच्चों, बुजुर्गों और यात्रियों पर कुत्तों के हमलों की बेहद चिंताजनक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि ये समस्या हवाई अड्डों और आवासीय कॉलोनियों सहित संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। पीठ ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. लाल रोजामा ने जनता और निर्वाचन आयोग की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया।

0: हिमाचल में फिर से सज गया है लोकतंत्र का महापर्व, पंचायत चुनाव 2026।
1: 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में होने जा रहे हैं पंचायत इलेक्शंस, जहां आपकी एक वोट तय करेगी आपके गांव का कल।
0: सड़क, पानी, सफाई, रोजगार और गांव के विकास से जुड़े फैसलों में आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है।
1: इस बार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और चुनिएगा ईमानदार, योग्य और जिम्मेदार प्रतिनिधि। हिमाचल पंचायत इलेक्शंस 2026, मजबूत पंचायत, मजबूत हिमाचल।
2: अब आपको सुनवाते हैं साथिया फिल्म का गीत। साधना सरगम और मधुश्री की आवाजें हैं, ए आर रहमान का संगीत।

0: फिल्म संगीत में अभी बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप एफएम शिमला के साथ, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी शिमला और एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आइए सुनते हैं महिला सम्मेलन कार्यक्रम।

0: कार्यक्रम महिला सम्मेलन में आप सभी सखी सहेलियों का स्वागत अभिनंदन। आज मैं हूं आपकी रेडियो सखी ब्रिजबाला
1: और मैं कौशल्या। आप सभी को हम दोनों का
0: नमस्कार।
1: जिंदगी का हर दिन खास है, बस नजरिए की बात है। जो मुस्कुरा के जी ले आज को, उसका कल भी उसके साथ है।
0: बहुत ही खूब कहा कौशल्या आपने कि जिंदगी का हर दिन जो है ना वो खास होता है, बस हमारे नज़रिए की बात है कि हम उस दिन को किस तरह से देखते हैं। और कहते भी है ना, जो मुस्कुरा के जी लिया जिसने आज को, उसका तो कल अपने आप ही अच्छा हो गया।
1: बिल्कुल।
0: तो मैं कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे, और आज सबसे पहले जो हम आपसे चर्चा करने वाले हैं वो भी कुछ ऐसे ही जिंदगी के, जीवन के जो अनुभव है उनके बारे में कुछ हम आपसे बातें साझा करेंगे कि सुखी जीवन के लिए संयम कितना ज़रूरी है। कहते भी है ना कि संयम अगर जिसके अंदर है तो उसने अपने जीवन को सही से जी लिया।
1: बिल्कुल। देखिए बहनों, जब हम बात करेंगे कि कैसे अपने जीवन को हम संयम बना के रख सकते हैं, है ना, और संयम हमारे जीवन को संतुलित रखने के लिए बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है।
0: बिल्कुल,
1: है ना। हमें जीवन में संतुलन बनाए रखना है बहनों, तो समय पर हमें क्या करना होगा, समय पर हमें उठना चाहिए, समय पर हमें सोना चाहिए, है ना। और समय रहते हो सके तो हर काम को जो भी आप कर सकते हैं वो धीरे धीरे उसे निपटाते ही रहना चाहिए।
0: बिल्कुल कौशल्या, यानी कि आपका कहने का तात्पर्य यही है कि समय का सदुपयोग करना बहुत ही ज़रूरी है।
1: बिल्कुल।
0: समय पे अगर हर काम आप करती हैं तो यकीन मानिए बहनों, आप हमेशा वक्त के साथ साथ चलती रहेंगी।
1: बिल्कुल।
0: कभी भी वक्त से पीछे नहीं होंगे आप।
1: जी हाँ।
0: और देखिए बहनों, अक्सर हम आज के काम को कल पर छोड़ देते हैं, ये बहुत से लोगों की आदत होती है, या यूं कहें कि आलसी लोग इसे ज़्यादा अपनाते हैं, और धीरे धीरे काम क्या होता है ज़्यादा बढ़ता जाता है। ऐसे में ना हमारा काम जो है वो कभी भी पूरा नहीं हो पाता बहनों, और ना ही हम कभी ठीक समय पर सो पाते हैं।
1: बिल्कुल। और देखिए ना ब्रिजबाला, यहीं से बस तनाव की स्थिति जो है वो पैदा हो जाती है, है ना। फिर मन में एक उधेड़ बुन सी शुरू हो जाती है और हमारा संयम कहीं ना कहीं डगमगाने सा लग जाता है।
0: बिल्कुल,
1: क्यों, है ना।
0: बिल्कुल।
1: तो ऐसे में बहनों, बिल्कुल भी हमें ऐसी स्थिति को जो है बिल्कुल करना ही नहीं है हमें, है ना। कहा भी जाता है ना, जो लोग खान पान मनोरंजन में संयमी, यानी कि किसी भी चीज की अधिकता जीवन में अच्छी नहीं होती, है ना। अगर हमने ज्यादा ही खाना खा लिया, देखिए, है ना ब्रिजबाला, तो क्या होता है, कहीं अब हमारी पाचन क्रिया खराब हो जाती है ना। और मनोरंजन की बात आती है, हम हमेशा ही मनोरंजन में ही रहे तब भी काम नहीं चलेगा। हमें हर काम में संतुलन बनाकर चलना है, तभी हम जो है अपनी जिंदगी में संयम को बना के रख सकते हैं।
0: बिल्कुल। कहते भी हैं कौशल्या कि अति जो है ना हर चीज की बुरी होती है।
1: तो
0: संयम से काम लें और समय पर काम करें, और सही से सही समय पर अगर काम करेंगे तो आपका जो जीवन है वो संतुलित रहेगा, और आप आलसी भी नहीं होंगे, और संयम तो आपके जीवन में आप खुद ब खुद बनता चला जाएगा।
1: बिल्कुल।
0: और जी
1: आप बोलिए
0: जी। वे लोग जो योग का अभ्यास भी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि वे सुबह जल्दी उठ जाते हैं, जो जल्दी उठते हैं ना कौशल्या, उनका हर समय जो है अपने समय से होता है।
1: बिल्कुल।
0: और जो दिन है उनका वो भी बहुत खुशनुमा हो जाता है।
1: बिल्कुल।
0: जब सुबह से ही दिनचर्या सही समय पर शुरू हो जाती है तो पूरे दिन का जो काम है वो संयम से समय पर पूरा हो जाता है।

0: बिल्कुल। और देखिए ना बहनों, आजकल की दौड़ धूप वाली जिंदगी में ना समय सोने का है, ना उठने का है, ना
1: बिल्कुल
0: खाने का है और ना पीने का है।
1: बिल्कुल,
0: बहुत
1: आजकल
0: ज्यादा है
1: देखा
0: ना,
1: होगा आपने कि
0: बड़ी
1: जो
0: समस्या आ
1: लोग
0: चुकी
1: जी
0: है
1: जी
0: ना।
1: रात को 11-11 बजे या 12 बजे वो सो रहे हैं, सुबह 10 बजे उठ रहे हैं, तो उनका आप
0: सारी
1: देखिए रूटीन
0: व्यवस्था जो है
1: जी
0: वो
1: बिल्कुल
0: चरमरा जाती है
1: बिल्कुल
0: ना।
1: बिल्कुल
0: तो देखिए बहनों, एक महत्वपूर्ण धारणा भी है, जैसा आप मतलब भोजन अन्न खाएंगी वैसा ही आपका मन होता
1: जी बिल्कुल
0: है, जैसा हमारा विचार होंगे वैसे ही हमारी दिनचर्या भी होती है और वैसे ही व्यवहार होता है हमारा। इसलिए ऐसा खाना खाना जरूरी है जो हमारे दिमाग का संतुलन बना के रखे, यानी कि हमें दिमाग का संतुलन बनाने में मदद करे। और मौसमी फल सब्जियां तो अक्सर हम बहनों से कहते ही हैं कि आहार में जरूर शामिल करें, है ना।
1: बिल्कुल कुशल्या, यानी आपका कहने का मतलब यही है कि हमें सात्विक भोजन लेना है। अगर आपका भोजन अच्छा होगा, जैसे आपने कहा मन, आपका जो भोजन है वो अच्छा है, तो आपका मन भी अच्छा है
0: बिल्कुल
1: और साथ में आपका तन भी अच्छा रहेगा।
0: बिल्कुल। और देखिए बहनों, अक्सर होता है कि हमें अपने परिवार को हम समय नहीं दे पाते, है ना।
1: जी
0: आजकल ये बहुत ज़्यादा शिकायत आ रही है ब्रिजवाला, है ना,
1: बिल्कुल
0: हर घर की यही शिकायत है कि परिवार वाले बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं कि हमारे बड़े हमारे को जो है समय नहीं देते हैं। और जब हमें घर पर ये सुनने को मिलता है ना, तो बहुत ज़्यादा ना बुरा सा महसूस होता है अपने मन में ना। हाँ, ऐसा हमें ना बहनों नहीं करना है। अगर कितना भी आपके पास चाहे थोड़ा ही समय है, अपने परिवार को जरूर दें, उनका ध्यान रखें, है ना।
1: जी,
0: और
1: क्योंकि
0: तभी आपका,
1: कौशल्या
0: हाँ
1: आजकल आपने
0: हाँ
1: देखा होगा लोग
0: जी
1: जो है सोशल मीडिया पर व्यस्त रहते
0: बहुत
1: हैं,
0: ज़्यादा
1: है ना, तो इस वजह से भी वो परिवार को समय नहीं दे पाते और साथ ही साथ वर्किंग है तो और भी ज़्यादा समय उनका बाहर चला जाता है, तो परिवार को समय नहीं दे पाते, तो इसीलिए परिवार वालों की शिकायत रहती है कि वो हमें समय नहीं
0: बिल्कुल।
1: दे
0: तो
1: रहे
0: देखिए
1: हैं।
0: ना बहनों, अगर आप अपने परिवार को समय देंगे, बच्चों को देंगे समय, बुजुर्गों को देंगे, तो कहीं ना कहीं आपका जो संयम है वो बना रहेगा, है ना।
1: जी
0: आपको शिकायत का मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा। और देखिए ना, अब हमारी बहनें भी चाह रही होंगी, हमारी वार्तालाप जो है हमारा ये चला रहती है हमारी, है ना, बातचीत तो चली रहती है सिलसिला, अब क्यों ना मनोरंजन भी हो जाए।
1: बिल्कुल कौशल्या, गीत संगीत के बगैर हमारा कार्यक्रम भी अधूरा है और
0: जी
1: हमारी बहनें भी सोचेंगी कि आज हमारी बहनें हमारे लिए कौन कौन से गीत चुन कर लाई हैं। तो
0: जी
1: सुनिए बहनों, सुनवाते हैं आपको ये गीत।
0: जी

0: तो बहनों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपसे बात करेंगे आज हम एक ऐसे गुरु की जो बिना कुछ कहे हमें जीवन की अनमोल सीख दे जाती है, और वो गुरु है प्रकृति। जी हाँ बहनों, प्रकृति केवल हमें हवा पानी और भोजन ही नहीं देती बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखा जाती है।
1: जी हाँ, देखिए बहनों, प्रकृति जो है यानी कि वो शक्ति जो बिना कुछ कहे, जैसा आपने कहा, हर पल हमें कुछ ना कुछ सिखाती ही रहती है। बस ज़रूरत है तो उसे महसूस करने की ज़रूरत है और उसे समझने की ज़रूरत है।
0: बिल्कुल। अब देखिए ना बहनों, सुबह सुबह जब सूरज उगता है तो वो हमें सिखाता है कि हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह ज़रूर आती है।
1: बिल्कुल।
0: सूरज कभी ये नहीं सोचता कौशल्या कि आज बादल हैं तो मैं क्यों निकलूं।
1: जी।
0: वो अपने कर्तव्य पर अड़िग रहता है।
1: जी,
0: तो हमें भी बहनों अपने जीवन में ऐसे ही नियमित और निष्ठावान बने रहना है।
1: और देखिए ना, बात चांद की करें तो चाहे चांद जो है हमें शीतलता और धैर्य का संदेश देता है, वो हर दिन जो है बढ़ता और घटता रहता है, पर कभी भी शिकायत नहीं करता। वो हमें सिखाता है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन शांति और संतुलन बनाए रखना ही असली ताकत होती है ना?
0: बिल्कुल कौशल्या। और हमारे जीवन में अगर थोड़ी भी कमी आ जाए ना, थोड़ा भी घटाव बढ़ाव हो जाए, तो हम हमेशा शिकायत करने लगते हैं। लेकिन हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे बहुत सारे आसपास में जो प्रकृति ने हमें उपहार दिए हैं, जो कि बिल्कुल अपने समय से काम करते हैं। और अगर समय पे वो काम ना करें ना, तो हमारा जीवन कहीं ना कहीं जो है अनियमित हो जाएगा।
1: देखिए, उन्हें तो छुट्टी भी नहीं मिलती है।
0: बिल्कुल,
1: है ना? जैसे हम तो छुट्टी के लिए तरसते हैं ना, ये भी बात आती है ना यहाँ पर, है ना? अगर उन्होंने छुट्टी की तो पूरी दुनिया की छुट्टी हो जाएगी, है ना? तो देखिए बहनों, अगर हम बात करते हैं नदी की, तो नदी को देखिए ना, वो निरंतर क्या संदेश देती है? निरंतर बहते रहना। रास्ते में चाहे कितनी चट्टाने मोड़ आए, लेकिन वो क्या है, वो रुकती नहीं है, वो निरंतर चलती ही रहती है। नदी हमें सिखाती है बाधाएं चाहे कितनी भी हो हमारी जिंदगी में, है ना, लक्ष्य की ओर हमें बढ़ते ही रहना चाहिए। अगर वो ठहर जाए तो क्या होता है, पानी अगर ठहरता है तो क्या होता है, गंदगी फैल जाती है। यानी जीवन में ठहराव बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हमें जीवन में निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए।
0: बिल्कुल बहनों, तो हमें अपने बच्चों को भी यही सिखाना चाहिए कि हमें लगातार प्रयासरत रहना चाहिए। अगर कभी हम अपने जीवन में कभी भी असफल हो जाते हैं तो हमें हार नहीं माननी है, बल्कि उससे अनुभव लेकर के आगे बढ़ते रहना है और आगे बढ़ते ही चले जाना है। और अब हम अगर अपने आसपास के पेड़ पौधों की बात करें तो ये भी हमें हमेशा परोपकार का पाठ पढ़ाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: आपने देखा होगा पेड़ कभी भी खुद जो है अपने फल नहीं खाते,
1: नहीं
0: है ना
1: खाते,
0: और खुद जो है धूप में खड़े रहते हैं, लेकिन दूसरों को हमेशा छाया देते हैं। और हमें पेड़ लकड़ी देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, बदले में हम क्या देते हैं उन्हें? कुछ नहीं, है ना। तो वो जो पेड़ पौधे हैं हमसे कभी कुछ नहीं मांगते, बल्कि उल्टा हमें देते ही रहते हैं। तो हमें यही सीख देकर जाते हैं कि जीवन में हमें कभी भी निस्वार्थ भाव नहीं रखना है, निस्वार्थ भाव से रहना है और निस्वार्थ भाव से ही दूसरों की भलाई हमेशा करते रहना है।
1: जी बिल्कुल। देखिए, हवा हमें सिखाती है स्वतंत्र रहो लेकिन संतुलन में रहो।
0: बिल्कुल,
1: जब हवा हल्की चलती है तो सुकून देती है, और जब तूफान बन जाती है तो क्या होता है, वो विनाश कर देती है।
0: बिल्कुल, जब आंधी बन जाएगी तो विनाश करेगी।
1: संतुलन और संयम जो है बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है।
0: और अब बात पर्वतों की करते हैं। देखिए बहनों, पर्वत हमें दृढ़ता का संदेश देते हैं। आंधी, तूफान, बारिश, बर्फ, सब कुछ सहकर भी पर्वत अड़िग खड़े रहते हैं।
1: बिल्कुल,
0: वे सिखाते हैं कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन

0: क्यों ना हो, अपने सिद्धांतों से हमें कभी भी डिगना नहीं है।
1: बिल्कुल। और अब बहनों, जब हम प्रकृति की बात कर रहे हैं तो समुद्र की भी बात कर लेते हैं। समुद्र जो है हमें गहराई और शांति का संदेश देते हैं।
0: जी
1: ऊपर से लहरें कितनी उठती हैं ना, पर
0: बिल्कुल
1: भीतर गहराई में कितनी शांति होती है, यानी कि
0: जी
1: हमें शांत रहकर ही हर कार्य को करना चाहिए। हमें यही संदेश देते हैं ये, है ना।
0: बिल्कुल। और अब अगर मौसम की बात की जाए तो मौसम हमें कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बरसात, यानी कि आपने सुना भी होगा बहनों कि परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम है।
1: जी
0: और अगर हम समय के साथ खुद को ढाल लें तो जीवन आसान हो जाता है, जैसे हम पहले भी कह रहे थे। और
1: बिल्कुल
0: अगर हम समय के साथ नहीं चलते तो हम समय से पीछे हो जाते हैं और
1: बिल्कुल
0: हमारा जीवन जो है वो निरसा हो जाता है।
1: जी हाँ। देखिए बहनों, प्रकृति हर पल हमें कुछ ना कुछ सिखा रही है। बस
0: जी
1: जरूरत है तो थोड़ा रुक कर उसे देखने और समझने की। अगर हम सूरज की नियमितता को देखें तो क्या है, उसका निरंतर प्रवाह चला हुआ है सूर्य
0: जी
1: का, है ना। वृक्षों का त्याग देखिए, है ना, फूलों की मुस्कान और पर्वत का धैर्य, है ना, अडिगपन और
0: बिल्कुल
1: समुद्र की शांति। तो ये सभी हमारे जीवन में अगर हम इन्हें उतारते हैं तो हमारा जीवन निश्चित ही जो है वो सुखमय और सफल बन सकता है।
0: बिल्कुल। तो बहनों हमें प्रकृति से सीखना है कि हमें जो है अपने जीवन को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, और हमें सीखते चले जाना है और दूसरों को सिखाना भी है।
1: जी
0: तो गीत

0: बहनों आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे। देखिए आजकल हम ना ब्रिजवाला नए दौर में जो है नई नई तकनीक की ओर इतने ज़्यादा आकर्षित होते जा रहे हैं कि हम पारंपरिक जो भी वस्तुएं उनको हम भूलते जा रहे हैं।
1: बिल्कुल कौशल्या, आपने देखा होगा बाजार

0: में नई नई चीज़ें आ रही हैं, नए नए उसका जो डिज़ाइन है वो नए नए आ रहे हैं, उसकी तरह हम इतने आकर्षित हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं जो है हम जो हमारी पारंपरिक चीज़ें हैं उनको हम भूलते जा रहे हैं।
1: बिल्कुल, देखिए हम बात करेंगे बहनों से ना कि आज के दौर में हम मिट्टी जो है ना, मिट्टी के बर्तन है ना, उनको बहुत ज़्यादा भूल चुके हैं, है ना।
0: जी
1: अब नए नए देखो मेटल्स आ रहे हैं, नई नई चीज़ें, नई नई तकनीक की चीज़ें आ रही है जो हम अपने रसोई घर में लाते हैं, तो हमें ये भी पता नहीं होता वो स्वास्थ्य के लिए हमारे लिए अच्छी है कि नहीं है। पर हम जो है बहनों आपसे यही कहेंगे कि जितना हो सके है ना मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करें, और अगर हम इस मिट्टी के साथ जुड़े हैं हमारे, है ना, इस
0: बिल्कुल
1: भूमि के साथ जुड़े हैं, पर्यावरण की दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा बहनों फ़ायदेमंद होते हैं। इसमें स्वास्थ्य भी है, स्वाद भी है ना, सेहत के लिहाज से तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते
0: बिल्कुल,
1: हैं।
0: आपने देखा होगा कि पहले के जो हमारे बुज़ुर्ग थे वो पारंपरिक चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, मिट्टी के बर्तनों का
1: जी
0: इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते थे, और आपने देखा होगा उनकी उम्र भी कितनी लंबी है ना,
1: जी
0: और स्वास्थ्य के लिहाज से भी वो स्वस्थ हैं।
1: बिल्कुल
0: तो बहनों, मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाने से आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे खनिज हमें मिलते हैं, जो कि भोजन की जो अम्लता है उसको संतुलित करते हैं।
1: देखिए ना कितने उपयोगी हैं ये। आजकल क्या है, हम दवाइयों के रूप में ये इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो
0: जी
1: आयरन की हम गोलियां खाते हैं ना, और ये
0: बिल्कुल
1: सारी है
0: बिल्कुल
1: ना, उससे अच्छा हम अगर मिट्टी के बर्तनों का हम उपयोग करें तो हमें सब कुछ इसी में मिल जाता है ना।
0: जी
1: तो हम क्यों ना ऐसी शैली अपनाएं, है ना, पारंपरिक शैली है ये, अपनाना
0: बिल्कुल
1: तो मुश्किल है, पर अगर हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे तो हर चीज़ संभव हो ही जाती
0: बिल्कुल, समय
1: है
0: के
1: ना।
0: साथ कुछ बातें ऐसी होती हैं कौशल्या जो हमें मुश्किल लगती हैं,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि हमारे पास आज के समय में हम यही कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है,
1: जी
0: तो इसी के चलते जो है हम जो पारंपरिक चीज़ें हैं उनको जो कहीं ना कहीं पीछे छोड़ते चले जा रहे
1: दरकिनारा
0: हैं।
1: करते जा
0: बिल्कुल
1: रहे हैं ना उन
0: बिल्कुल
1: चीज़ों
0: बिल्कुल
1: से। तो पहले शुरुआती दौर की बात करें, जैसा अभी आपने कहा है ना, मिट्टी के बर्तन जो है चूल्हों पर खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, है ना। और अब जो परिवर्तन हो गया है तो अब तो कई तरह के मेटल आ गए हैं ना, कई तरह की चीज़ें हैं, और बहनों होता ये है कि इसमें धीमी आंच में खाना बनाया जाता था उस समय, है ना,
0: जी
1: और वो भी चूल्हे पे बनता था, लकड़ियों पर, है ना।
0: बिल्कुल
1: तो और जब देखिए दही जमाने के लिए मिट्टी के बर्तन, है ना, हमारे घर में देखो बहनों दूध और लस्सी जो होती थी वो घड़ों
0: मिट्टी
1: में
0: के
1: ही, है
0: जी
1: ना, हाँ
0: बिल्कुल
1: घड़ों में ही रहती थी, और वो क्या स्वाद था उसमें, भीनी भीनी खुशबू जो आती थी उस समय,
0: बिल्कुल,
1: है ना।
0: और अगर गर्मी के मौसम में ठंडे पानी की अगर बात करें तो घड़े का पानी जो है प्राकृतिक रूप से ठंडा हो जाता है और बहुत ही स्वादिष्ट भी होता है, और इसका तापमान जो है पेट के लिए अनुकूल रहता है। और आपने देखा होगा मिट्टी के बर्तन में अगर हम पानी रखते हैं तो उसकी जो सौंधी सौंधी खुशबू आती है ना, उसका कितना आनंद आता है ना,
1: बिल्कुल
0: ऐसे
1: बिल्कुल
0: लगता है जैसे हम अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं, और वो स्वाद ही हमें अजीब अनोखा लगता है और
1: हाँ
0: बहुत ही अच्छा लगता है।
1: जी। और देखिए ना अनाज और फल स्टोर करने के लिए हम कई तरह की चीज़ें लाते हैं। अगर हम ना मिट्टी के कोई ऐसे, आजकल तो बहुत ज़्यादा चल पड़ी है ये, है ना, चीज़ें मिट्टी के बर्तनों में ही अगर हम फल सब्जियों को रखें, तो देखिए पता है क्या इसका उपयोग यह होता है कि प्राकृतिक नमी जो है वो लंबे समय तक चलती है, बजाय कि हम फ्रिज में रखते हैं तो उसमें क्या होता है, नमी उसकी खत्म हो जाती है
0: बिल्कुल,
1: ना।
0: और बहनों उपयोग करने से जुड़ी सावधानियां भी आपको रखनी होगी कि किस
1: जी
0: तरह से आप इसका उपयोग करें, जैसे नए मिट्टी के जो बर्तन हैं उनका जो उपयोग उसको कैसे उपयोग करना है, तो उससे पहले उसे 24 घंटे उस जो मिट्टी का बर्तन है उसको पानी में डुबोकर आपको रखना है,
1: बिल्कुल
0: इसके बाद अंदर तेल लगाकर हल्की आंच पर उसे गर्म करना है।
1: जी हाँ, देखिए हमने मिट्टी के बर्तनों की तो हम बात कर रहे हैं, तो सावधानियां तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि हाथ से टूटा और टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, है
0: बिल्कुल
1: ना। तो बहनों सावधानी तो हमें रखनी होगी। अब बात करते हैं साफ सफाई की। कभी भी आपको मिट्टी के कोई भी बर्तन आप साफ करना चाहती हैं तो साबुन डिटर्जेंट का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इसमें मिट्टी में छिद्र युक्त जो है ये होते हैं बर्तन, इसमें साबुन डिटर्जेंट जो है अंदर सोख लिया जाता है। इसलिए बहनों इसे गर्म पानी या नींबू का पानी होता है या नींबू का रस होता है, आप उससे इसे अच्छी तरह से साफ कर सकती हैं।
0: और देखिए बहनों, खाना बनाते समय हमेशा आंच को आपने धीमा रखना है, मध्यम ही रखें, क्योंकि अचानक आंच तेज रखने से जो है मिट्टी के बर्तन टूट भी सकते हैं, और
1: बिल्कुल
0: आपने अपने बुज़ुर्गों से सुना भी होगा कि जो मिट्टी के बर्तन होते हैं या जो जैसे कि इसमें कम आंच से धीमी आंच पे खाना पकाया जाता है, और ये भी कहते सुना होगा कि जो धीमी आंच पे खाना बनता है ना वो बहुत ही स्वादिष्ट होता है।
1: हाँ बिल्कुल। और देखिए ना मिट्टी के बर्तन पर्यावरण के अनुकूल हैं, टिकाऊ भी होते हैं, इनमें बनाया गया खाना जैसा कि अभी आपने कहा, बुजुर्गों से भी हमने सुना है, खाना तो स्वादिष्ट होता ही और साथ में स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है।
0: बिल्कुल, मिट्टी के बर्तन हमारे रसोई घर में स्वास्थ्यवर्धक, टिकाऊ और स्वाद बढ़ाने वाले होते हैं बहनों, जो पारंपरिक

0: पर एक जो सिद्धि होती है उसकी कि मिट्टी से जो बने होते हैं उसकी अगर हम बात कर रहे हैं तो ये बर्तन खाने का स्वाद जो है बेहतर बनाते हैं और हम इसका इस्तेमाल करके पारंपरिक जीवन शैली को अपना सकते हैं।
1: जी
0: तो कौशल्या, हमें कहीं ना कहीं अपनी बहनों को ये भी कहना है कि जो पारंपरिक हमारी चीज़ें हैं, जो शैली है, उसको आप ना भूलें बल्कि उसे आगे लेकर जाएं, यानी अपने आगे वाली पीढ़ी को भी आप उसे बताएं और उन्हें ये संस्कारों में दें।
1: बिल्कुल।

0: मैंने देखिए, हम बातों का सिलसिला जो है हमारा, इतना हमारा मन करता है कि हम हमेशा आपसे बात करते रहें, पर समय का जो है पता ही नहीं चलता कि कब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में आ जाते हैं ना ब्रिजवाला।
1: बिल्कुल। तो कौशल्या, अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर पहुंच ही चुके हैं और बात करते हैं बहनों से कुछ एक बुनियादी टिप्स की जो उनके रसोई घर में उनके काम आने वाले हैं।
0: बिल्कुल
1: तो देखिए बहनों, हमेशा खाना बनाने से पहले आप क्या करें कि अपनी जो भी सामग्री है, सारी की सारी सामग्री और बर्तन अपने पास रख लें। इससे आपका समय भी बचेगा और साथ ही साथ जो आप कुछ बना रही हैं, जैसे गैस आपने ऑन कर दी और उसके बाद आपके पास सामान पूरा नहीं है, तो आपकी जो गैस है वो इस तरह से व्यर्थ जाएगी। तो इससे अच्छा है कि आप सबसे पहले अपना जो सामग्री है या बर्तन जो भी आपको यूज़ होने हैं, जो आपको प्रयोग में लाने हैं, वो अपने पास सारे इकट्ठे कर लें।
0: बिल्कुल। और देखिए, जब हम बात करते हैं हमारे जो किचन में पुदीना हम यूज़ करते हैं ना,
1: जी
0: हरा धनिया हो गया, कुछ भी

0: जो भी हरी मिर्च लाते हैं हम, क्या होता है अक्सर अगर हम रसोई में ऐसे ही रखते हैं तो वो ना ख़राब हो जाती है ना। अगर हम उसे फ्रिज के अंदर रखना चाहते हैं तो कई बार उसमें भी ख़राब होने लगती है। तो बहनों, उनको बचाने के लिए आप गीला पेपर या फिर जो भी बटर पेपर होता है या टॉवल होता है उसमें अगर आप लपेट के फ्रिज में रखती हैं तो वो काफ़ी समय तक तरोताज़ा बना रहता है। खासकर पुदीना हो गया, आपका हरा धनिया हो गया, अक्सर होता ही है ना।
1: जी बिल्कुल।
0: और आप चाहे तो कई बार ऐसा भी कर सकती हैं, ज़्यादा अगर धनिया ले आते हैं आप तो उसको धो के अच्छी तरह से आप काट के ना किसी एयर
1: शीशे
0: टाइट,
1: के
0: हाँ
1: बाउल में
0: एयर
1: भी आप
0: टाइट है
1: रख
0: ना,
1: सकते
0: एयर
1: हैं। जी
0: टाइट जार
1: बिल्कुल।
0: में ना काट के अगर आप रखेंगी तो आप कभी भी उसको वहां से निकाल के डाल सकते हैं। उससे क्या होता है, धनिया कई बार जो है काफी समय तक चलता है और आप हमेशा उसे डाल भी सकती हैं ना, गार्निश कर सकती हैं अपनी जो भी आप घर में बनाती हैं। नहीं तो अक्सर धनिया क्या होता है कई बार खराब ही हो जाता है ना, उसकी
1: बिल्कुल
0: पत्तियां पीली हो जाती हैं।
1: जी। तो अब बात बहनों लहसुन की करते हैं, क्योंकि जब भी आप लहसुन छीलती हैं तो उससे क्या होता है कि आपके हाथों में गंध आने लगती है। तो उस
0: बिल्कुल
1: गंध को हटाने के लिए आप क्या कर सकती हैं कि स्टेनलेस स्टील के नल या चम्मच पर अपने हाथों को रगड़ सकती हैं, इससे आपके जो हाथ में गंध आई है वो दूर हो जाएगी।
0: बिल्कुल। और देखिए, जब हमारी बहनें खासकर रसोई घर में अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाती हैं तो बहनों उसमें आपने मात्रा जो रखनी है, अनुपात लहसुन का जो है खासकर 10% आप तक ले सकती हैं ना उसको, और 10 और जो अदरक है वो मतलब इतनी मात्रा में लेना है जिससे उसका पेस्ट अच्छा सा बने। कई बार क्या होता है, देखिए ब्रिजवाला लहसुन ज़्यादा ले लिया है ना और अदरक कम है तो उसका जो एक जो खाने का टेस्ट है ना वो जो थोड़ा संतुलन उसका भी बिगड़ जाता है।
1: तो इसमें बहनों आप यही कर सकती हैं कि लहसुन की मात्रा ज़्यादा रखें और जो अदरक है उसे कम रखें, यानी कि आपको 60% लहसुन लेना है तो 40% आपको अदरक लेना पड़ेगा।
0: बिल्कुल,
1: तो
0: देखिए
1: इस तरह
0: संतुलन
1: से
0: है
1: जी,
0: ना
1: इस
0: बना
1: तरह
0: के।
1: से जो आपका लहसुन अदरक का पेस्ट बनेगा वो बहुत ही अच्छा बनेगा।
0: बिल्कुल
1: अब बात अगर हरी मिर्च की करें तो जब सब्जी के साथ, देखिए हम हमेशा जो है बाजार से मिर्चें लेकर आते हैं, है ना,
0: बिल्कुल
1: और लेकिन जो हरी मिर्चें हैं वो ज़्यादा समय तक नहीं रह पाती, तो उनको रखने के लिए अगर हम उनको ज़्यादा देर तक रखना चाहते हैं, ताज़ा रखना चाहते हैं, तो उन्हें ताज़ा रखने के लिए उसे थोड़ी देर जो है ठंडे पानी में भिगोकर रखना चाहिए।
0: जी हाँ। और देखिए कई बार होता है कि हमें फ्रिज में रखनी है तो बहनों पता है कि उसकी जो डंडियाँ होती है ना,
1: हाँ
0: अगर आप उनकी डंडियाँ निकाल के अगर आप उसको किसी भी अच्छे से कपड़े में रैप करके रखती हैं तो वो तरोताज़ा बनी रहती है।
1: जी
0: अगर आप डंडियों के समेत रखेंगे तो मिर्चें आपकी ख़राब हो जाती हैं,
1: बिल्कुल
0: है ना। आप देख, आप कभी करके देखिएगा,
1: बिल्कुल
0: आपको
1: बिल्कुल।
0: फ़र्क ज़रूर महसूस होगा, है ना।
1: मैंने प्याज को काटते समय आंखों में आंसू तो सबके ही आते हैं ना, मिर्ची
0: बिल्कुल
1: लगती है तो आंसू भी आ ही जाते हैं, तो इससे बचने के लिए उसे थोड़ी देर ठंडे पानी में आप भिगो कर रखें तो आपकी आंखों से जो है आंसू नहीं आएंगे। और टमाटर को भी कभी भी फ्रिज में आपको नहीं रखना है, क्योंकि इससे क्या होता है उसका स्वाद भी ख़राब हो जाता है और साथ ही साथ उसका जो साइज़ है वो भी ख़राब हो जाता है। और आपने देखा होगा कि अगर फ्रिज में टमाटर आपने रखे हैं तो उन्हें पकाना भी मुश्किल हो जाता है, वो जल्दी से पकते नहीं हैं। तो अगर वैसे तो आपको टमाटर फ्रिज में रखने ही नहीं है, लेकिन आप ज़्यादा लाए हैं, रखे आपने रख लिए हैं, तो आप क्या करें कि उसे थोड़े समय पहले फ्रिज से निकाल दें। जब आप सब्ज़ी बना रही हैं तो उससे आधा घंटा पहले जो है फ्रिज से निकाल दें, उसके बाद ही आप उसका इस्तेमाल करें।
0: बिल्कुल। और देखो बात करें, चावल बनाती है हमारी बहनें तो अक्सर क्या होता है, चावल चिपचिपे से बनते हैं
1: जी
0: तो बहनों जब भी आप चावल बनाती हैं 1 चम्मच घी या आप जो भी तेल डालना चाहती हैं डालिए, तब देखिए चावल बनाइए, दाना खिला खिला नजर
1: बिल्कुल।
0: आता है ना।
1: तो अब गीत की बारी आ जाती है,
0: जी
1: गीत सुनवा लेते हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे महिला सम्मेलन कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। 1 बजने को है, अब आपको लिए चलते हैं समाचारों के लिए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र। पहले सुनेंगे आप हिंदी में समाचार और 1:05 पर अंग्रेजी समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: भारत और 5 नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण, यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: प्रधानमंत्री आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय टैलेंट लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं।
3: इटली के विभिन्न हिस्सों से आए भारतीय समुदाय के सदस्यों के लिए यह अवसर किसी ऐतिहासिक पल से कम नहीं है। शिक्षा, कृषि, डेयरी फार्मिंग, रियल एस्टेट और अन्य व्यवसायिक क्षेत्रों से जुड़े ये लोग दोनों मित्र देशों के शीर्ष नेताओं के बीच होने वाली इस उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक से अपनी अपनी आकांक्षाएं और अपेक्षाएं लेकर आए हैं। भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन नागरिक भी भारत में उभरते व्यवसायिक अवसरों को लेकर उत्साहित हैं। आकाशवाणी के लिए रोम से सुपर्णा भाटिया।
1: भारत और स्वीडन का विश्वास है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग से साझा समृद्धि और सतत भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया को फैसला करना है कि वो या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाए या फिर आपसी सहयोग को सुदृढ़ करे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की उच्च स्तरीय बैठक शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हिस्सा ले रहे हैं। रेलवे ने अरक्कोनम चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना के लिए 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह परियोजना इस मार्ग पर लोगों की भीड़भाड़ कम करने और समय की पाबंदी तथा परिचालन दक्षता में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए

वारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ लाल रोजामा ने जनता और निर्वाचन आयोग की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90

0: गांव की पहचान होती है उसकी मजबूत पंचायत से, और पंचायत मजबूत बनती है आपके एक वोट से।
1: क्योंकि ईमानदारी और बिना किसी के प्रभाव में आए दिए गए आपके वोट ही तय होते हैं गांव और बनती है सड़क, पानी, स्वच्छता और रोजगार संबंधी नीतियाँ।
0: इसीलिए 26 मई, 28 मई और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपनी भागीदारी निभाएं।
1: अपने परिवार और गांव वालों को भी जागरूक बनाएं और 100% मतदान के संकल्प को हासिल करने का लक्ष्य बनाएं।
0: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।

तुम बिन फिल्म का गीत अनुराधा पौडवाल उदित नारायण की आवाजों में अभी आपने सुना, फैज अनवर के बोल निखिल विनय का संगीत। गीतों की बात करें तो कोई ना कोई गीत ऐसा जरूर होता है जो हमें किसी खास पल की याद दिलवाता है, तो उन्हीं मीठी मीठी यादों को ताजा कीजिए इन गीतों के साथ। राज फिल्म का गीत आपके लिए लेकर आए हैं हम अलका याग्निक की आवाज में, समीर के बोल हैं नदीम श्रवण का संगीत।

0: चुनाव सिर्फ एक शब्द नहीं, ये है सच्चे लोकतंत्र की नींव, और मतदान है एक जागरूक नागरिक की पहचान, जिसे इस्तेमाल कर वो तय करते हैं अपने क्षेत्र, राज्य और देश की दशा व दिशा।
1: तो आइए अपनी जिम्मेदारी निभाएं, आगामी पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर भाग लें और गांव के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।
0: आपका एक एक वोट तय करेगा पंचायत का भविष्य। तो निर्धारित तिथि को अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर सोच समझ कर और बिना किसी प्रभाव के मतदान जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी ही नहीं अधिकार है।
1: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: जब हमें कोई पसंद करता है या हमें कोई अच्छा लगता है तो हम हमेशा यही चाहते हैं कि वो हमारे साथ रहे, हमारे पास रहे, हम हमेशा उसी के बारे में सोचना चाहते हैं। पर हमें ये भी याद रखना चाहिए, उम्मीद का जन्म प्रेम से होता है और प्रेम की मृत्यु उम्मीद से। अगला गीत आपके लिए लेकर आए हैं दिल है तुम्हारा फिल्म से, आवाजें हैं अलका याग्निक और कुमार सानू की, समीर के बोल हैं नदीम श्रवण का संगीत।

0: आपका गांव है आपका गर्व, इसको विकसित बनाने के लिए आइए मिलके मनाएं लोकतंत्र का पर्व।
1: हो चुकी है देवभूमि हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा। ये मतदान 3 चरणों में 26, 28 और 30 मई को होगा। ऐसे में आए एक सच्चा नागरिक बनकर मिलकर निभाएं जिम्मेदारी और भारी संख्या में मतदान देकर दिखाएं अपनी भागीदारी।
0: आपका हर एक कीमती वोट आपके गांव की दशा और दिशा तय करेगा, तो अपने मताधिकार का प्रयोग करना ना भूलें। राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

कभी खुशी कभी गम। जी हाँ, इसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना, कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक, उदित नारायण और साथियों को, समीर के बोल, जतिन ललित का संगीत। आप सभी ने भी ये देखा होगा कि बहुत से लोग इसलिए भी पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो हर चीज़ को परफेक्ट होने का इंतज़ार करते हैं। सही समय का इंतज़ार कभी कभी हमसे अवसर भी छीन लेता है। दिल चाहता है फिल्म का गीत अब आपको सुनवाते हैं, शंकर महादेवन, शान और केके की आवाजें हैं, जावेद अख्तर के बोल, शंकर एहसान लॉय का संगीत।

0: हमारा गांव है हमारी पहचान, हमारा गांव है हमारा अभिमान। आइए मिलकर दें इसके विकास में अपना योगदान।
1: हम सब ने ठाना है कि 100% मतदान के लक्ष्य को पाना है।
0: पंचायत चुनाव आ रहे हैं, जहां आपका हर ईमानदारी से दिया गया वोट तय करता है गांव की दशा और दिशा, साथ ही बनता है गांव के विकास का आधार।
1: तो 26, 28 और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और अपने परिवार और आस पास के हर वोटर को मतदान के लिए प्रेरित करे।
0: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।

0: अजनबी फिल्म का गीत अभी आपने सुना कुमार सानू सुनिधि चौहान की आवाजों में, समीर के बोल अनु मलिक का संगीत।
1: हिमाचल के युवाओं

0: अब सिर्फ सोशल मीडिया पर ओपिनियन देने का नहीं, वोट देने का भी वक्त आ गया है।
1: इस पंचायत इलेक्शन में 50 लाख से ज्यादा वोटर्स अपने मत का अधिकार इस्तेमाल करेंगे और हजारों फर्स्ट टाइम वोटर्स भी बनेंगे इस बदलाव का हिस्सा। 26 मई, 28 मई और 30 मई, याद रखिए ये तारीखें।
0: आपकी एक वोट आपके गाँव की सोच, विकास और लीडरशिप को तय करेगी। तो निकलिए घर से और बनिए जिम्मेदार नागरिक। पंचायत चुनाव 2026, वोट जरूर करें।
2: शुरुआत छोटी हो तो क्या, इरादे तो बड़े होने चाहिए। गिरना अगर किस्मत में है तो उठने की फितरत भी होनी चाहिए। लोग चाहे कुछ भी कहें, बस खुद पर यकीन होना चाहिए। झूम बराबर झूम फिल्म का गीत आपके लिए लेकर आए हैं के शंकर महादेवन और महालक्ष्मी अय्यर की आवाजें हैं, गुलजार के बोल शंकर एहसान लॉय का संगीत।

फिल्म संगीत में अभी बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं एफएम शिमला के साथ। 2 बजे हैं, अब आपको सुनवाते हैं सब रंग।

कैलाश खेर को अभी आपने सुना सबरंग कार्यक्रम में। सबरंग का मतलब है बहुरंगी या बहुत से रंग। इस कार्यक्रम में हम न सिर्फ आपको फिल्मी बल्कि एल्बम सॉन्ग से भी एंटरटेन करते हैं। ऐसे गीत जो अपने आपने टीनेज में तो सुने होंगे या किसी ने बड़े होकर या किसी ने सुने ही ना होंगे, तो ऐसे ही गीत लेकर आज ही रहे आपके लिए। तो सुनिए ये गीत।

सबरंग में आज बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप एफएम शिमला के साथ 2:15 होने वाले हैं। दोपहर हिंदी समाचार अब रिले होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कीजिए कुछ ही पलों का इंतजार।

0: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व के आदेश को वापस लेने से इनकार और मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 दिन के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा, सतत विकास और व्यापार जैसे क्षेत्रों में नॉर्डिक देशों के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के अलावा डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री भी शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने आज ओस्लो में आइसलैंड की प्रधानमंत्री क्रिस्टन म्योल फ्रॉस्टडॉटर और फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटरी ओर्पो के साथ द्विपक्षीय बैठक की। और जानकारी के लिए बात करते हैं नॉर्वे में मौजूद हमारे संवाददाता संगीता गोडबोले से। संगीता, नॉर्वे के साथ साझेदारी भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है?
1: कनकलता, नॉर्डिक देश अपनी 90% से अधिक बिजली ग्रीन स्रोतों से उत्पन्न करते हैं। भारत का अपना एक महत्वाकांक्षी ऊर्जा परिवर्तन लक्ष्य है। इसी विषय में नॉर्डिक तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोमास जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने में हो जाएगा। हरित भागीदारी की दिशा में उठाया गया सबसे ठोस कदम कल था। इससे नॉर्वेजियन कंपनियां हरित हाइड्रोजन, नीली अर्थव्यवस्था, चक्रीय अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में नवाचार और निवेश कर सकेंगी। भारत एक डेडिकेटेड पवेलियन के साथ नॉर शिपिंग 2027 में भी भाग लेगा। कल व्यापार शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस हिस्सेदारी को बढ़ाकर 25% करने का विजन साझा किया है।
0: धन्यवाद संगीता। भारत और स्वीडन का विश्वास है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग से साझा समृद्धि और सतत भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया को फैसला करना है कि वो या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाए या फिर आपसी सहयोग को सुदृढ़ करे।
2: इस लेख में दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस बात का जिक्र किया है कि इस समय जब संयुक्त राष्ट्र अपनी 80वीं वर्षगांठ मना रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षवाद का महत्व और भी अधिक स्पष्ट हो गया है। दोनों नेताओं ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभु समानता पर आधारित नियमों से संचालित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ने दशकों तक स्थिरता और विकास सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई है। लेख में ये भी बताया गया है कि एक प्रमुख विकास इंजन और ग्लोबल साउथ की जिम्मेदार आवाज के तौर पर निकट भविष्य के लिए भारत के दो महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। पहला 2047 तक विकसित देश का दर्जा हासिल करना और दूसरा 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का ये दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के व्यक्तिगत निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं। और जानकारी के लिए बात करते हैं हमारी संवाददाता सुपर्णा भाटिया से, जो इस समय रोम में मौजूद है। सुपर्णा, प्रधानमंत्री का आज इटली में क्या क्या कार्यक्रम है?
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली पहुंचने वाले हैं, जो उनके 5 देशों के दौरे का अंतिम चरण है। इस यात्रा से भारत इटली रणनीतिक संबंधों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारियों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में हैं। व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च

0: स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। मुझे यहाँ भारतीय प्रवासी समुदाय से बात करने का भी अवसर मिला, जो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित हैं।
1: जानकारी के लिए धन्यवाद सुपर्णा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग से मुलाकात के लिए चीन की यात्रा पर हैं। क्रेमलिन के अनुसार दोनों नेता आर्थिक सहयोग और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये यात्रा चीन रूस मैत्री संधि के 25वें वर्षगांठ के मौके पर आयोजित की गई है। ये वार्ताएं ऐसे समय में हो रही हैं जब वैश्विक भू राजनीतिक तनावों के बीच चीन, अमेरिका और रूस दोनों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने का प्रयास कर रहा है। यूक्रेन संघर्ष को लेकर पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद चीन रूस का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और रूसी तेल तथा गैस का प्रमुख खरीदार बना हुआ है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। एक रिपोर्ट।
2: न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसी कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। अदालत ने बच्चों, बुजुर्गों और राह चलते लोगों पर कुत्तों के हमलों की बेहद चिंताजनक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा है कि यह समस्या हवाई अड्डों और आवासीय कॉलोनियों सहित संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। पीठ ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: भारतीय रेलवे ने जम्मू श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा खंड पर 238 करोड़ रुपए की लागत से महत्वपूर्ण ढलान स्थिरीकरण, सुरंग पुनर्निर्माण और पुल संरक्षण कार्यों को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये कार्य देश के कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण भूभागों में सुरक्षित और विश्वसनीय संपर्क सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। रेलवे ने अरक्कोनम चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना के लिए 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया गया है। रेलवे ने 54 किलोमीटर लंबे क्यूल झाझा तीसरी लाइन प्रोजेक्ट को 962 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री ने कहा है कि ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हावड़ा दिल्ली कॉरिडोर पर क्षमता को बढ़ाएगा और रेल सेवाओं की समय की पाबंदी और ऑपरेशनल लचीलेपन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर को स्मार्ट पावर का एक सटीक उदाहरण बताया है। वे आज राष्ट्रीय राजधानी में सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज में सुरक्षा से समृद्धि सतत राष्ट्रीय विकास के लिए स्मार्ट पावर विषय पर आयोजित एक सेमिनार को संबोधित कर रहे थे।
3: ऑपरेशन सिंदूर डिलीवर्ड मिलिट्री प्रिसिशन इन्फॉर्मेशन कंट्रोल।
4: ऑपरेशन सिंदूर ने सटीकता, सूचना नियंत्रण, कूटनीतिक संकेत और आर्थिक संकल्प को सुसंगत राष्ट्रीय कार्रवाई के रूप में प्रस्तुत किया। इसने दुश्मन पर गहरा प्रहार किया और आतंकी ढांचे को ध्वस्त कर दिया तथा एक लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक धारणा को भी तोड़ दिया। सेना ने फिर इसके बाद सोच समझ कर विवेक सम्मत ढंग से अपनी कार्रवाई रोक दी। 88 घंटे चला ऑपरेशन सिंदूर स्मार्ट पावर का सबसे पूर्ण और सटीक उदाहरण था।
3: स्मार्ट पावर इन इट्स मोस्ट कम्प्लीट एक्सप्रेशन।
1: मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. लाल रोजामा ने कहा कि संशोधन प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की आवश्यकता है क्योंकि अधिकारी सीधे तौर पर मतदाता सूचियों का काम संभालेंगे। उन्होंने अधिकारियों से पूरी ईमानदारी, सटीकता और सतर्कता के साथ काम करने का आग्रह किया ताकि मिजोरम के वास्तविक नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी।

0: देखी गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98.64 रुपए प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 91.58 रुपए है। मुंबई में पेट्रोल 107.59 रुपए और डीजल 94.08 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 109.70 रुपए और डीजल की 96.07 रुपए दर्ज की गई, जबकि चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 104.49 रुपए और डीजल की 96.11 रुपए प्रति लीटर है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और हुर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता भुवन चंद्र खंडूरी का आज एक निजी अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। सेना के पूर्व मेजर जनरल रहे श्री खंडूरी ने 2 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री भी रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को एक अपूर्णीय क्षति बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री खंडूरी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दिल्ली, मध्य प्रदेश, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार और मराठवाड़ा में भी आज ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अगले 5 दिन तक लू चलेगी। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिन के लिए भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार दिन के समय दिल्ली में कुछ स्थानों पर भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है। एक रिपोर्ट।
1: विभाग के अनुसार दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कल मौसम विभाग के रिज क्षेत्र स्टेशन पर 44.6 डिग्री सेल्सियस, सफदरजंग स्टेशन पर 43.4 डिग्री सेल्सियस, लोदी रोड स्टेशन पर 43.8 डिग्री सेल्सियस और पालम स्टेशन पर 43.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: उत्तर प्रदेश में अगले सप्ताह भीषण गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में बांदा 47 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ लगातार दूसरे दिन भी देश का सबसे गर्म स्थान रहा।
2: आज भी राज्य भर में भीषण गर्मी और लू की स्थिति बनी हुई है। बुंदेलखंड और अन्य इलाके तेज धूप और झुलसा देने वाली हवाओं की चपेट में हैं। धीमी हवा के कारण उमस और बढ़ गई है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। वहीं राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग ने 33 जिलों के लिए लू की चेतावनी जारी की है। राज्य के दक्षिणी और मध्य भागों में अगले सप्ताह तक लू के हालात बने रहेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि धरती माँ के लिए पूरी मानवता एक परिवार है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि संपूर्ण विश्व एक घर की तरह है, जहां हर संस्कृति का अपना महत्व और सम्मान है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। कल रात चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 136 अंक की वृद्धि के साथ 75,451, जबकि निफ्टी 42 अंक बढ़कर 23,692 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व आदेश को वापस लेने से इनकार। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 दिन के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम खेल खिलाड़ी, जिसे लेकर मैं हाजिर हूँ दिशा। श्रोताओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम बातचीत करते हैं कुछ ऐसे खिलाड़ियों से जिन्होंने अपने अपने खेल के मैदान में एक महारत हासिल की होती है। आज भी हम बातचीत करने जा रहे हैं ऐसी ही एक खिलाड़ी से जिनका नाम है सुमन ठाकुर और ये कबड्डी की राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी है। सुमन जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है।
1: धन्यवाद मैम।
0: सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप कहाँ की रहने वाली हैं, कहाँ पर आपका बचपन बीता है, और अभी मैं वर्तमान की अगर बात करूँ तो वर्तमान में आप क्या करती हैं?
1: मैं जो बचपन है मेरा जो गांव का नाम है, मैं बिलासपुर की रहने वाली हूँ और मेरे गांव का नाम है कुमझवाड़। और आज की डेट में मैं JVT कर रही हूँ और जो मेरे अभी इन द सेंस अभी मेरी शादी हो गई है और मेरी जो शादी वो सोलन डिस्ट्रिक्ट में हुई है। हाँ जी।
0: तो देखिए, अभी हमने आपके परिचय में बताया है कि आप कबड्डी की राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी हैं।
1: जी मैम।
0: तो अगर कबड्डी की एक हम डेफिनेशन जानना चाहें तो कबड्डी है क्या, किस तरह का खेल है ये?
1: कबड्डी मैं आपको बताऊं तो कबड्डी एक गांव, एक हमारा जो ग्राउंड लेवल का जो खेल है और इसमें जो हर बच्चा, जो एक गरीब परिवार का बच्चा भी है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, क्योंकि इसके लिए जो चीज़ें चाहिए होती है वो कोई महंगी चीज़ें नहीं है। हर गांव का बच्चा, गरीब से गरीब बच्चा इस चीज़ को प्रोवाइड कर सकता है।
0: जी, और एक इतिहास अगर हम जानना चाहें कबड्डी का, तो क्या एक हिस्ट्री रही है इसकी, कहाँ से ये ज़्यादा शुरू हुआ है ये, और हिमाचल की अगर बात करें तो हिमाचल में कब से बहुत ज़्यादा प्रचलन में आया?
1: इसका जो इतिहास है, अगर आप अगर ऐसे गूगल पे सर्च मारोगे तो इसका तो इतिहास बहुत पुराना बताते हैं, लेकिन मतलब महाभारत के टाइम का तो इसका इतिहास बताते हैं, लेकिन आज के जो टाइम है तो जैसे देखा जाए जो कबड्डी के जो रूल बने थे, तो सबसे पहले इसका जो रूल बना था वो 1920 में बना था, ठीक है। फिर जो इसको जो रूल को अप्लाई करा था वो 1923 में अप्लाई करा था इसको। फिर इसकी जो मतलब जो इसकी जो फेडरेशन बनी थी, ऑल इंडिया की फेडरेशन बनी थी वो 1983 में बनी थी। हिमाचल में जो इसका आप देखते हैं तो हिमाचल में तो आज की डेट में जो लड़कियों की जो कबड्डी की टीम है ये तो हर बार गोल्ड मेडल ला रही है, जो सीनियर वर्ल्ड की टीम है लड़कियों की।
0: और जब से देखिए प्रो कबड्डी स्टार्ट हुआ ना, तब से तो मुझे ये लगता है कि क्रेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है।
1: बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। लड़कों को तो मैं बोलती बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये, जो बच्चा मतलब आज वो चीज़ नहीं रही है कि हाँ खेलों में हमारा भविष्य नहीं है, बहुत एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है ये, अगर जो बच्चा मेहनत करता है वो आगे निखरता है।
0: और आपने कौन सी उम्र में खेलनी शुरू की थी कबड्डी?
1: मैं 9th क्लास में थी तब से मैंने मतलब ये गेम चूज़ कर ली थी। उससे पहले मैं मतलब सारी गेमें खेलती थी, जैसे खो खो हो गया, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, सब कुछ हो गया, लेकिन जो मैंने कबड्डी शुरू करी थी वो 9th से शुरू करी थी मैंने।
0: तो और ऐसा क्यों कि कबड्डी खेला आपने? क्योंकि जैसा भी आप खुद कह रही है ना कि बहुत सारी गेम्स हैं, लेकिन फिर कबड्डी में ही ज़्यादा रुचि बनी।
1: हाँ, एक्चुअली ऐसा हुआ कि जब मेरा एक ही गेम बन गया फिर कबड्डी, उस टाइम सबसे पहले मैंने सब जूनियर का ट्रायल दिया था और वो हमारे बिलासपुर में हुआ था। फिर उसके लिए पहले ट्रायल लिया जाता है बच्चों का नेशनल के लिए जाने के लिए, फिर मेरा ट्रायल हुआ और उसमें मैं सेलेक्ट हो गई। फिर जो हमारा जो पहला सब जूनियर था वो हमारा लगा था इस पटना बिहार में, फिर हम सेलेक्ट हो गई हमारी टीम, और उस टाइम से फिर मैंने एक ही गेम रखी अपनी कबड्डी। और धीरे धीरे, और मेरा सपना था कि उस टाइम पहले मैं खेलती थी तो मैं मतलब स्टेट लेवल तक खेलती थी, फिर मैं बच्चों को देखती थी कि यार इनकी शर्ट के ऊपर नेशनल की जो लोगो लगा है, तो मतलब मेरे मन में कहीं ना कहीं था कि यार मैं भी मतलब यहाँ तक पहुँचूँगी। तो मेरा जो सफ़र है वो ऐसा रहता है कि मैं वहाँ से सेलेक्ट हो जाती हूँ, फिर उसके बाद उस टाइम जो वेट कैटेगरी होती है उसमें चाहिए होता है वेट 50 kg, तो उस टाइम जो मेरा वेट था 52 था। तो होता ऐसा है कि हमारा कैंप लगता है बिलासपुर में, जैसे सेशन लगता है सुबह शाम दो टाइम सेशन लगता है। तो फिर जैसे जैसे धीरे धीरे भी सर बोलते थे कि नहीं, हमारे जो सर थे वो नंदलाल सर,

0: थे उस टाइम जो कबड्डी एसोसिएशन के जो मेंबर थे, फिर सर हमारा कैंप लेते थे, फिर वो हमारा वेट भी चेक करते थे कि अगर बच्चों का वेट नीचे आ रहा है तब ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो हम इनको घर भेज देंगे, किसी और को मौका दे देंगे।
1: बिल्कुल
0: तो हम ऐसा करते थे कि हमने जो बाकी लड़के जैसे सुबह शाम सेशन लगाती, हम उनके साथ सेशन लगाते थे, लेकिन हम दोपहर को फिर से हमने ग्राउंड जाना। और मतलब इतनी धूप होती थी, बिलासपुर का जो टेम्परेचर था वो बहुत ज़्यादा होता था उस टाइम, जो लूनू जो ग्राउंड है
1: जी
0: उसमें हम जाते थे और एक और मेरी फ्रेंड होती थी हमारे साथ, हम मतलब लूनू ग्राउंड के हमने कोई 10-12 चक्कर लगाने और अपने पूरे शरीर को मूव वगैरह से वो पूरा लगा के पूरा अपर ऊपर पहन के रनिंग करनी और आके फिर से हमने आना और अपने रूम में आ जाना वापस। और ऊपर से लड़कियों ने हमारे ऊपर रजाइयाँ फेंकनी ताकि ज़्यादा स्वेटिंग हो उनको।
1: जी
0: फिर उसके बाद उसी तरह से हमने अपना वेट लॉस करा और हमने खाना पीना छोड़ दिया था, मतलब एक क्रेज था भी नहीं, नेशनल लगाना ही
1: लगाना
0: है।
1: ही।
0: हाँ जी, फिर उस तरह से फिर भगवान की कृपा रही और हम भी मतलब हमने भी बहुत ज़्यादा मेहनत करी और फिर जब एट लास्ट जब हम जाते हैं वहाँ पे, जब हमारा वेट चेक होता है तो मेरा 48 वेट आ गया था उस टाइम।
1: जी तो देखिए आपने मेहनत की ना बहुत, और
0: यस
1: आपकी
0: मैम,
1: बात से मुझे ये लगा कि नहीं यार ये क्रेज़ होना बहुत ज़रूरी है,
0: यस
1: क्योंकि अगर
0: मैम,
1: आप में
0: यस
1: ये
0: मैम,
1: चीज़ है ना तो आप ज़रूर वो चीज़ अचीव कर लेते हो।
0: यस
1: अगर
0: मैम,
1: आपको भी लगता कि छोड़ो यार मेरा वेट तो ज़्यादा है तो मेरी
0: हाँ,
1: सिलेक्शन नहीं होगी,
0: यस मैम,
1: लेकिन आपने उस चीज़ पे अपना 100% नहीं
0: हाँ
1: टू
0: मैंने वो
1: हंड्रेड
0: चीज,
1: परसेंट दिया है
0: यस
1: आपने।
0: जितना मेरे से हुआ मतलब
1: जी
0: रोना भी आता था बीच बीच में कि
1: बिल्कुल
0: यार अब क्या होगा क्या नहीं होगा, घर से फोन आता था, फिर मेरे जो पापा है उनका बहुत सपोर्ट रहा मेरे को, और मतलब पापा ने मेरे को कॉल करना, फिर मैंने कई बार झूठ बोल देना कि हाँ पापा मैंने खाना खा लिया है, लेकिन मैंने
1: जी
0: खाना नहीं खाया होता था उस टाइम। मेरे को ऐसा था कि नहीं यार मेरा वेट आना चाहिए, मेरे जो मर्जी हो जाए, दुनिया
1: नेशनल
0: यहाँ से
1: जाना
0: हुआ,
1: है।
0: नेशनल तो मैंने जाना ही है और 100% जाना है।
1: जी देखिए ये क्रेज होना बहुत ज़रूरी है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो आपको बच्चे भी सुनेंगे ना उनके अंदर भी एक ये चीज़ आए आपको सुनकर कि नहीं यार
0: जी
1: अगर हमें
0: मैम,
1: कुछ अचीव करना है ना तो उसके लिए हमें
0: जब
1: पागल तो होना
0: आप,
1: पड़ेगा,
0: जी मैम, जी
1: वो
0: मैम,
1: पागलपन चाहिए
0: जब
1: हमें
0: आप किसी चीज़ को दिल से आप आजमा लेते हो कि नहीं मैंने ये करना ही
1: करना
0: है
1: है।
0: करना ही, फिर वो चीज़ भी आपको अचीव हो जाती है।
1: जी बिल्कुल, और देखिए कबड्डी की जैसे हम बात कर रहे हैं तो इसमें अगर हम फाउल्स की बात करें, रूल्स रेगुलेशंस की बात करें, तो क्या क्या रूल्स एंड फाउल्स रहते हैं इसमें?
0: जैसे हमारा मैच स्टार्ट होता है तो मान लो जो दूसरी टीम का खिलाड़ी है, अगर हम उसको जानबूझ के हम उसको कहीं इनडायरेक्ट उसको चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो हमारा फाउल माना जाता है, और अगर हम उसको कहीं मान लो जैसे रेडर रेड करने आता है और जो डिफेंडर होता है उसको बिना टच करे वो लॉबी में चला जाता है तो वो भी फाउल होता है, अगर अगर हम रेडर को टच नहीं करते और हम पीछे वाली लाइन पे चले जाते जो एंड लाइन होती है तो वो भी फाउल है, फिर हम आउट माने जाएंगे। ये तो
1: और
0: मैंने आपको बेसिक से बताया, ऐसे तो बहुत फाउल होते
1: बहुत
0: हैं। यस
1: जी
0: मैम,
1: जी और देखिए ये जो गेम है ना हमने देखा है कि हाँ कहीं ना कहीं ऐसा लगता है देखिए कि अरे बहुत चोट लग सकती है
0: यस
1: इसमें,
0: मैम, यस
1: क्योंकि
0: मैम,
1: खींचातानी होती है, आपको पकड़ना है रोकना है, तो चोट लगने का जो एक डर है ना, आपको क्या लगता है कि कबड्डी को आउटडोर खेल के वो ज़्यादा है या इनडोर खेल के ज़्यादा है?
0: मैम ऐसा तो कुछ नहीं है, अगर जो दोनों टीमें आते हैं अगर खिलाड़ी अच्छे हैं और उनको रूल रेगुलेशन का पूरा पता है तो चोट लगने का खतरा बहुत कम है।
1: जी
0: अब कई बच्चे ऐसे देखे हमने अभी, उन्होंने मतलब अभी जर्नी स्टार्ट ही करी और इंजरी उनको हो जाती है पहले,
1: जी
0: अब हमने अपने जैसे हमने यहाँ तक खेला तो भगवान की भी कृपा रही और हमारा भी ऐसा रहा कि आज तक हमें कोई ऐसी इंजरी नहीं आई है, क्योंकि जो प्लेयर अच्छा प्लेयर वही है जिसको पता है कि हाँ कैसे खेलना है कैसे नहीं खेलना है।
1: बिल्कुल,
0: हाँ जी,
1: तो देखिए जैसे इंजरी लगने का जो एक खतरा बना रहता है ना उससे बचने के लिए कैसे क्या क्या इक्विपमेंट्स आप लोग प्रयोग करते हैं?
0: वैसे तो देख लो अगर अचानक से हमें एकदम इंजरी वगैरह हो जाती है सबसे बेस्ट ऑप्शन है आइसिंग, जैसे स्वेलिंग वगैरह आ जाती है उस टाइम आप आइस, अगर ज़्यादा ही कुछ हो गया तो फिर आप हॉस्पिटल वगैरह जा सकते हो, लेकिन इन द सेंस कि अगर उस टाइम कुछ जैसे हमारे पास किट होती है स्पेशल हमें दी हो कोचिस के पास होती है वो किट तो बच्चों को दे देते हैं कि हाँ अगर आइसिंग वगैरह कर लो ये कर लो। जी मैम,
1: क्या
0: बचने के लिए
1: क्या
0: पहले तो वार्म अप, पहले अपनी फुल बॉडी को वार्म अप कर लो, जब आपकी बॉडी पूरी गर्म होगी सब कुछ होगा पूरी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी तो आपको चोट लगने का खतरा कम रहता है।
1: सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं होते इसमें कुछ?
0: सेफ्टी इक्विपमेंट्स तो हमारे ये है कि इसमें हाँ जैसे नी कैप डाल लिया,
1: जी
0: नी कैप वगैरह होते हैं इसमें, और अगर आपने मैट पे खेलना तो मैट शूज वगैरह होते हैं, मिट्टी पे मैट शूज बहुत कम वो करते
1: जी
0: हैं। हाँ
1: बिल्कुल
0: जी,
1: बिल्कुल, और इसके जो ग्राउंड होता है ना उसकी क्या एक लेंथ विड्थ रहती
0: जो
1: है?
0: लड़कियों की है वो 12 मीटर होती है उसकी लेंथ होती है और 8 मीटर उसकी विड्थ होती है।
1: और जो अंदर उसमें लाइंस बनी होती
0: हाँ,
1: हैं
0: और जो जो लॉबी का एरिया होता है हमारा वो होता है 1 मीटर का होता है, और जो सेंट्रल लाइन से जो बॉक लाइन होती है वो हमारी 3 मीटर होती है, और जो हमारा जो बॉक लाइन से और जो बोनस लाइन है वो 1 मीटर का होता है।
1: तो देखिए अभी आगे और हम बात करेंगे आपसे।

0: कबड्डी के बारे में, तब तक क्यों ना एक पहले हम गीत सुन लें। आपके कोई पसंदीदा गायक या गायिका जिनके गीत आप ज्यादा सुनती हैं?
1: गानों में तो मुझे देशभक्ति गाने बहुत अच्छे लगते हैं और मैं अक्सर उनको सुनती रहती हूँ।
0: जी, तो आप देशभक्ति गीत सुनना ज्यादा पसंद करती हैं। तो आइए श्रोताओं, सुमन जी के साथ मिलकर सुनते हैं सोनू निगम द्वारा गाया गया ये प्यारा सा देशभक्ति गीत।

0: इस गीत के बाद आइए बात कर लेते हैं सुमन जी से। अगर हम कैटेगरीज की बात करें तो कौन कौन सी कैटेगरीज रहती हैं कबड्डी में?
1: वो सबसे पहले बच्चों का जो स्कूली लगता है, जैसे स्कूली लेवल होता है, फिर उसके बाद सब जूनियर वगैरह, फिर जूनियर होता है, फिर उसमें आपका नेशनल आ गया, फिर नेशनल गेम्स आ गई, फिर आपकी इंटरनेशनल आ गया, फिर ऐसे लेवल बाय लेवल बढ़ता रहता है ये चीज़ें।
0: और अगर मैं बात करूँ इसके इवेंट्स की कबड्डी के, तो वो कहाँ कहाँ करवाए जाते हैं और क्या हिमाचल में भी होते हैं?
1: हिमाचल में अभी हमारा जो इस बार का जो नेशनल है वो हिमाचल ऑर्गेनाइज करा रहा है लड़कियों का नेशनल का। बाकी कुछ कई बार हुआ है, जैसे ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी हमारे हिमाचल में हुई है, बाकी तो अदर स्टेट वो ऑर्गेनाइज कराती है इनको।
0: ड्यूरेशन क्या रहती है इस गेम की?
1: जो लड़कियों की होती है वो 15-5-15 की होती है, तो 5 मिनट का फर्स्ट हाफ होता है, उसमें जो टीम है वो 2 बार टाइम आउट ले सकती है और उनको बीच में रेस्ट दिया जाता है, और सेकेंड हाफ भी 5 मिनट का होता है।
0: और देखिए, मान लीजिए ड्यूरेशन से पहले ही पूरी टीम आउट हो जाती है, फिर क्या इसमें आगे रहता है सिस्टम?
1: मान लो अगर आपकी एक टीम पूरी आउट हो जाती है, फिर भी वो कंटिन्यू चलता रहेगा प्रोसेस, वहाँ पे गेम रुकेगी नहीं, जब तक टाइम पूरा कंप्लीट नहीं हुआ तब तक वो गेम चलता रहेगा।
0: तो वो टीम दोबारा अंदर आ जाती है
1: यस
0: फिर
1: यस
0: पूरी,
1: ये,
0: तो
1: हाँ जी
0: उसका
1: हाँ
0: जो
1: जी।
0: सामने वाली टीम होती है उसको क्या बेनिफिट रहता है?
1: बेनिफिट ये रहता है कि उसको पॉइंट मिलते हैं। मान लो अगर आपका पूरे टीम आउट हो गई, ठीक है, 7 प्लेयर आउट हो गए, उसका प्लस 2 पॉइंट और एक्स्ट्रा मिलेंगे उनको।
0: वो सात के तो मिलेंगे ही, और
1: हाँ,
0: साथ में दो नंबर और होते
1: दो
0: हैं।
1: पॉइंट और मिलेंगे
0: जी जी
1: जी।
0: जी आपने इस क्षेत्र में अभी तक जितने भी अचीवमेंट्स की हैं उनके बारे में हम आप ही की जुबानी जानना चाहेंगे।
1: सबसे पहले मैंने जो खेला वो सब जूनियर खेला मैंने, और उसके बाद मैंने जूनियर खेला, और उसके बाद मैंने इंटर यूनिवर्सिटी और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेली, और मेरे जूनियर में मेरा सिल्वर मेडल है और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में भी मेरा सिल्वर मेडल है।
0: कौन सी जगह गई हैं आप इन गेम्स को खेलने?
1: जब हमारा सब जूनियर हुआ था तो पटना बिहार गई थी, और जो जूनियर हुआ था वो गुजरात में हुआ था, और जो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी है हमारी वो हमारी रोहतक हरियाणा में हुई थी।
0: देखिए, इतनी दूर दूर तक आप खेलने गई हैं ना,
1: यस
0: तो
1: मैम।
0: कैसी एक जर्नी रही है आपकी अभी तक, कैसा एक एक्सपीरियंस रहा है? क्योंकि जब हम शुरू में अपने घर से बाहर निकलते हैं ना, तो हमें बहुत सी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं।
1: यस
0: आपकी कैसी एक जर्नी रही है अभी तक?
1: मेरी जो जर्नी थी वो तो आज भी वो टाइम मैं मिस करती हूँ कि काश

0: वो टाइम वापस आ जाए। और हम सब जैसे इकट्ठे जाते थे तो हम बहुत सारी मस्ती करते थे, ट्रेन में जाते थे हम, कई बार तो ऐसा होता था कि हाँ आज आज हम बैठे, कल भी हमने पूरा दिन ट्रेन में रहना, फिर अगला
1: बिल्कुल
0: दिन हमारा स्टेशन आएगा। तो वो जो मेमोरीज थी ना हमारी, वो बहुत ही अच्छी थी। हम जैसे बीच में कोई ताश वगैरह ले जाते थे खेलने
1: बिल्कुल
0: के लिए, फिर टाइम तो स्पेंड करना ही था कैसे ना कैसे। कई बार फ़ोन भी कितना चलाओगे आप, फ़ोन
1: जी
0: में कई बार ऐसा होता था कई जगह सिग्नल आता था कई जगह नहीं आता था, फिर कई बार आपस में अंताक्षरी खेल लेनी, फिर कोई ना कोई गेम ऐसे खेलें जैसे जिससे हमारा टाइम स्पेंड हो सके।
1: काफ़ी एक अच्छी
0: बहुत ही
1: यादें हैं
0: अच्छी,
1: आपकी
0: बहुत
1: उस
0: ही
1: समय
0: अच्छी,
1: की, है ना।
0: बहुत ही।
1: तो देखिए आपने इतना सारी अचीवमेंट्स की, इतनी दूर दूर तक आप खेलने गई, और साथ में देखिए इतनी अच्छी अच्छी आपने मेमोरीज बनाई हैं जस्ट
0: जी
1: बिकॉज
0: मैम,
1: ऑफ कबड्डी,
0: जी मैम,
1: क्योंकि इसके लिए आप जाती थी। तो आपको किसी ने सिखाई होगी कबड्डी, क्योंकि कोई भी गेम है, मैं कबड्डी की बात नहीं करूंगी, कोई भी अदर गेम है, आपको एक टेक्निक के साथ सीखना उन्हें बहुत ज़रूरी होता है। बिना कोचेस के, बिना गाइडेंस के हमें वो चीज़ें अच्छे से हम नहीं सीख पाते
0: जी
1: हैं।
0: मैम।
1: आपके कोचेस कौन रहे हैं?
0: मैं सबसे पहले बात बताऊं आपको, तो जो मेरे कोचेज हैं, जैसे मैं स्कूल टाइम में थी तो हमारे सर थे, तो एक तो होता है पता नहीं भगवान ने भी कुछ अंदर से ऐसी चीज़ डाली होती है कि पहले मेरा बहुत जैसे मन था भी स्पोर्ट्स में जाऊंगी मैं, फिर जैसे मैं खेलती थी तो जब मेरा नहीं लगा उससे पहले मैं खेलती, तो मेरे को मतलब टेक्निक के बारे में नहीं था पता कि हाँ ये चीज़ कैसे होगी, मतलब खेलती थी पॉइंट वगैरह ले आती थी, और जैसे जैसे मैंने शुरू करा तो मेरे को ऐसे पता लगा कि हाँ हमारे डीपी सर ने हमें बताया था कि ऐसे ऐसे भी इसके जोनल लेवल पे भी होता है और भी इसके लिए टीम जाती है भी, हाँ नेशनल होते हैं, सब जूनियर होते हैं। फिर जैसे जैसे हम चले गए ट्रायल देने, फिर हमने वहाँ पे देखा जैसे हमारा कैंप लगता था तो हमने रूल्स वगैरह जाने, टेक्निक्स वगैरह जाने कि हाँ ये चीज़ ऐसे करनी है ऐसे करनी। पहले तो हम ऐसा करते थे जोर का ही गेम था भी, नहीं
1: बिल्कुल
0: जिसमें जितनी ताकत होगी वही वो
1: लगा दो।
0: करेगा, लेकिन जब इस प्रोफेशन में हम चले गए तो हमने जब चीज़ की बारीकियाँ जानी कि ये चीज़ यहाँ से ये चीज़ होगी, तो हमने फिर इसको अपने अपने ऊपर भी अप्लाई किया, तो हमें मतलब कंफर्टेबल लगा कि नहीं ये तो बहुत अच्छा है। और जो मेरे कोचेज रहे वो मेरे नंदलाल सर थे, उनके पास मैं प्रैक्टिस करती थी, फिर मैं उन्होंने बाद में अपनी एकेडमी भी खोल ली थी, फिर वहाँ पे भी मैं उनके पास आ गई थी वापस जब मेरा कॉलेज का टाइम चला था, तो मैंने जो जुखाला कॉलेज है बिलासपुर का वहाँ से मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करा है, फिर मैं उनके पास वहाँ पे प्रैक्टिस करती थी और कॉलेज भी वहाँ से करती थी मैं, तो जो नंदलाल सर है उनका बहुत, वो तो बहुत ही अच्छे मतलब हमारे गुरु हैं, और आज भी हमें मिले जब हम यहाँ को आ रहे थे
1: जी जी
0: और
1: जी
0: रास्ते में हमें मिले, फिर हमने सर को बताया मैं कैसी ऐसी बात है, सर कहते बहुत अच्छा बहुत अच्छा, कहते माता रानी कृपा करेगी आपके ऊपर।
1: जी
0: जी मैम
1: तो एक देखिए अच्छे कोचेज और अच्छे फैमिली का सपोर्ट हो तो कहीं ना
0: बहुत
1: कहीं हम ना चीज़ें अचीव कर लेते हैं।
0: जी
1: आपने काफ़ी छोटी उम्र में जो है खेलना शुरू कर दिया था,
0: जी
1: और
0: मैम
1: पढ़ाई का एक दौर होता है, कैसे मैनेज करते थे आप दोनों चीज़ें की पढ़ाई भी करनी है और आपको देखिए गेम के लिए भी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी।
0: पढ़ाई की बात बताऊँ मैं तो मेरा मतलब दोनों चीज़ों में बैलेंस बहुत अच्छा रहा, मतलब मैंने पढ़ाई में जैसे सबसे पहले मैंने ग्रेजुएशन करा, उसके बाद मैंने अपनी बीपीएड करी, उसके बाद मैंने अपना पीजीडीसीए करा, और आज की डेट में जैसे मैं जेबीटी कर रही हूँ, तो जैसे अब स्पोर्ट्स कोटा होता है तो उसमें मैंने मेरे को दो ज्वाइनिंग लेटर आए थे,
1: जी
0: तो एक मेरे को पुलिस में आया था और दूसरा मेरे को इलेक्ट्रिसिटी में आया था, फिर मैंने वो नहीं ली क्योंकि मेरे को टीचिंग जो प्रोफेशन है वो बहुत ही अच्छा है, मेरे को तो
1: बिल्कुल
0: मैं इसमें जाऊंगी, फिर आज की डेट में मैं जेबीटी कर रही हूँ, मैं कहा नहीं मैं कहा जाना ही मेरे को टीचिंग में है, जब अपने पास कोई अच्छी चीज़ है तो उसको
1: बिल्कुल
0: अच्छी तरह अप्लाई करो ना फिर।
1: बिल्कुल
0: जी
1: बिल्कुल।
0: मैम
1: अगर मैं बींग अ वुमेन आपसे पूछूं, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि हमें बहुत कुछ चीज़ें मैनेज करके चलना है, तो आपको कभी कोई ऐसा टाइम आया लाइफ में, होता है ना कई बार हमें लगता है कि बस यार बहुत हो गया, मुझे नहीं अब ये चीज़ करनी है, कुछ मुश्किलें आई आपको लाइफ में एज अ गर्ल मैं कहूँ, एज अ वुमेन मैं कहूँ, आफ्टर, देखिए आपने कहा मैरिज हो गई तो आफ्टर मैरिज बहुत सी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है, तो कैसी एक जर्नी रही है, क्या लगता है आपको कि कितना मुश्किल होता है हमारे लिए एक्स्ट्रा?
0: अगर मैं शादी से अपने पहले की बात करूं तो मेरे पापा का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट रहा मेरे को, हम चार सिस्टरें थी मैं सबसे छोटी हूँ, तो मतलब पापा ने मेरे को ऐसे नहीं रखा कि यार ये लड़की है इसको बाहर नहीं भेजना या कुछ है, उन्होंने शुरू से ही मतलब ऐसे रखा मेरे को बिल्कुल लड़कों की तरह, और एक एक टाइम ऐसा था मैंने अपने बाल भी कटवा लिए थे, तो मतलब कि मम्मा मेरे को लगे गए ना कि हाँ आपने क्यों करा ऐसा ये वो, पापा कहते तब क्या हुआ कटवा लिए मतलब
1: बिल्कुल
0: उन्होंने शुरू से पापा का, तो आज की डेट में भी आज भी मैं अगर मैं जेबीटी जा रही हूँ तब भी मेरे को पूछते हैं हाँ बेटा तू चली गई ऐसा है, आज की डेट में भी मतलब वो बहुत ज़्यादा केयर करते हैं।
1: जी।
0: और अगर शादी की बात बताऊँ मैं आपको तो एक मैं मानती हूँ कि हाँ जब लड़कियों की शादी हो जाती है तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर
1: जी
0: आ जाती है,
1: जिम्मेवारियां ज्यादा आ
0: बहुत
1: जाती हैं
0: आती है
1: जी
0: अगर, और आप देखते हैं कि जैसे कई लड़कियां होती हैं उनको शादी के बाद जैसे पढ़ाई का मौका

0: नहीं मिलता है। अगर मैं बोलती हूँ, अगर आपको फैमिली अच्छी मिले, आपका लाइफ पार्टनर आपको अच्छा मिला है, तो आप हर जो चीज़ है वो अचीव कर सकते हो।
1: बिल्कुल
0: और आज की डेट में तो मेरे पास एक छोटी बेबी है, तो मैं उसको छोड़ के जाती हूँ, तो जो पीछे मेरी सासू माँ है वो उनको बेटी को देखती है, और मेरी जेठानी है, दीदी है जैसे, तो वो भी उसको देखती है, मतलब पूरी केयर करती है उनके पीछे।
1: जी,
0: और मेरे को टेंशन ही रहती नहीं आगे कि हाँ यार मैं अपने बच्चे को छोड़ के जा रही हूँ या कुछ
1: बिल्कुल
0: है। एक दिन जब मैं फर्स्ट टाइम गई तब तो मेरे को रोना आया था कि यार मैं इसको छोड़ के जा रही हूँ, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे वो आदत पड़ जाती है,
1: आदत,
0: आदमी वो एडजस्ट कर लेता है उन चीज़ों में
1: बिल्कुल
0: अपने आप
1: बिल्कुल
0: को।
1: बिल्कुल।
0: जी
1: और जैसा आपने कहा ना कि फैमिली अच्छी हो, अगर सबसे बड़ी
0: जी
1: बात है कि
0: सबसे
1: आपकी
0: बड़ी
1: पहले भी फैमिली बहुत अच्छी थी और अब भी
0: बात
1: आपको एक
0: में
1: अच्छी फैमिली मिली है, एक
0: जी
1: अच्छा
0: जी
1: सपोर्ट आपको है, तो
0: जी
1: मुश्किल
0: जी
1: नहीं आती फिर,
0: जी
1: है
0: जी
1: ना।
0: जी जी
1: तो देखिए, आज हमने आपसे बात कर ली है कबड्डी के बारे में। अब आप चलते चलते हमारे श्रोताओं को, या खास करके जो युवा पीढ़ी आपको सुन रही है, उन्हें कोई संदेश देना चाहेंगी?
0: जी मैं तो यही बोलूंगी कि आज की जो डेट है वो जो हमारी युवा पीढ़ी है, जैसे खासकर लड़के नहीं लड़कियां भी इस चीज़ में बहुत इन्वॉल्व हो रही है आजकल, जैसे आपको पता
1: बिल्कुल
0: ही है नशा दुनिया भर का चला है, तो मैं ये चाहती हूँ कि इन चीज़ों को आप हटके या तो आप पढ़ाई में चल जाओ या फिर स्पोर्ट्स में चल जाओ, आप इतना रखो कि नहीं, आजकल जो कैरियर है स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा है। अगर आप ठीक है, अगर आपने हाई लेवल पे नहीं जाना है तो आप थोड़ा बहुत तो फिट रख सकते हैं अपने आप को, जैसे जिम ज्वाइन कर लिया, सवेरे रनिंग कर ली, योगा कर लिया, ये सब चीज़ें कर लिए। तो मैं यही वो जो युवा पीढ़ी को यही बोलूंगी कि आप थोड़ा सा अपने लिए फिजिकल टाइम भी दिया करो।
1: तो देखिए, सुमन ठाकुर जी, आज आप हमारे स्टूडियोज आई अपना इतना कीमती समय निकाल कर, और आपने हमसे बात की है कबड्डी के बारे में।
0: जी
1: साथ ही साथ एक बहुत अच्छा संदेश आपने हमारे श्रोताओं को दिया है कि जरूरी नहीं है कि वो स्पोर्ट्स में एक अच्छा लेवल हासिल
0: जी
1: करें,
0: जी जी
1: लेकिन
0: जी
1: आप अपनी पर्सनल फिटनेस के लिए तो एटलीस्ट आप स्पोर्ट्स ज्वाइन कर सकते
0: जी
1: हैं।
0: जी
1: और जैसे ये नशा है, इनसे बचने के लिए तो ये बहुत एक अच्छा जरिया है।
0: जी जी
1: इस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू मैम।
1: श्रोताओं, आज कार्यक्रम में बस इतना ही। अब हम अनुमति चाहेंगे कार्यक्रम को संपन्न करने की। नमस्कार। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता दीपक कुमार।

0: एफएम शिमला पर अभी आप सुन रहे थे खेल खिलाड़ी कार्यक्रम।
1: हिमाचल में फिर से सज गया है लोकतंत्र का महापर्व, पंचायत चुनाव 2026।
2: 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में होने जा रहे हैं पंचायत इलेक्शंस, जहां आपकी एक वोट तय करेगी आपके गांव का कल।
1: सड़क, पानी, सफाई, रोजगार और गांव के विकास से जुड़े फैसलों में आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है।
2: इस बार बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए और चुनिएगा ईमानदार, योग्य और जिम्मेदार प्रतिनिधि। हिमाचल पंचायत।
3: सुरीला सफर संगीत का साथ।

0: सुबह हो या शाम आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज एफएम शिमला।
1: मस्त चुनो 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप एफएम शिमला के साथ। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
2: मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हमारे आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र भी रिले करेंगे। साथ ही एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज और डीटीएच सेवा पर भी सुने जा सकते हैं।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को आज खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। अदालत ने बच्चों, बुजुर्गों और यात्रियों पर कुत्तों के हमलों की बेहद चिंताजनक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि ये समस्या हवाई अड्डों और आवासीय कॉलोनियों सहित संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। पीठ ने चेतावनी दी कि निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। अदालत ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पशु जन्म नियंत्रण केंद्र स्थापित करने, रेबीज रोधी टीकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और रेबीज से संक्रमित या खतरनाक कुत्तों के इच्छा मृत्यु सहित कानूनी रूप से अनुमत उपाय करने का भी निर्देश दिया। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के लिए चुनाव प्रचार लगातार जारी है। सभी उम्मीदवार मतदाताओं को रिझाने के लिए अपनी प्राथमिकताएं उनके सामने रखकर वोट मांग रहे हैं। पंचायती राज संस्थाओं के लिए मतदान 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में होगा। इस बीच पंचायती राज चुनाव के सफल और निष्पक्ष संचालन के लिए चुनाव अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस दौरान मतदान प्रक्रिया, मतदान सामग्री प्रबंधन और मतदान केंद्रों पर पालन किए जाने वाले नियमों की जानकारी दी जा रही है। इसके साथ ही चुनाव कर्मियों को मतपेटी के उपयोग और चुनाव प्रक्रिया का अभ्यास भी करवाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश मिड डे मील वर्कर यूनियन और आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन ने राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आंगनबाड़ी हेल्पर और मिड डे मील वर्करों की ड्यूटी पंचायत चुनाव में पोलिंग पार्टियों के लिए खाना बनाने के लिए लगाने का विरोध किया है। मिड डे मील वर्कर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष संदीप कुमार और सचिव शांति ने कहा है कि मिड डे मील में अधिकतर महिलाएं खाना बनाती हैं, ऐसे में उन्हें रात 10 बजे तक पोलिंग पार्टियों को खाना बनाना संभव नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव ड्यूटी में लगे सभी कर्मचारियों को वेतन मिलता है, लेकिन मिड डे मील वर्करों को इस कार्य का कोई वेतन नहीं दिया जाता। उन्होंने निर्वाचन आयोग से मांग की है कि पंचायत चुनावों में मिड डे मील वर्करों और आंगनबाड़ी वर्करों व हेल्परों की ड्यूटी ना लगाई जाए। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक हफ्ते से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98.64 रुपये प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 91.58 रुपये है। मुंबई में पेट्रोल 107.59 रुपये और डीजल 94.08 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 109.70 रुपये और डीजल की 96.07 रुपये दर्ज की गई, जबकि चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 104.49 रुपये और डीजल की 96.11 रुपये प्रति लीटर है। ये वृद्धि 15 मई को हुई 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी के कुछ दिनों के बाद हुई है। इस बीच प्रदेश के सोलन जिला के कुछ किसानों का कहना है कि उन्हें कृषि कार्यों के लिए पेट्रोल पंपों पर डीजल और पेट्रोल नहीं मिल रहा है, इससे कृषि कार्य प्रभावित।

0: हो रहा है।
1: के और डीजल के दाम बढ़े, इससे हर एक चीज़ बढ़ेगी, सब्जी पे भी और जो मैन्युफैक्चरिंग है लोगों की, उसके ऊपर भी असर आएगा। यही है, ये खाली हो रही है।
2: खेती में उपकरणों के लिए जो हमें तेल डीजल पेट्रोल डलता है, पहले हम कैनी लेके आते थे या बॉटल्स में ले जाते हैं, लेकिन अब पेट्रोल पंप से हमें नहीं मिल दिया जा रहा है। उसमें उपकरण ही नहीं चलेंगे तो खेती कैसे किस तरह से करेंगे, कोई पानी नहीं चलेगी, मोटर नहीं चलेंगी, ट्रैक्टर नहीं चलेंगे।
3: हाँ, ये पेट्रोल के दाम जो बढ़ गए हैं, अब हम एक के बाद एक दो बार बढ़ गए हैं, तो इससे बहुत ज्यादा हमें घर से निकलने से पहले भी सोचना पड़ता है। बहुत ज्यादा ये मांग करते हैं कि भाई कम से कम हो, इतना ज्यादा इंक्रीज एक साथ ही, इतना पहले ही इतना ज्यादा हो गया है, कम हो, यही मांग करते हैं।
0: प्रदेश में तापमान में वृद्धि लगातार जारी है। तापमान बढ़ने से राज्य के मैदानी जिलों में लोगों को जोरदार गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने आज कांगड़ा, कुल्लू, सोलन और किन्नौर जिलों में अलग अलग स्थानों पर लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच विभाग ने कहा है कि हिमालयी क्षेत्र में ताजा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है। इसके प्रभाव से आज से 25 मई तक राज्य के मध्यम व अधिक ऊंचाई वाले अलग अलग स्थानों पर वर्षा की संभावना है, जिससे लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत की उम्मीद है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।
4: प्रादेशिक समाचार के बाद आइए सुनते हैं किन्नौर जिला की चिट्ठी। लेखक हैं सुमेश नेगी, वाचक स्वर है प्रभा शर्मा का।
0: जनजातीय जिला किन्नौर में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में 18 से 19 वर्ष के कुल 1316 नए मतदाताओं का पंजीकरण किया गया है, जिनमें से 1696 पुरुष और 620 महिला

0: लेखक हैं सुमेश नेगी, वाचक स्वर है प्रभाष शर्मा का।
1: जनजातीय जिला किन्नौर में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में 18 से 19 वर्ष के कुल 1316 नए मतदाताओं का पंजीकरण किया गया है, जिनमें से 1696 पुरुष और 620 महिला मतदाता हैं। जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 59,156 है, जिनमें से 29,583 पुरुष और 29,573 महिला मतदाता शामिल हैं। मतदान 3 चरणों में संपन्न करवाए जाएंगे। जिले में 26 मई, 28 और 30 मई को क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण में मतदान होगा। कल्पा उपमंडल में प्रथम चरण के तहत कोठी, पांगी, ख्वांगी, बारंग, सापनी, बरुआ, सांगला, छितकुल व दूनी पंचायतों में मतदान करवाया जाएगा। वहीं दूसरे चरण में कल्पा, थेन, पांगी, युवारंगी, पोवारी, किल्बा, शोंग, कामरू, रक्षम एवं ब्रेलंगी पंचायतें शामिल है। तीसरे चरण में रोगी, तेलंगी, शुदारंग, पुरबनी, मेबर, चांसू, थेमगारंग व बटसेरी पंचायतों में मतदान होगा। निचार उपमंडल के अंतर्गत प्रथम चरण में रूपी, छोटा कंबा, नाथपा, क्राबा, काफनू, मीरू, चंगाव, रामनी व सुंगरा पंचायतों में मतदान होगा। द्वितीय चरण में शिग्रचा, बड़ा कंबा, काचरंग, यंगपा एक, कटगांव, युला, जनकपुरी, जानी व निचार पंचायतों को शामिल किया गया है। तृतीय चरण में चोरा, तरांडा, बरी, यंगपा दो, शंगो, उरनी, पुनांग, पानवी व पौंडा पंचायतों में मतदान संपन्न होगा। इसी प्रकार पूह उपमंडल में प्रथम चरण के तहत सुमरा, नाको, हांगो, पूह, रोपा, कानम, जंगी, सिरपा व रिब्बा पंचायतों में चुनाव करवाए जाएंगे। द्वितीय चरण में शलखर, नामग्या, चूलिंग, स्पीलो, ग्याबुंग, लाबरंग, लिप्पा, अखपा एवं मूरंग पंचायतें शामिल हैं, जबकि तृतीय चरण में चांगो, लियो, डुबलिंग, नेसंग, सुन्नमठंगी, आसरंग, रारंग और चारंग पंचायतों में मतदान होगा। पंचायती राज चुनाव 2026 के तहत नामांकन जांच और नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब जिले में चुनावी तस्वीर लगभग स्पष्ट हो गई है। कई पंचायतों और वार्डों में उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं, जबकि शेष सीटों पर चुनाव होगा। जिला परिषद के 10 वार्डों के लिए कुल 49 नामांकन पत्र दाखिल हुए थे, जिनमें से एक नामांकन रद्द हुआ। पिछले दिनों 18 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिया, जिसके बाद अब 30 उम्मीदवार चुनाव मैदान में बचे हैं। इसी प्रकार पंचायत समिति सदस्य पद के लिए कुल 131 नामांकन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 8 नामांकन रद्द किए गए तथा 30 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिया। अब 93 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। पंचायत समिति के 6 वार्ड निर्विरोध चुने गए हैं। इनमें कल्पा ब्लॉक के कामरू और किल्बा वार्डों में केवल एक एक नामांकन प्राप्त हुआ, जबकि पूह ब्लॉक में चांगो, ग्याबुंग, लियो और स्कीबा वार्डों से उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। जिला किन्नौर में क्षेत्र की समृद्ध प्राकृतिक विरासत के संरक्षण व उत्सव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बीते 8 से 10 मई तक पहली बार कल्पा कंडे के गोली नामक स्थान पर किन्नौर बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। ये उत्सव 9 मई को आयोजित होने वाले ग्लोबल बिग डे एवं हिमालयन बर्ड काउंट के साथ समन्वित रहा। इस फेस्टिवल का उद्देश्य किन्नौर व हिमालय क्षेत्र की अद्वितीय जैव विविधता को उजागर करना और स्थानीय समुदाय और प्रकृति के बीच गहरे संबंध को सुदृढ़ करना है। ये आयोजन संरक्षण व सतत विकास के सिद्धांतों पर आधारित रहा और भविष्य में स्लो टूरिज्म को बढ़ावा देगा। इसके अंतर्गत 20 चयनित प्रतिभागियों को नेचर गाइड प्रशिक्षण कार्यशाला के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया, जिससे वे जैव विविधता के स्थानीय दूत बन सकें। इसके अतिरिक्त 30 विद्यार्थियों को इंटरैक्टिव एवं रोचक शिक्षण सत्रों में शामिल किया गया, जिससे उनमें प्रकृति के प्रति जागरूकता व जिज्ञासा विकसित हो। जिला किन्नौर के पूह क्षेत्र की रहने वाली रूप रश्मि साना पिछले 4 वर्षों से ढींगरी यानी आयस्टर मशरूम की खेती कर महिलाओं के लिए प्रेरणा बनकर उभरी हैं। उन्होंने बताया कि 4 साल पहले उन्होंने सोलन के चंबाघाट से मशरूम उत्पादन की प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न प्रकार की मशरूम खेती को देखने के बाद उन्होंने किन्नौर की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ढींगरी मशरूम की खेती को चुना। किन्नौर जिला की चिट्ठी समाप्त हुई। नमस्कार।
0: आकाशवाणी शिमला, FM शिमला 103.7 MHz और आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों पर आप सुन रहे थे किन्नौर जिला की चिट्ठी। लेखक थे सुमेश नेगी, वाचक स्वर था प्रभाष।

0: शर्मा का। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
1: 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप FM शिमला के साथ एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इसी फ्रिक्वेंसी पर। 3:10 हो चुके हैं, अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत। बेमिसाल फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, आनंद बख्शी के बोल RD बर्मन का संगीत।

बेमिसाल फिल्म का गीत अभी आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल, आर डी बर्मन का संगीत। ये जो पुरानी फिल्मों के गीत होते हैं इनकी बात ही अलग है, मन को सुकून देने वाले, जब भी सुनो उतने ही अच्छे लगते हैं और मन को भाते हैं ये गीत।

फिल्म संगीत में अगला गीत आपके लिए लेकर आए हैं खानदान फिल्म से, आवाज़ है लता मंगेशकर की, नक्श लैलपुरी के बोल हैं और खयाम का संगीत। दर्द फिल्म का गीत भी है लता मंगेशकर की ही आवाज़ में। सुनिए ये गीत और इन्जॉय कीजिए इस प्रोग्राम को FM शिमला के साथ।

0: नींव और मतदान है एक जागरूक नागरिक की पहचान, जिसे इस्तेमाल कर वो तय करते हैं अपने क्षेत्र, राज्य और देश की दशा व दिशा।
1: तो आइए अपनी जिम्मेदारी निभाएं, आगामी पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लें और गांव के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।
0: आपका एक एक वोट तय करेगा पंचायत का भविष्य। तो निर्धारित तिथि को अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर सोच समझ कर और बिना किसी प्रभाव के मतदान जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी ही नहीं अधिकार है।
1: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

दौड़ती भागती इस जिंदगी का कुछ ऐसा असर हो गया, सुकून से खाना खाना तो अब महज एक ख्वाब हो गया। तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते हम इतने मसरूफ हुए कि पेट तो भर गया हमारा, पर ये बदन बीमार हो गया। जी हाँ दोस्तों, तरक्की की इस अंधी दौड़ में हम आगे तो बहुत निकल आए हैं, लेकिन पीछे क्या छूट गया है? हमारी सेहत और हमारी थाली का वो सुकून। नमस्कार, मैं नेहा ठाकुर आपकी रेडियो दोस्त स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। आज युववाणी के इस खास कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो हम सबकी रोज़मर्रा की कहानी है, हमारा खान पान और हमारी आधुनिक जीवन शैली। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत से गीत के साथ।

दोस्तों, आज की हमारी लाइफ कितनी फास्ट हो गई है ना। सुबह अलार्म बजता है, हम हड़बड़ाकर उठते हैं, तैयार होते हैं और कॉलेज या ऑफिस के लिए भागते हैं। और इस आपाधापी में सबसे पहले बलि चढ़ती है हमारी सुबह के नाश्ते की। फिर जब दोपहर तक पेट में चूहे कूदने लगते हैं तो हमारा हाथ सीधे जाता है स्मार्टफोन पर और हम ऑर्डर करते हैं पिज़्ज़ा, बर्गर या फिर एक्स्ट्रा चीज़ वाले मोमोज। स्वाद में तो ये नंबर वन है, पर क्या कभी सोचा है कि ये फास्ट फूड हमारी सेहत को कितनी तेज़ी से स्लो कर रहा है। हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन यानी पोषण चाहिए, पर हम उसे सिर्फ खाली कैलोरीज दे रहे हैं। चलिए, खाने के इस शौकीन मिजाज को सलाम करते हैं और सुनते हैं ये मज़ेदार सा गीत।

दोस्तों, आज के युवाणी कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं हमारे खान पान और आधुनिक जीवन शैली की। जी हाँ दोस्तों, आजकल एक नया नियम बन गया है, खाना टेबल पर बाद में आता है, पहले उसका फोटो क्लिक होता है। जब तक इंस्टाग्राम पर हैशटैग के साथ स्टोरी ना डल जाए तब तक खाना हजम ही नहीं होता। लेकिन कभी सोचा है, जो खाना स्क्रीन पर इतना ग्लैमरस और खूबसूरत दिखता है, वो अंदर जाकर हमारे लीवर और पेट का क्या हाल करता है? आजकल के युवा में जो थकान, चिड़चिड़ापन और वजन बढ़ने की समस्याएं दिख रही हैं, उसकी एक बड़ी वजह यही दिखावे वाला खान

0: वैसे दोस्तों, एक और चीज़ है जो आज की जेनरेशन की रग रग में दौड़ रही है, और वो है कैफीन। चाहे देर रात तक पढ़ाई करनी हो, या ऑफिस का प्रोजेक्ट पूरा करना हो, या फिर दोस्तों के साथ गप्पे मारनी हो, हमें हर बात पर कॉफ़ी या एनर्जी ड्रिंक चाहिए। हम अपनी थकान को नींद से नहीं, बल्कि कैफीन के शॉट से मिटाना चाहते हैं, और नतीजा एंजाइटी, स्ट्रेस और रातों के गायब होती नींद। शरीर एक मशीन ज़रूर है, पर इसे भी रिचार्ज होने के लिए सुकून की नींद चाहिए, ना कि कैफीन का ओवरडोज। चलिए रातों के इसी सुकून और खामोशी को महसूस करते हैं इस अगले गीत के साथ।
1: ये रातें, ये मौसम।

दोस्तों, अब तक तो हमने सिर्फ समस्याओं की बात की। अब आप कहेंगे कि ज्ञान तो बहुत दे दिया, लेकिन इससे छुटकारा पाने के लिए करें क्या? क्या पिज़्ज़ा बर्गर खाना बिल्कुल छोड़ दें? तो साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम किसी भी चीज़ को आसानी से नहीं छोड़ सकते। तो इससे बचने के लिए एक छोटा सा बदलाव करना है, संतुलन यानी बैलेंस बना

करना है। आज पूरी दुनिया हमारे देसी अनाज यानी बाजरा, ज्वार और रागी की दीवानी हो रही है, जिसे हम सुपर फूड कहते हैं। घर की बनी दाल, चावल और हरी सब्जियों में जो ताकत है, वो किसी महंगे सप्लीमेंट में नहीं है। हफ्ते में 5 दिन घर का हेल्दी खाना खाइए और वीकेंड पर एक दिन अपना पसंदीदा चीट मील एंजॉय कीजिए। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत।

इसी के साथ वक्त हो चला है कार्यक्रम समाप्ति का। चलते चलते बस इतना ही कहूँगी कि आधुनिक बनना, नए ट्रेंड्स को फॉलो करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी सेहत की कीमत पर नहीं, क्योंकि अगर सेहत है तभी तो इस आधुनिक दुनिया का मज़ा है। अच्छा खाइए, कम से कम 7 घंटे की नींद लीजिए और खुद से प्यार कीजिए। इसी के साथ नेहा ठाकुर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप एफएम शिमला के साथ एक बार फिर से हाजिर है आपके लिए फिल्म संगीत लेकर। तो दिल तो पागल है फिल्म का गीत आशा भोसले की आवाज़ में।

हम सभी की लाइफ स्ट्रेसफुल हो गई है, अपने लिए हम समय ले ही नहीं निकाल पाते, जबकि हमें सबसे ज्यादा खुद को खुश रखना चाहिए, तभी तो हम सभी को खुश रख पाएंगे। और प्यार हो गया, आशा भोसले की आवाज़ में सुनते हैं इसी फिल्म का गीत, जावेद अख्तर के बोल हैं इस फिल्म के।

किसी से भी हमें नाराज नहीं होना चाहिए। कोई अगर हमारा दिल दुखाए तो सब्र कीजिए, दया कीजिए, माफ़ कीजिए और जाने दीजिए।

0: फिल्म संगीत में अभी बस इतना ही।
1: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला। हंसने हंसाने, आपको गुदगुदाने और कुछ गुनगुनाने के लिए
2: हमको मोहब्बत करेगा, दुनिया से नहीं डरेगा, चाहे ये जमाना कहे हमको दीवाना, आज हम तो

मीडिया वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। सभा के आरंभ में लीजिए प्रस्तुत है हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम। सबसे पहले आइए सुने सरमौरी कार्यक्रम।

सिरमौरी कार्यक्रम सुनवाड़े तो सोभी के मेरे डाल तो सथी एलो आवास अंकित और तुए ला सोने आकाशवाणी केंद्र शिमला दा सिरमौरी कार्यक्रम ठीक ठाक बस तो सोबे हाँ भी बिल्कुल ठीक है। तो हमारे यहाँ एलो के कार्यक्रम दे बात करने विश्व फेयर प्ले दिवस के बारे दे साथ ही बात करवे मधुमक्खी पालन रोजगार का साधन।

उनके बारे दे। सत्य सुन बे कुछ बढ़िया बढ़िया सिरमौरी लोकगीत, और सत्य सुन बे एलो की कुछ देश प्रदेशों की खास खास खबरें। तो यो कार्यक्रम दे सोभी दे आगे एलो बात करबे मधुमक्खी पालन रोजगार का साधन के बारे दे। एलो जो बे हम आत्मनिर्भर के बात करो तो तीन दे आम को ये एक शब्द आगे जो फाये पोषो से जे पोषो जे आत्मनिर्भर बनो के आम को रोजगार के साधन का अस। एबे के नोई है नौकरी जोन वाले नोई है नहीं थी, एबे को जो नोई है असो से नौकरी देने वाले नोई है। इंद एक बात ऐसे भी आओ है जे कम रुपये मुझी कम जमीन दा ऐसा का काम धंधा है जो शुरू कर सको और जिंदे लोई हर महीने आम के एक बढ़िया कमाई हो सको। तो एलो आमो है तो सती बात लेकर एक ऐसे काम धंधे के जिंदे मेहनत भी हो और आमो के फायदे का है सौदा भी हो सो। तो यो धंधे को ना हो सो मधुमक्खी पालन, जिंदे के आमो जिंदे के हमारे डबे दो ही बोलो तो तीनों दो ही हमारे पालनी है। आगे हम देखो थी है जे हमारे गौरव के तीरे दी हमारे गौरव के केथी भी आस पास दोई के छोते होती बने होंगे और तिंद से शहद बाणो थी मोह बाणो थी और सेदा शहद आमो मोह से जामो खाणो के कौर थी। तो एलो के जो जो माने दा है ये एक धांधा रावणी धांधा कैसे रावणी जो ये मधुमक्खी है इनू पालनी है और जो ये तिंदली मोह बन ली शहद बन ली तीनों आगू बिकना और तिंदली जो हमार का है बुढ़िया है कमाए हो सको। तो ऐबे बात करबे कि हमारे मधुमक्खी पालन का काम धंधा कहीं करना मतलब इंद ऐसे का खास बात हो सो जो ऐजा दोई पालनों का धंधा फायदे का धंधा सो। तो इंद हमारे जो खास बात ऐसी हो सो जे ऐजा धंधा थोड़े रुपये लोई और कम जागे दा शुरू हो सको। इंद हम पाँच देश बॉक्स शुरू कर सको और हम किथी भी आंगणों दे गौरव के छत पंदी लेंटर पंदी हम किथी भी रख सको और तीन दी दो ही पाड़ सको। दो जींदे के खास बात है जी ओसो जे इंदे हम ऐसे नहीं जो 24 घंटे पड़ता ध्यान रखना इनू बॉक्स का आम इन 7-8 दिवसों भीतरे को भी देख सको जांच सको मतलब इंदे का मतलब है जाए कि हम इंदे के ज़्यादा टाइम अपना देना नहीं पड़ता। तेज बात और सबसे खास बात यूँ धंधे शुरू करने के जी है जे इंदे लुई हमारे जो फसल हो लागे होंगे खेतों पुंडी तिंदे के भी इंदे लुई फायदा फायदा कैसा हो जब ये जी दो ही हमारे शाखों दे जो फूल हो लागे होंगे तीनों फूलों पंदी बूटो और तीनों फूलों का रस चूसो तो तिंदे लुई परागण या जिंदे के पॉलिनेशन बोली सहज प्रक्रिया फटाफट मतलब ए जाओ जे हमारे खेतों दे जब दो ही ओली आम मधुमक्खी तेते पड़बे तो से हमारे जो खेतों दे फूल और लागे होंगे फसल दे तीनों फूलों पोषे से रस चूस दिए और जिंदे लुई हमार जो पैदावार है सहज भी ज़्यादा होंगे। तो ऐज बात करें हम है जे हमारे मधुमक्खी पालन कहीं करना बात रख बिंदे के बाद भी जारी तब थोड़ी तू सुनो एक सिरमौरी लोकगीत।

बहुत ही बढ़िया गाना सुना, गिरी और पानी के ये शुक्र राजा चंद्रमोहन ठाकुर जी के लाए होंदा। तो ये भी थोड़ी आमो बात लेते करे मधुमक्खी पालन के और इंदे के फायदे के बारे में। अभी बात करबे जे मधुमक्खी पालन लोई कमाए कैसे के हो। शहद मो तो जो सुविधा आगे जो हमारे जो कमाए से यो मो बिक्यो। जब ए जी दोई अपने छोटे दा मो बाणो तो तैसे मो आमो बाजार दा बिक सको, जिंदे लुई हमारे एक बढ़िया कमाई हो सको। ओका जो कमाई का साधन इंदा सो से ओसो मधुमक्खी का मोम, मतलब जो मधुमक्खी का छत्ता तीनों से साथी मो साथे साथी मोम भी बाणो है। जिंदे लुई कॉस्मेटिक मोमबत्ती और दवाई भी बनाए, तो ए जो मोम बिक्यो भी आमो का एक कमाई कर सको। जब दोई मो बाणो तो से एक गोंद जैसी चीज कोठे करो, जिंदे के पोपुलिस बोलो। पोपुलिस जो है एंटीबैक्टीरियल हो और आयुर्वेदिक और एलोपैथिक दवाई बाणों के भी एक काम है। तो प्रोपोलिस बेक्यो भी आमो रुपये कमाए सको। एक बाणो एजी दोई इंदो रॉयल जेली, जिंदे के मधुमक्खी का शाही अमृत भी बोलो है। जू बजाय गुणकारी और ताकतवर हो, अंतर्राष्ट्रीय बाजार दे इंदे की कीमत लाखों हजार रुपये दे। ओका इंदे जिंदे लुयामो रुपये कमाओ से जाओ सो वी वैनम का साधन। वी वैनम का मतलब है मधुमक्खी का जहर, मतलब इन दोई को जहर। तू इंदे कुछ हैरान होने वाले बात नहीं थी। जो है जो मधुमक्खी को जहर हो, इंदे लोई गठिया की दवाई, जोड़ों के दर्द की दवाई और कैंसर

कृष्ण बीमारी की दवाई बानो के काम। तो ऐज कोरियामो बात मधुमक्खी पालन दे कमाए के साधन कहा सो और जिंदे बे क्यों आमो अपने रुपये कमाए सको। तो ऐबे तू है सोबी रोलो सोचे जे आमो है मधुमक्खी पालन के बारे में भी बात कर पाए, इंदे के फायदे भी बोल पाए, इंदे जो कमाए के साधन ऐसे जब गिनाए पाए, पर जो ऐजा काम धंधा ऐसे शुरू कैसे कैसे करना। तो जो ऐजा धंधा है से शुरू करना बहुत सूखा सो बाट आणता आदमी भी ऐसा धंधा शुरू कर सको। धंधा शुरू करने से आगे इंदे के दैनिक ट्रेनिंग बड़ो लौनी जिंदो आम को इशू जो सिखाई जे मधुमक्खी का ध्यान कैसे रखना और तीन के जो बॉक्स हो तीन के भीतर हाथ कैसे कैसे पाना और किन किन बातों का हम ध्यान रखना ये जी बाद बातों हम को इसी ट्रेनिंग दी सिखाई। इंदे की जो ट्रेनिंग हो से हम अपने जिले के कृषि विज्ञान केंद्र से भी लो सको, खादी ग्रामीण बोर्ड से भी लो सको और कृषि विश्वविद्यालय से भी लो सको। तो यूँ धंधा शुरू करने का सबसे सही वक्त असो अक्टूबर सागु मार्च तोड़ी मतलब काते दागु फागुन तोड़ी आम अज धंधा शुरू कर सको, क्योंकि यूँ वक्त दी जो हमारे खेतों बागड़ी दे से फूल बुढ़िया खेले होंगे आम अज काम धंधा बड़ा ही आसानी से शुरू कर सको। तो जे तुम्हारे भी अजा धंधा मधुमक्खी पालन का काम धंधा शुरू करना तो तुम भी ऐसा काम शुरू कर सको, आमो तुम किसी के फायदे भी गिनाए पाए, आमो तुम कोई ये जो भी बोल पाओ जे इंदे लुई कमाए कैसे कैसे आंदी और इंदे लुई एक फायदा है जो आंदा कि जो हमारे फसल और लागे आंदे खेतों पुंडे से जे भी इंदे लुई तिंदे बढ़ोतरी आंदी। तो जे तू इंदे के इच्छुक हो सो तो तू ऐसा काम धंधा शुरू कर सको। तो बात रख इंदे के बाद भी जारी तब थोड़ी तू सुनो एक सिरमौरी लोकगीत।

ई भी थोड़ी आम बात करे मधुमक्खी पालन रोजगार के साधन के, तो जे शामो सभी कोई पता असो जे एलो असो 19 तारीख और एलो मनाओ बादी दुनिया दो विश्व केयर प्ले दिवस के रूप दो। सभी खिलाड़ी के और जिनू जिनू है हमारा ऐसा कार्यक्रम सुने लो तीनों सभी के विश्व फेयर प्ले दिवस की बधाई। जब हम कुंजाई भी खेल देखो बाँ से कबड्डी होली क्रिकेट होला हॉकी होला वॉलीबॉल होला वहाँ जून जब इसे खेल होला तो हमारा जो ध्यान हो से सीधे दे पाती हो जे कौन जीतो और कौन हारो। पर जो एक खेल हो से सीधा हारना और जीतना थोड़ी सीमित नहीं होता, तेंदे हम खिलाड़ी की ईमानदारी गरिमा आपस मुझे इज्जत सम्मान ये जी बाधी बात तेंदे हम देखो। फेयर प्ले का मतलब असो जे खेल के नियम कानून का सम्मान करना, ओके खिलाड़ी की समान इज्जत करना और बिना धोखे के और ईमानदारी के साथ खेल खेलना, इंदे कही फेयर प्ले बोली। तो जो ये फेयर प्ले दिवस असो इंदे की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 दी करे। ये जो दूस शुरू करने के जो चाहना थी से सिर्फ खेल के मैदानों से खेलने वाले खिलाड़ियों थोड़ी सीमित नहीं थी, बल्कि जो हमारे गांव गोली से खेलने वाले खिलाड़ी है, गांव गोली से खेलने वाले नाड़िया है, स्कूलों से खेलने वाले जो हमारे नाड़िया है, ओके जो भी खेल खेलो है, जो कुंजाई भी खेल खेलो है, तीनों को ईशा खेल का असली मतलब सिखाना कहते के चाहना थे। तो जो खेल हो से बाँ कुंजाई खेल होला तिंद ईमानदारी बहुत जरूरी हो सो। इतिहास गोवा हो सो जुंजे खिलाड़ी बेईमानी करो या धोखे दौड़ी करो जीतो तीन लोग छोटे ही बिस्तरे जाओ, पर जुंजे खिलाड़ी ईमानदारी से खेल खेल ले धोखेबाजी नहीं कर ले से बाँ हारे भी जाले तो भी तीन लोग सौदा याद रखो। जब हम क्रिकेट देखो तो जब कुंजे खिलाड़ी आउट हो और से एम्पायर के इशारे द आगे पवेलियन के डोबे हांडदा लाग जाओ तो इंदे का मतलब जान पड़ता होना जे ने फेयर प्ले था करे, मतलब एम्पायर के इशारे से आगे तेज की पोता थिया जे हाँ आउट है मेरे बैटो दे बॉल टच थे और हाँ कैच आउट रहा है तेने इतने शायद एक फेयर प्ले का संदेश दिया। सहजी बात है रेस थी जब कितनी रेस हो और जो खिलाड़ी अपना विरोधी खिलाड़ी मतलब जैसे तैसे खिलाड़ी के खिलाफ रोलो खेले जैसे घायल होला तो से तैसे खिलाड़ी भी अपू साथ ही फिनिशिंग लाइन थोड़ी आगू नींदा तो इंदे कही फेयर प्ले बोली। एलो जो आमो कुछ सिखाओ जे आमो अपनी बारी दा भी कोई भी बेईमानी नहीं करनी, कोशिश अति धोखा नहीं करनी, जो आदमी अपने बारी दा कोशिश अति भी धोखा करला या धोखा दौड़ी करला या कोशिश ठोकला तो सहज तेज के शान के बात नहीं थी,

जू और जू आदमी अपने बारी दा ईमानदार होला, नियम के दायरे दा रहला और कुछ अति धोखा धोड़ी न करला, से अपने बारी का असली विजेता होंदा। तो ऐसा जो भक्त रोचा ले इंदा खेल बजाए रुपये पैसे वाला खेल हो सब। एब जो खिलाड़ी कुंजे भी खेल खेलला तेसके इंदे पैसे भी बैठो, रुपये भी बैठो, नाम भी बैठो। तो एलो के जमाने दे कोई खिलाड़ी शुकर जे अपने फायदे पायो खेलो दी चालाकी करो, कुणिए नशीली दवाई लो, कुणिए मैच फिक्सिंग करो। तो जो है जा विश्व फेयर प्ले दिवस हो, ये खेलो देवण वाले गलत काम के खिलाफ मजबूत आवाज़ उठाओ। ये यूनेस्को के स्वच्छ खेल अभियान का समर्थन करो, जो हमारे खेल के जो दुनियाए जो हमारे खेल हो सो से दुनिया भर दे साफ सुथरे रह ले, तीन कुंजा एक कलंकन लागला। तो मेरे तो सभी खिलाड़ियों के और जिन्होंने भी हमारे जो कार्यक्रम सुन लुआ सभी के मेरे एजी और जियो सो जे बाँ तू है मैदान दो क्रिकेट, फुटबॉल या कबड्डी रोली खेले या कुंजा भी खेल रोला खेले, तो तैसे ईमानदारी के साथ खेलिया, कुछ सती धोखा दौड़े इन कर, कुछ सती चालबाज इन कर। बाँ तो हारे जाले सहजे हार चालाकी से जीतना से बहुत बढ़िया हो सो। ऐसी बात हमारे बारी की हमारी जिंदगी की है, जिंदगी दी भी हमारे कुछ सती ना धोखा दौड़ी करनी ना कुछ ठगने। जब हम ईमानदारी से चलबे तो सहजे हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी एक उपलब्धि होंगी। ऐसी बात हो सब याद रखा जो जीतना तो बहुत जरूरी है पर ईमानदारी ले जीतना तीन दो भी ज़्यादा जरूरी हो सो। तो एलो थियो विश्व फेयर प्ले दिवस, इंदे के बारे में हम बात करें अब इंदे के बाद बात रखबे जारी। तबे थोड़ी तू सुनो एक सिरमौरी लोकगीत।

तो आमार यो कार्यक्रम दे एलो में बात करे मधुमक्खी पालन रोजगार का साधन और विश्व फेयर प्ले दिवस के बारे दे। एवे सुनबे देश प्रदेशों की कुछ खास खास खबरें। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता है समाज के सभी लोगों के पर्यावरण असंतुलन, मानसिक तनाव, स्वास्थ्य जागरूकता के कमी और नशे जैसे बुराई दूर करने का योगदान देने के अर्जी तैयार। सर्वोच्च न्यायालय जागे जागे से थामड़ों ने कुत्ते टीकाकरण के बाद पशु चुनने के जो अपने पुराने निर्देश दिए से जो पशु लौने से सर्वोच्च न्यायालय मना दे करे। सर्वोच्च न्यायालय अधिकारी के इन थामड़ों ने कुत्ते आश्रय स्थलों दे रखने के आदेश दे दे। प्रदेश दे पंचायती राज संस्थाओं पायो चुनाव प्रचार चालियों दोस्तों। सभी उम्मीदवार है मतदाता रिझाणो पायो अपनी अपनी प्राथमिकता लोगों के सामने राख्यो वोट लवे मांगी। पंचायती राज संस्था पायो मतदान 26 तारीख, 28 तारीख और 30 मई को हसो। पेट्रोल और डीजल के भाव एलो 90 पैसे तोड़ी रे बढ़े एजे के हफ्ते भीतर 100 रुपये ज़्यादा बढ़े होंगे भाव हसो। हिमाचल प्रदेश मिड डे मील वर्कर यूनियन और आंगनवाड़ी हेल्पर यूनियन ने पंचायती चुनाव दी पोलिंग पार्टी के खानों के बनाने के ड्यूटी पायो विरोध ला करी। प्रदेश का जो तापमान ऐसे लगातार बढ़ता लगा तापमान बढ़ने लई राज्य के जो दौड़े के जो जिले असो तीन दा लोग गर्मी का सामना ला करे। मौसम विभाग है लो कांगड़ा कुल्लू सोलन और किन्नौर जिले के अलग अलग जगह दे लू चालनों के येलो अलर्ट जारी था करे। अभी वक्त है चला हमारे यहाँ कार्यक्रम का। अभी बेटी हूँ भाई तुम से अगले शुक के तब तो थोड़ी तुम मुख्य दो इजाज़त तुम सो बी के मेरी ढाल।

जी तो सांझ के 4:50 हुई गए। तो सुनो तुसे अपना एवे महासुई कार्यक्रम। सभी महासुई कार्यक्रम सुनने वाले की भारती ठाकुरारी नमस्कार। तो जी आज के हमारे कार्यक्रम और ये जो रूपरेखा है से तुसा के दसी दई कि क्या क्या सा गलबात लगानी तुसा साथ है। तो जी सभी ते पहले तो संतुलित आहार और पोषण रे बारे ते तुसा साथे आसा गलबात लगानी और हमारे जो पर्यावरण है पर्यावरण प्रदूषण रे बारे दे भी तुसा साथे कुछ खास

जी तो बहुत ही बांका लोकगीत उसे सुना है वो कुलराज किशोर और साथी दी आवाजा दे। तो ये ब्यासा कुछ गल बात लगानी संतुलित आहार उरे बारे दे और पोषण उरे बारे दे। तो जी देखो आज के समय दे जे देखा जाओ तो सभी ते बड़ा जो एक गल बात होनी चाहिए हो जो एक जागरूकता फैलानी चाहिए तो उसे मेरे हिसाब से संतुलित आहार और पोषण रे बारे दी होनी चाहिए हो। क्योंकि ज्या ज्या हमारा वक्त लगी रहा बदलने हमारा समय लगी रहा बदलने है ना तो आशा सभी रा जो खाने पाने रा रहने रा जो एक तरीका ऐसे सारा बदलने लगी रहा और ए तेरी वजह ते आसे जो है बीमारियाँ रा अपने जो शरीरों के घर बनाने लगी रहे और ए तेरा सही एक तरीका ना होने की वजह ते ही जो है हमारा आने वाला जो बच्चे हमारे जो भी अगले जो भी मतलब छोटे छोटे बच्चे ले लो न्यू नई पीढ़ी ले लो जो भी उन्हें तो तीना दे कुछ ना कुछ बीमारियाँ जन्मजात पैदा होने लग रही हैं। सिक्या क्या बीमारियाँ जियाँ कि मतलब बच्चे माए बाप तो ठीक ठाक लंबे पर बच्चे केड़े लग रहे उन्हें कि बोने तिना कदी नहीं लग रहा बढ़ने है ना और कुपोषण होने लग रहा बच्चा के जन्म जाती जब जैसे वो पैदा होने हैं तो तिनारा मतलब या तो जल्दी हो जाने छठे महीने दे होने लग रहे सातवें महीने दे होने लग रहे और जो अठवें नौवें दे हुई भी गए तो तिनारा वजन एड़ा होना कि 2 किलो है ना। तो इतने क्या हो जावा कि जो एक चक्रो आ ना मनुअरा कि पैदा हुआ बच्चा तो पैदाइश ही बच्चा कमज़ोर था तो आगे बढ़ते बढ़ते तिसे बच्चा कल्ला के जवान होना चाहे से माठा है चाहे से बेटी है जब इसे बड़े होने तो मतलब तीन आखे अड़क कोई भी बीमारी है एकदम लग जानी कहूँ कहूँ किसी हो एक तो पैदा होंदे कमज़ोर थे अच्छा दूजे ते बाद जिया जिया बच्चा बढ़ने लग्या तो आसे ते भी तीन रहा ध्यान नहीं रख्या किया नहीं रख्या ध्यान कि मान लो जे अबे एक गर्भवती है ते सारे कोई बच्चा जमया तो सभी ते पहले तो आसा गर्भवती का ध्यान रखना चाहिए था गर्भवती आखे सब कुछ खाने पीने के देना चाहिए था गर्भवती आखे खुशी भरा माहौल देना चाहिए था घरों दे और गर्भवती आखे मतलब समय समय पाते स्वास्थ्य जांच टीकाकरण सारी सुविधाएं आशा के दिलानी चाहिए थी और समय समय पाते थे साखे दिन ने भी 2 घंटे आराम देना चाहिए था और रात भी 8 घंटे री पूरी नींद थी साखे देनी चाहिए थी। और इन सभी ते बड़ी गल कि गर्भवती जेबे भी हुई माता तो ते सारा और करोड़ा माहौल जो है जेती भी से रोई तेती थोड़ा जा भी ते साखे कोई अड़ा दुख भरा माहौल नहीं पैदा करना चाहिए क्योंकि तेस टाइम में जो है ना जी हाँ हम मानू अरे हारमोन बदलो है गर्भवती अरे हारमोन बदलो है तो छोटी छोटी गल्ला के भी बहुत तो मतलब बड़ा बुरा लगवा तो तेते ते क्या हुआ बच्चे पांदे भी असर हुआ मायरे पेटे दो है गर्भ होते जो बच्चा हुआ तेस पांदे भी से असर हुआ। अच्छा अबे जे ऐसे खाने पीने के ढंगों रहने देंगे कई बार तो इं ही माया के उल्टियाँ रहनी है कहीं कुछ होना तो सारे तो इं नहीं खाऊंदा नहीं है तो जब इसे थोड़ा बहुत खाने

भी लगेगी। तो कई जगह तो बस यहीं मतलब गला सुनाई सुनाई कैसे मतलब एड़ा हुई जाओ माता है। तो काला के क्या हुआ कि या तो बच्चा ही कमजोर रहना है ना, और बच्चा कमजोर रहना ते बाद क्या करना जी कि 6 महीने तक माया रे दूध देना चाहिए बच्चे के और कुछ भी नहीं देना चाहिए। पर कई जगह ना क्या बोलो तेते के भी मतलब से पुराने टाइम आते बुजुर्ग कर दिया है भी हाँ जी एड़ी कुटी देनी बच्चे के तेड़ी कुटी देनी, और देन दे भी आसे अपने बच्चा के भी दीती तो भाई अगले बच्चा के भी देनी चाहिए, वो बबुआ सुन दिया नहीं। तो आसे जो एक तो बच्चा पहले कमजोर पैदा हुई रहना वो बते तैसे वो कुटिया बनाई बनाई के जब कि बच्चे वो पितरे जो बने दे अंगे से वो अच्छे थे नहीं, अब विकसित नहीं हुई रहते ना ते पचाने दी से वो होंगी नहीं है हिम्मत, अब उसे सिर्फ माया का दूध पचाई सको आप बच्चा 6 महीने तक। तो टाइम लगो आप बच्चे के समय लगो आप बच्चे के समय 6 महीने तक करा कुछ भी चीज़ देनी चाहे बच्चे के ऊपरी आहार देना, तो 6 महीने तक सिर्फ माया रा ही दूध बच्चे के देना। और जब क्या हुआ बच्चा जब हुई जाना ना तो माया रा खाना पीना बंद कर दो है भाई, एड़ा नहीं खाना नहीं तो बच्चे खेड़ा हो जाना, तेड़ा नहीं खाना बच्चे खे एड़ा हो जाना भाई। एवे पहले भी माया की सबसे ज़्यादा जरूरत थी खाने की, और एवे जब बच्चा हुआ तेबे भी माया की सबसे ज़्यादा जरूरत थी खाने की, तेबे तो माया के दूध होना बच्चे तई है ना। एवे जिस टाइम में माया के सब कुछ खाने के देना चाहिए था तेस टाइम में माया के बस कई कर आते तो बस एक दूधो पाँदे और अलवे जो पाँदे रखो है कई दिन 10-12 दिन तो बोलो एक तई नहीं देंदे खाने के, मतलब पुराने बनाए थे क्या अब तब क्या क्या रिवाज बनाए थे। पर इति तो मैं एड़े एड़े भी बुजुर्ग देखे जो अपनी बहू आखे सब कुछ दो खाने के सब कुछ कि आसे तो अपनी बहू आखे सब कुछ खिलाया भैया ये भी नहीं खाना तो कदी खाना, पानी देना हो खुली के पानी देना हो अपनी बहू आखे जिस टाइम बच्चा हुई रहो ना ते वे बड़ी भारी जरूरत हुई माया आखे पानी आई बहुत त्याय लोग हुई तो खुला पानी देना हो है ना। ते क्या हुआ कि माया आखे पानी की कमी नहीं होनी है ना, कई बार बाबा सिर मतलब समस्या भी हुई जा गर्भवती जेड़ा बच्चा जमा होते ते बाद धात्री माता खे तो सेव नहीं होंगी जब खुला पानी पीना, और बच्चे खे अच्छा दूध मिलो पीने के तो बच्चे जब इसे दूध पीना तो बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी होनी, बेशक कमजोर बच्चा हुआ होगा पर बच्चे रा जो एक बढ़ने रा जो एक क्रम आ से अच्छा होना और बच्चे जल्दी जो से कमी पूरी कर लेनी। और जी बच्चा 6 महीने रा पूरा हुआ तो आशा इसके क्या देना ऊपरी आहार शुरू कर देना देना, तो ऊपरी आहारों दे आशा के सब कुछ देना है आस्ते आस्ते कि चीज़ जो भी आसे दाल आपू खाऊं जो भी सब्जी आसे आपू खाऊं है ना, और जड़े खिचड़ी बनाई थी कभी कोई सब्जी बनाई थी तो बहुत पकानी से सब्जी इतनी पकानी कि बच्चे के चबाने की जरूरत ना पड़ो और मैश करी के तेसा के पीसी के है ना तेवे बच्चे के से थोड़ा जा एड़े मतलब तरी जी बनाई के मतलब गाढ़ा जा तेवे बच्चे के पिलानी और 5-6 टाइम बच्चे रखना खाने के 6 महीने के बाद। और ते क्या हुआ बच्चे के हर चीज़ा का स्वाद लगो, और जब जब बच्चा जियाँ जियाँ बड़ा होता जाना ना तो बच्चा कभी किसी चीज़ा के ना नहीं करता कि माँ रोटी नहीं खानी कि माँ ये नहीं करना, ये शुरू ते ही बच्चा जियाँ 6 महीने रहा हुआ तियाँ ही बच्चे के सब कुछ खाना सिखाना पड़वा, क्योंकि बहुत मानू बोलो हमारे बच्चे एड़ा नहीं खाते हमारे बच्चे तो बस बोलो भी चिप्स खाने हमारे बच्चे बोलो कुरकुरे खाने हमारे बच्चे बोलो पिज्जा खाना समोसे खाने, अब जब तू से दस है अपने बच्चे है 6 महीने के बाद सही चीज़ा दसिया तो बच्चे के सही स्वाद लगाया जिब्बा है तो बच्चे तो सही मांगना। तो संतुलित आहार रा मतलब आसे पोषण देना बच्चे के जो प्रकृति आशा की चीज़ें दे रखी है ना साग सब्जी मारे दाली दे रखिया है ना अनाज दे रखे सब्जी फल है ना और दूध दही तेल घ्यू एड़िया चीज़ा दसो अपने बच्चे के खानी है, तो बच्चे रा तो आसे आपू लगी रहे से खराब करने जो एक बच्चे के पोषण मिलना चाहिए ते बच्चे ऊने नहीं बोने हैं अल्प पोषण बच्चे रा कम ऊना नहीं जब बच्चे के पोषण ही नहीं खाने दे आसे देने लगी रहे। तो ये एक बोलो ना इत के भी आसे शुरू ते आशा के इतने चीज़ा पाते या ध्यान देना पड़ना भी गर्भवती रा ध्यान रखा तो बच्चा अच्छा तगड़ा हुआ बच्चे रा तक बच्चे के माए 6 दिन माया रा दूध दीता ते बाद बच्चे के ऊपरी आहार ढंगोरा दीता है ना, और ते बाद जी जब जियाँ जियाँ बच्चा बड़ा होने लगा तो बच्चे के खाने की सारी साग सब्जियाँ सारे जो हमारे फलों है ऐसे सब और खास करके जंगली मौसमी फल सब्जियाँ देनिया चाहिए। अब कई मानू क्या बोलो है आसे गरीब है आसे नहीं ले सकते है ना काजू बादाम आसे तो बोलते नहीं काजू बादाम खाओ है ना, क्योंकि मौसमी कई एड़े चीज़ा हुई है ना जेड़े मूंगफली आई गया तो उसे सस्ती भी हो गई है मौसमों से जब कोई चीज़ आई मौसमी देखो अब गर्मी है अजकल तरबूज आने खरबूजे आने तो उसे केड़े हो है सस्ते हो अजकल है ना, तो तेड़ी चीज़ा खानियाँ चाहिए बच्चे के खिलानियाँ चाहिए। और जियाँ जियाँ बच्चा बड़ा होता जाना बच्चे का दिमाग का विकास अच्छा होना बच्चे की हड्डियों का विकास अच्छा होना हमारे और कल से ही हमारा जवान बनना से बच्चा है ना,
और तबे जवान बनना तो भाई जब ऐसे बचपन बच्चे रहा अच्छा निकाले अच्छा।

खाने पीने के दिता बच्चे के बाजार आदत से बच्चे के नहीं लाइया तो भाई सीधी जी गली कि मारा भविष्य सुधरी जाना बच्चे रा। तो संतुलित आहार और मतलब हमारा सारी जो थाली तेते बिचे सब कुछ होना चाहिए घरों रा बने दा अनाज दाल सब्जी फल दूध दही तेल क्यों सब कुछ आसारे तेते दे होना चाहिए हो। ते भी मारे बच्चे दिया अडिया मारा दिमाग विकास है ना कथी बौने नहीं होने बच्चे मारे है ना प्रोटीन बसा विटामिन खनिज सब कुछ फाइबर वगैरह सारे बच्चा के बच्चारी गल मतलब सभी की देनी चाहिए। बढ़ते दे बच्चा जब खाई लोगा तो से पूरी उम्र साथ दे हुई चीज़ है ना। तो सुनो तुसे एक लोकगीत।

आस है ना, कहीं बोने नहीं होने बच्चे मारे है ना, प्रोटीन बस आ विटामिन खनिज सब कुछ फाइबर वगैरह सारे बच्चा के बच्चा री गल मतलब सब भी देनी चाहिए। बढ़ते बच्चा जो खाई लोगा तो से पूरी उम्र साथ दे हुई चीज़ है ना। तो सुनो तुसे एक लोकगीत।

निर्माण करो है। तो आसे आज कल क्या करूँ है कि आसे जो भी मारे ओरे पोरेरा पर्यावरण तेसके गंदा करने लगी रहे, ध्यान नहीं रखने लगी रहे। इतने ते क्या हुआ, मानुआरा मारे जंगली जानवर है ना, पेड़ पौधे ये सब खराब होने लगी रहे और बीमार पड़ने लगी रहे। और जो हमारे इतने ते वायु प्रदूषण है, गाड़िया रा फैक्ट्रिया रा धुआं, पटाखे रा धुआं, इतने ते ऐसा के बीमारियाँ लगने लग रही है, खांसी दमा हमारे फेफड़े लग रहे खराब होने। और जड़े जल प्रदूषण के नदी जो मारे इतने ते कचरा लग रहा फेंकने है ना, केमिकल वगैरह अड़िया चीज़ें डालने लगी रहे पानी दे, तो उसे तीते ते क्या होना कि मछलियाँ मर जाओ या जो पानी के साफ करने लगी रही या डायरिया अड़िया बीमारियाँ पैदा हो जाओ या, क्योंकि पानी पीना से किसी ना किसी तो पीना ही ऐसे पानी। और जो हमारी माटी तेते रखे भी भाई खेतों दे ज़्यादा से ज़्यादा खाद पाया करनी है ना, और तेते ते क्या हमारी फसल खराब होने लगी रही, हमारी ज़मीन जो है ऐसे बिल्कुल बंजर बनने लगी रही। और आज के टाइम जड़ा समय बढ़ने लगी रहा तो गड़िया ही गड़िया हुई गया दिया, ध्वनि प्रदूषण बढ़ने लगी रहा, तेज से बाया करने जोर जोर ते और नवाया करने है ना, और इतने ते क्या लगी रहा उन्हें मानुआ के डिप्रेशन उन्हें लगी रहा, बहरेपन मतलब सुनने की समस्या लगी रहा उन्हें, चिड़चिड़ापन उन्हें लगी रहा, तो मानसिक बीमारियाँ पैदा होने लगी रहा। तो ये सब मिली जुली के कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण को दूषित करने लगी रही। और हमारे पर्यावरण प्रदूषण और जैसे भी ते बड़ा दुश्मन देखा जाओ तो कहती ना कहती वायु प्रदूषण ही है। धुआं धूल जो हमारे साओ साथे या सारे पितरे बैठ जाओ ही, आशा दिखती तो है नहीं से पर से आ सारे पितरे बैठ जाओ ही, और आने वाले टाइम आ सके गंभीर बीमारियां रूप दे दिश हुई। तो अच्छा बचना भी पाई किया बचिए बे ते बीमारियाँ ते इन्ना पर्यावरण प्रदूषण के किया बचाइए आसे, तो भाई पेड़ लगाओ, कितने पेड़ तू उसे लगाई सको, जितने ज़्यादा तू उसे पेड़ लगाई सको तो लगाने चाहिए, क्योंकि एक पेड़ 22 किलो माटी धूड़ जो हमारी गंदी धूड़ हुई ना उड्डी दी पर्यावरण दे ते देखे साफ करवा, एक पेड़ 22 किलो माटी धूड़ आके साफ करवा। तो जे सब भी एक दो दो पेड़ लगाओगे तो कितना हमारा पर्यावरण शुद्ध होना है ना, और जितना हो सको भाई गड्डिया गुड़िया कम लो कम चलाओ, नेड़े तेड़े जाना हो तो पैदल चली गए, नहीं तो साइकिल ले लो, साइकिला तेड़ा भी कम से कम कोई एड़ा हमारा पर्यावरण पर्यावरण कोई गंदा तो नहीं होंदा बच जावा है ना, और कूड़ा कचरा जड़ा हो तो त्याग नहीं लानी होंगी नहीं है, मतलब सही निपटान करना हो जी हाँ पंचायती दे गाँव नेड़े तेड़े दसो। तो जी ये गल की ऐसे पर्यावरण प्रदूषण बारे दे ये भी सुनो तुम एक लोकगीत।

जी तो वीरेंद्र होरी वाजा ते सुनिया तुसें लोकगीत। ए बी असें कुछ गलबात लगानी अपने पर्यावरण प्रदूषण होर बारे ते। तो जी देखो मारे जो पर्यावरण मतलब आ सारे ओरे पोरे जो भी हवा पानी माटी है ना, ये सब मिली जुली के एक पर्यावरण और

अभी आप आनंद ले रहे थे महास्वी कार्यक्रम का। ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। हिमाचली बोलियों के कार्यक्रमों में लीजिए अब प्रस्तुत है स्पीति कार्यक्रम।

lawatani piti mige thangbu jine lutani single phegunji dan yongwen yin dusya rangjung single senatene singala tane manda manda magi wala tane singa tapna lasya sya piti ru tane thangbu jine lutane rangjung single che tane organic singa tapka sya chilasena piti tharing bu che tane rikshu minda vipila yin dusya ngempolo huji mige tane singala मन राम मन राम मगी वच्चे तने मन की सावल तने पिती लांसा रांग देगे लूय देगे गिपकासिया तने पिती आगे तने लोची क्योंकोरे तने सेमजेंगे भी लांसा गये छे छाग गये छे तने चिया गये छे तने छाक्से लांसा रांग देगे साज लो तने तोंगा तोंज लो तने तोंगा लांसा शिंगले गिपकासिया चिलसे ने तने इवी फिला वागी शिंगे भी तने थालवा दे बोल दो ना छे तने लोटो ही ना याकपु के ना छे तने इंगे बोला तने यरा नमशी ठनमोस ने तने शिंगरु यहाँ भद देना वाई भद आयोंगा से इने लो तने पितिरु तने सांगुंची ची तपका पास ना तने ने छे क्यों छे तने क्यों नाकपु छे तने अल्लू छे तने गाला ही ना तने योर तपका सिया तने पितिवी तने शाम छोगेरो तंदां तने कुशु चुली छे तने यहाँ सब्जी ढामिंडा किया सिया ते ई गोंबो तपका तने गाले ना उच पितिरु मिनांग मत खा मांबो गिवन सोला तने गुंगा ची सब्जी दा निवा कि तने निये ने थोन जिंगारो तने दाचांग ओदे के सार जिलो तने शाग देमो तोन जिलो तने शिंगाला तने सातवा गिप्त डो सिया तने सातवा गिप्त यहाँ शाम गजेन दे चिलो यहाँ शाह देमो जुते जिलो तने लौटा खाकन टूल तने तेमदेल लगुजी रिपीटी खोलाएगे कौन चलो तने छोन में पार चलो तने शिंगल सांगुन चुको आसिया तने सांगुन चुक शिगाप ला तने शिमे के उनको सुना चे तने शिमे तांग शिगाप ला तने अने पम्मो के लान लियों के जाना चे तने ओती कम यान दावो चीज से तने लोटो धन्ना लंगो आसिया तने लोटो खन धन जिगाप ला तने युर्सा चीक नी से युर्सा चो आसिया तने ओती कम यान युर्मासा युना चे तने ओतु से तने सिंगल टू चुकु नाचें खतर फेकासिया तने ओतु से लोटो तोंगासिया तेरे ये लोटो तोले ने तने ने मिनांग मते खाच मो योगासिया चिले से ना ने ने लो सांबा चावाते से सांबा मिनांग मते जी चें बुचे तने उजिरे पिती नम शी फिल मिनांग मते याकपो योगासिया ये लोटो तोले तने मन के से प्रेम मातांग वाला तपकासिया तने ओती फिल तने ये सना की फिल मिनांग मते जूल याकपो योगासिया पिती रो तने सिंचाई तने छुटांग दांग वा मिनांग मते सोसो योगासिया चिले से ना उजी शिंगा गेल छू तेने ठाक ताने लो खांग छू के शुरू यों आसिया तेने जिंग नांग दो छू के किल छे तेने आने गे खांग जिंग खिंग जुंग यिंग जुंग से तेने छू के गोई जिखे आसिया तेने युल दो मितोले ले तेने रंग रंग सी तेने थोप तांग की हिसाब से तेने मी गेल छू नांदा थो आसिया तेने यां शिंगी वी युरा जांग ना इना छे तेने यां जिंग जांग ना इना ची इना तेने युल मी गोंग थूल जिलो नेमो जोम जिल तेने जांग आसिया तेने इने लो वागी वी टू गया छे तन जोंद गया छे चोंग गि चिशिया पास ने तने रंग गि चिसो के नंग दो चिक चिंदे चिक दे ले दे छे छे थुन दे ले दे छे छे लेंगेन रंग ओते के खेन्ना के तने नुपा रंग ओते के शेन वासिया नेम बोल उजि मी गे तने उजि रे छु छे लुंग छे तने रिया गेला तने मिना मत थुक छे कटे यापुन बु गोम गासिया रंगजुंग सिंगले वि फिल तने पिती ल मिनांग phantoka yoga se chile se ne iwi phila tene shinga thalwa gya tene thulla dwa ma se tene man mekan loto kya se nyam pola iwi phila wujir khoryu sangma de na che tene sang sang yakpo wa yong asya den dang thring ki tuile ne yog gyare ne jaga mang che ru tene main gib chulo man ki phila tene thalwa gya kharab chana che chu gya bawa chando asya otene lo piti taksang ki tuile tene inji kala se ne tene eco friendly agri model ji ka chha de ga asya dang thring ta namshi gyundren so la kha che charwa ge dui ta ta la ma gib che kangchu ge ina shur ji phunda tene oyi mina ma de kangin che mu je indu chile sen uji piti ge phila tene kangchu de tene wa gi main source indu kangchu ge de shur ji pusong na tene wa gel chu me ga tene chu me ne lo to ya bu yong ma lo to ya bu mo ju na ya penjor ge kangin na yong ma de i win nyen bolu tene uji piti ri na ha che che sem jing ge wa mina ma de dang bo yo ga se mi gi lo to ge gu mo se che o te wa mina ma de dang bo yo ga se tene i man da la tene wa gi piti mina ma de sa cha tha ring bo so la tene wa gi wi shan ma ra o de ge tene sabji ma de ja ga tui ta ta la le yon le mi yon so ti kangin ji yo ga tene yang thekedar gi ne bo rin dik che rin zu tu ba te yon te me yon से ओती कांगिना यो वासिया तने इजम खाओ योगुन जिला तने पिटी मिगे तने उजी रिक्शुन किन्या बोला सिंगले वा मिना मते याकपो चे तने खेव न्यब फेकासिया दंग थिरिंग इन रंगजुंग सिंगले दे तने जमलिन खार इना मिना मते केटा छमो यो वासिया चिलेसना दंग थिरिंग मिगे तने ऑर्गेनिक चे मन मेकन साचे गि मिना सागसिया तने इबि फिले पिटी सिंगले फेकंगेला

ta ilunyam pui ke kabla ten tiring ke khas lon daringe nain tene pardesh winamshi minang mati tene thor pudi dusya tene namshi tonmo ki phila tene yogdu dekan migel minang mati khaw dusya मौसम विभाग से न कांगड़ा छे कुल्लू छे सोलन छे तेने किन्नौर की जगह मांग छे तेने येलो अलर्ट जारी छे पासिया यम्पोलो तेने विभाग से न तेने धीरिंग नेलो मई की तरी न्यूस सांगा रूप तेने जगह हलम जीतु तेने छारवा गेपची दूसिया विभाग से न मई की तरी न्यूस साची से सांगी नेला तेने चंबा छे कांगड़ा छे कुल्लू छे मंडी छे तेने शिमला भी जगह हलम जीतु तेने छारवा छे सेरा छे तेने लुया योंग जी दूसिया म्यांपोलो तेने दांग थिरिंग प्रदेश की नमशी मीनांग मती डेमो योकन सोला तेने खोर्त योंग का मीनांग दूसिया पेट्रोल छे डीजल की रिन थिरिंग लगभग 90 पैसा पर लीटर था दे दूसिया तेने हफ्त चिचिक से न्यूआ से ना दोबारा रिन था दे दूसिया दिल्ली रू पेट्रोल की रिन गुपचु गोपके छे तेने डीजल की रिन गुपचुक खोचिक छा दे दूसिया तेने यहाँ मुंबई रू ने पेट्रोल की रिन गैर आँ दुन छे डीजल गुपचुक खोपशी छा दूसिया कोलकाता रू तेने पेट्रोल की रिन गैर आँ गुछ है डीजल गुपचुक खोटू छा दे दूसिया तेने चेन्नई रू तेने पेट्रोल की रिन गैर आँ जी छे तेने डीजल गुपचुक खोटू छा दे दूसिया मार की रिन तर लो जी भी ना दो तेने ताकसान रू इजम थालो मैकासिया तेने ई विनियम बोलो सोलन की किसान हलम से न तेने सोलन की पेट्रोल पम्प गिर तेने खोब गल पेट्रोल छे डीजल के थोमी दूसिया ई भी फिर तेने खोब के शिंगी फिलो ग्वारा सिया सन तेने शिंगी लेवा पेचे रंग दे गया खाओ ठासिया तेने प्रदेश की तेने पंचायत की चुनाव की फिला तेने मी गया प्रचार लगातार जोरू सिया तेने उम्मीदवार के तेने रंग रासी फिला मी गे लंगवा गे ई फेकिन हो तो से तेने रोड रंग दे गिरे रुडो रू सिया पंचायत की चुनाव तेने मई की तरी न्यूस साटू छे न्यूस सब गे छे तेने तरी सुमचू लेने तीन चरण लतंगा सिया यम पोलो पंचायत की राज्य चुनाव की फिल थारगेल चुनाव की फिल तेने चुनाव ल लेवा फेकेंगे लेने ट्रेनिंग वाती आसिया तेने ई भी नांग दू तेने मी गेल वोट चुक चुक चुक चुक पास होते लमना छे तेने पोलिंग स्टेशन की यहाँ रूल रंग होते गे होते गया लाभ कासिया तो ई के गबल थे अने दिकी डोमा की लुनिया बोझेंगे ना

अभी आप आनंद ले रहे थे लोकगीतों का, ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें। मीडिया वेव पर हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर व धर्मशाला केंद्रों के साथ ही FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप और रेडियो की DTH सेवा पर भी सुना जा सकता है।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप वरुणा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि पंचायती राज और स्थानीय शहरी निकायों के चुनाव परिणामों की वास्तविक स्थिति जिला परिषदों और पंचायतों के निर्वाचन के साथ ही स्पष्ट होगी। जगत सिंह नेगी ने आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा शहरी निकाय चुनाव नतीजों को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है, जो सही नहीं है, क्योंकि अभी इन संस्थाओं के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों का चयन होना बाकी है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा नेताओं का बयानबाजी में कोई मुकाबला नहीं है और वे हमेशा बढ़ा चढ़ाकर दावे करते हैं, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और होती है।
1: नगर निगम के जो हमारे नगर निकाय के चुनाव हुए, इसमें कांग्रेस समर्थित लोगों की तादाद बढ़ी है। अभी समय है, गठन होने दो, नगर परिषदों को गठन होने दो, स्पष्ट हो जाएगा कहां कहां के अध्यक्ष कौन बनाता है, क्योंकि अभी पंचायतों और जिला परिषदों के चुनाव होने हैं, उसको प्रभावित करने के लिए ये लोगों को गुमराह कर रही है, जब हकीकत और है। इसमें जो चुनाव हुए अभी, जिनके रिजल्ट निकले हैं, चाहे परिषद के है चाहे हमारे नगर पंचायतों की है, उसमें कांग्रेस के भारी तादाद में लोग जीते हैं।
0: जगत सिंह नेगी ने यह भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों और युद्ध का हवाला देकर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से महंगाई और बढ़ जाएगी। नेता प्रतिपक्ष जयराम

0: ठाकुर ने कहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू नगर निकाय चुनावों में जीत के झूठे आंकड़े पेश कर पंचायत चुनावों को प्रभावित करना चाहते हैं। जयराम ठाकुर ने मंडी जिला के सराज विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान शंकर देहरा में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि नगर निकाय चुनावों में भाजपा की प्रचंड जीत ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ विदाई की शहनाई बजा दी है। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों के बाद अब प्रदेश की ग्रामीण जनता भी कांग्रेस की चुनावी गारंटियों के पूरा ना होने के कारण खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है और पंचायत चुनावों में सरकार को कड़ा सबक सिखाने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसा कि जब उसने नगर निकाय चुनावों में आधिकारिक प्रत्याशी ही घोषित नहीं किए तो अब वे किस आधार पर जीत के दावे कर रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने दावा किया है कि प्रदेश में नगर निकाय चुनावों में कांग्रेस की भारी जीत हुई है। उन्होंने आज शिमला में कहा कि भाजपा नेता चुनाव नतीजों को लेकर झूठे दावे कर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जीत ने साबित कर दिया है कि प्रदेश के लोग पार्टी के साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि उनकी पार्टी ने 47 नगर निकायों में से 32 में पूर्ण बहुमत हासिल किया है। उन्होंने ये भी दावा किया कि कांग्रेस इससे भी अधिक निकायों में अपने अध्यक्ष बनाएगी। राज्यसभा सांसद प्रोफेसर सिकंदर कुमार ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च राजकीय सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किए जाने से भारत की विश्व में साख व कूटनीति और मजबूत हुई है। प्रोफेसर सिकंदर कुमार ने कहा कि ये केवल एक पुरस्कार नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के बढ़ते वैश्विक गौरव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले एशियाई नेता बन गए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति रक्षात्मक से आक्रामक और आत्मनिर्भर मोड में बदल गई है। प्रोफेसर सिकंदर ने कहा कि विश्व शांति स्थिरता और विकास के लिए आज दुनिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्व मित्र दृष्टिकोण पर पूरा भरोसा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर से भाजपा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि केंद्रीय बजट 2026-27 में राज्य की गोविंद सागर और महाराणा प्रताप सागर झीलों को राष्ट्रीय जलाशय विकास कार्यक्रम में शामिल किया जाना प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि उन्होंने बीते दिनों लोकसभा में नियम 377 के तहत ये मामला उठाया था। इस पर केंद्रीय पंचायतीराज व मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह ने एक पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि इन दो जलाशयों देशभर में चिन्हित 400 जलाशयों की सूची में शामिल किया गया है जिनका एकीकृत विकास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकीकृत जलाशय विकास कार्यक्रम में शामिल होने से इन क्षेत्रों में आधुनिक अवसंरचना का विकास, सुविधाओं का विस्तार और स्थानीय लोगों के लिए नए आर्थिक अवसर सृजित होंगे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर व धर्मशाला केंद्रों के साथ ही FM बैंड 103.7 MHz मोबाइल ऐप और रेडियो की DTH सेवा पर भी सुना गया। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें। मीडियम वेव और FM बैंड पर हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। हिमाचली बोलियों के कार्यक्रमों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए सुने कांगड़ी कार्यक्रम।

बड़ा जरूरी है। कन्ने साफ पानी इस मौसम च पीना चाहिदा। कन्ने दिक्खा पानी उबाली के थोड़ा ठंडा करके पीना भी सेहत वास्ते ठीक रहिंदा, कन्ने गले वास्ते भी ठीक रहिंदा है। तेज़ धुप्पा ते बचने वास्ते छतरी ताणी लिया। कन्ने साफ सफाई का खास ध्यान दिया। कियां साफ सफाई रखने ते ही अधियां बीमारियां तो इन्हें ही दूर हो जांदियां। कन्ने पूरी बीमारी तो दिखा अपना खान पान ठीक रखगे, कन्ने इसका खांगे पथे का खांगे ता सेहत ठीक रहेगी। अस कांगड़ी कार्यक्रम च असां तुसां कन्ने गल करनी है अनुशासन दा महत्व कन्ने अपने सूबे दियां खास खास खबरां कन्ने लोकगीतां कन्ने तुसां दा मनोरंजन ता असां करदे हन लिया शुरुआत करदे हन एक सहगान कन्ने मिलियां जुलियां आवाज़ां बिच सुनदे ए लोकगीत।

अपनी संस्कृति दा ये सुंदर रंग सुंदर लोक गीत असां सुनिया मिलियां जुलियां आवाजां बीच श्रोतियो कुदरत दा हर रूप कायदे च रहिंदा सूरज चंद तारे पंछी सारे कायदियां च रहिंदे अपनी जिंदड़ी जो असां अगर कायदियां च रही के जींगे तां हर पल खुश रहेंगे। कायदा मतलब अनुशासन जिंदड़ी जो सही दिशा देने वाली एक खास शक्ति है। ये माणुओं जो कायदे का पालन करना टैमे का सही इस्तेमाल करना कने अपने फर्जा जो ईमानदारी कने निभाना सिखाता है। अनुशासन के बगैर माणुओं की जिंदड़ी अस्त व्यस्त हो जाती है। विद्यार्थी जीवन च अनुशासन का खास महत्व सिखाया जाता कने हुंदा है। अनुशासित विद्यार्थी टैमे पर पढ़ाई करते अपने गुरुजनों का आदर करते कने जिंदड़ी च कामयाबी हासिल करते हैं। इन्हें ही परिवार स्कूल कॉलेज समाज कने देश प्रदेश उन्नति तरक्की अनुशासन पर ही दिखा टिकी होती है। अनुशासन असन जो आत्मसंयम जिम्मेवारी कने मेहनत की भावना सिखाते सेना खेल दफ्तर कने हर क्षेत्र च सफलता वास्ते अनुशासन जरूरी है। जेड़ा मानू अनुशासन बीच रहिंदा है अपना काम सही टैमे पर करता है से मुश्किल ते मुश्किल हालात बीच भी धीरज कने समझदारी कने काम लेंदा है। इस वास्ते बोले भी जांदा है अनुशासन सफलता दी कुंजी है। असन जो अपने जीवन च अनुशासन च रही के ही कायदे च रही के ही आदर्श नागरिक बनने का प्रयास करना चाहिंदा है। इत्थों असां महान माणुओं के विचार भी पेश कराते हैं। गौतम बुद्ध जी के विचार हैं कि मन कने इंद्रियां पर काबू पाना ही सबसे बड़ा अनुशासन है। रविंद्रनाथ टैगोर जी के विचार थे स्वतंत्रता ताई सार्थक है जालू असां अनुशासन बीच रहते हों। अरस्तु दे विचारां च अनुशासन खरियां आदतां ते महान चरित्र दा निर्माण करता है। चाणक्य दे विचारां च अनुशासन हीन माणू दी जिंदड़ी बिना दिशा दी कश्ती दे बराबर हुंदी है। इस वास्ते असां सारें जो अनुशासन दा पालन करना चाहिंदा कने अपनी जिंदड़ी जो कामयाबी दे रस्ते च लेई जाना चाहिंदा है असां जो कुदरत पासे भी दिखना चाहिंदा कि कुदरत कितनी अनुशासन च रहिंदी है कायदे च रहिंदी है। सूर्य देवता रोज़ अपने टैमे पर उठते निकलते कने घरोंदे हैं। अगर एक दिन भी सूरज देवता आलस करके कने अनुशासन जो छड़ी देंगे तो दिखा जो ही पासे नेरा हो जाना माणू सोई रहना कने कभी उसकी भ्याग नहीं होनी। बोलने का मतलब यही है कि माणू जो भी कुदरत साई अपने कायदे बीच अनुशासन बीच रहना चाहता है ताई उसकी जिंदड़ी च उजाले औंगे कने फुलां साई माणू खिड़गा बगदे पानिया साई जिंद साफ सुथरी होंगी कने चालू माणू अनुशासन च रहिंदा अपना कम कार ठीक टैमे पर करता है मुकांदा है। जाहिर दी गल है कि उसका कम चौखा हुंदा है बिना कुसा देरा ते हो जाता है कोई परेशानी भी उस जो घेरती नहीं है। जालू असा अनुशासन ते बाहर चली जाते हैं तो कोई कम टैमे पर नहीं मुकदा। असा यही बोलते कि अगर असा टैमे पर उठे होंदे या सोने का एक कायदा बनाया होंदा तो अज मेरे सारे काम हो जाते कने जिंदड़ी भी सौखी हो जाती है। असां महान लोकां जो दिखते या अपने इतिहास दे परकियां खोली के पढ़ते तां असां जानदे कि पहले टैमे च

अंकुर संडल दी आवाज़ सुनांदे थे असां ए लोक गीत अपने सूबे दियां खास खास खबरां लगांदे हन। प्रदेश च तापमान च बढ़ोतरी लगातार जारी है। तापमान बढ़ने ते राज्य दे मैदानी जिलें च लोकां जो जोरदार गर्मी दा सामना करना पौंदा है। मौसम महकमे ने अज कांगड़ा कुल्लू सोलन कने किन्नौर जिले च अलग अलग जगह पर लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच महकमे ने गलाया कि हिमालय क्षेत्र च ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होया कने इसे प्रभाव से अज से 25 मई तक राज्य के बिचले कने ऊंचाई आए अलग अलग जगह पर बरखा की संभावना है, जिससे लोगों जो चिलचिलाती गर्मी ते राहत दी उम्मीद है। महकमे ने 21 कने 22 मई जो चंबा कांगड़ा कुल्लू मंडी कने शिमला जिले च अलग अलग जगह पर बरखा होने नेरी कने 40 ते 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार ते नेरी तूफान चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया है। इस बीच प्रदेश के ज़्यादातर पर्यटक जगह पर इन्हों दिना मौसम सुहाना बनया है कने भारी संख्या च सैलानी इतों घूमने वास्ते पूजा दे हन। पंचायती राज संस्थाना वास्ते मतदान 26, 28 कने 30 मई जो 3 चरणा च होगा। इस बीच पंचायती राज चुनावों के सफल कने निष्पक्ष संचालन वास्ते चुनाव अधिकारियों कने कर्मचारियों जो प्रशिक्षण दित्या।

ज़्यादा है। इस दौरान मतदान प्रक्रिया, मतदान समग्री प्रबंधन कने मतदान केंद्रां पर पालन किते जाने आले नियमां दी जानकारी दिती जाती है। इसदे कन्ने ही चुनाव कर्मियां जो मतपेटी दे इस्तेमाल कने चुनाव प्रक्रिया दा अभ्यास भी करवाया जाता है। पेट्रोल कने डीजल दी कीमतां च अज तकरीबन 90 पैसे प्रति लीटर दी बढ़ोतरी कीती गई, जिहड़ा एक हफ्ते ते भी घट टैमे च दूजी बढ़ोतरी है। दिल्ली च पेट्रोल दी कीमत हुण 98.64 रुपए प्रति लीटर है, जां जी डीजल दी कीमत 91.58 रुपए है। मुंबई च पेट्रोल 107.09 रुपए कने डीजल 94.08 रुपए प्रति लीटर बिका दा है। कोलकाता च पेट्रोल की कीमत 109.70 रुपए कने डीजल की 96.07 रुपए दर्ज की गई है, जां जी चेन्नई च पेट्रोल की कीमत 104.49 रुपए कने डीजल की 96.11 रुपए प्रति लीटर है। ये बढ़ोतरी 15 मई जो हुई 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी ते कुछ दिनों बाद हुई। 4 सालां ते ज़्यादा टैमे च ईंधन की कीमतों च ए पहला बदलाव था। ए बढ़ोतरी ईरान संघर्ष कने हॉर्मुज जल डमरू च रुकावटां दे बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों च आई भारी तेजी ते बाद हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक जगह ते पकड़े गए लावारस कुत्तें जो टीके या नसबंदी ते बाद वापस ना छड़ने दी अपने पूर्व निर्देशां जो वापस लेने ते इनकार करीत्या है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ होरां दी अध्यक्षता आली पीठ ने नवंबर 2025 दे आदेश च संशोधन दी मंग आली याचिका जो अज खारिज करीत्या है, कने अधिकारियां जो दे कुत्तें जो आश्रम आली जगह च रखने का निर्देश दिता है। अदालत ने न्याणियां बुजुर्गां कने यात्रियां पर कुत्तियां दे हमले दी बड़ी चिंताजनक घटना का हवाला दिंदियां गलाया कि इस समस्या हवाई अड्डियां कने आवासीय कलोनियां समेत संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रां तक पुजी गई है। पीठ ने चेतावनी दी कि निर्देशों का पालन ना करने आए अधिकारियों जो अवमानना कने अनुशासनाली कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। अदालत ने राज्यों कने केंद्र शासित प्रदेशों जो पशु जन्म नियंत्रण केंद्र स्थापित करने रैबीज रोधी टीके की उपलब्धता पक्की करने कने रैबीज के संक्रमित या खतरनाक कुत्तें ते इच्छा मृत्यु समेत कानूनी तौर ते अनुमत उपाय करने का भी निर्देश दिता है। उच्च न्यायालय जो स्वतः संज्ञान मामलों के जरिए ते अनुपालन की निगरानी करने वास्ते भी गलाया है। हिमाचल प्रदेश मिड डे मील वर्कर यूनियन कने आंगनवाड़ी वर्कर यूनियन ने राज्य निर्वाचन आयोग पासे ते आंगनवाड़ी कने दोपहर दा भोजन बनाने आले कार्यकर्ता की ड्यूटी पंचायत चुनाव च पोलिंग पार्टियां वास्ते खाना बनाने वास्ते लगाने का विरोध किया है। मिड डे मील वर्कर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष संदीप कुमार कने सचिव शांति होरा ने गलाया कि मिड डे मील च ज़्यादातर जनानियां खाना बनांदियां हन। देश उन्हां जो राती 10 बजे तक पोलिंग पार्टियां वास्ते खाना बनाना मुनासिब नहीं है। उन्हां निर्वाचन आयोग ते मंग कीती है कि पंचायत चुनावों च दोपहर दा भोजन बनाने आली कार्यकर्ता कने आंगनवाड़ी वालियां दी ड्यूटी ना लगाई जाए। एथियां खास खास खबरां अपने सूबे दियां। हुण चलते लोक गीत पासे। हेत राम कैंथा की आवाज सुनते कार्यक्रम का यह आखिरी लोकगीत।

कांगड़ी कार्यक्रम अभी आपने सुना। ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। हिमाचली बोलियों के कार्यक्रमों के अंत में आइए सुने लाहौली कार्यक्रम।

जुले नमस्ते गीस तंजन आंगमो इनी हिंची पर छाए दो आकाशवाणी शिमला ची थे गर्जे पर प्रोग्राम दो स्वागत लिखत थन की हिर ती फेस कुर्ची इनी जी बला कुंग रजिनिया थन हिंग जी हिर ऐसे विषय यार तो फेके जो मी छाएगी सफलता ते व्यक्तित्व तो नंग ते मीचे यंपो जुड़ाई के ईश थन की फेस महत्व आत्मविश्वास का हिश थजु खा हिज लो नंग राएगी यार तो विश्वास लिखचा इची ग्यूनशी एश थजु बंठे फेके एरी मीचे रो एपो क्यारे बोंठे सफलता की बोंठे शिंडा दर जिलेन लिखचा ज्ञान थिंचा लोकचा नंग नुई नुई अवसर की ग्यूनशी रमिश पर थे छाई रोकची छाई बसल ग्यूनशी खा हिज लो नंग आत्मविश्वास हिंग छाई की कचांग राई यार तो भरोसा ली नंग खर लेन ती के नंग ख लेन ती क्या नंग कई बसल कई लेन या कई ती हालात क्या नंग थजुई सामना लिखचा ठुपचीश आत्मविश्वास मता नंग लोई चु लेन रे कई रमेश क्युक चो हिंसाई अमचा छटी मेंचो हिंग जो अमचा एरी अमा आवाजी ला दया जी ले चिंचो घुमाकता ब्रंचुश हेर शेंचुश हेर ब्रंचुश हेर शेंचुश कोशिश लिख का जोमिश थजु बक्ता हिंसाई छची गैर जी अमचा बुद्ध थिजनंग थन हिंग जी छाई अमचा ठुप चुमेश थेहर तब शी बार बार कोशिश लिखचा रोत रेता आत्मविश्वास लोचुश थन सुंगशे सु क्या नंग खती बार दो या दबाव तेज लोकची पबेते जोरो लोकचुम नंग भविष्य

ye nang career gi chher te ish na chung ma sharba joro len gi chher nang temi joro tabar nang zimmewari gi chher te ish te bakta atma vishwas ta nang khar chher ti kya nang thazu ro samna lik cha bon the takat da chi ish khachi bar hing chai sochai lik chin chu ki atma vishwas tezi tezi mi ji nang safal ke chu mi ji ka chang ke jite ramesh पर असल रो थे हिंग छाई की कचंग आत्मविश्वास तेज फर्क थे ले लेती हेश कि सूजी थे आत्मविश्वास की पहचान यू न लिख चीज नंग सूजी छठी मिंचो इतिहास गवाह हेश कि सूज और राय बुंठे विश्वास तेज ताल जी खा असंभव लेन ती क्या नंग लिख च यक्षीश कल्पना चावला की मिनता इन छाई जी हिंच जुकिन ताल ती की क्युक्ची तिलेक्स चीज ताल कचंग नोई साधन रे मनीष थे छाई बार दो थांग जी रे ताल अंतरिक्ष एलमेन की अफसर खुशीश थजु खो ची ताल दो मी जी नोईश से शीन छो थे चौक से नीरज चोपड़ा जी रे कई हालात रो मेहनत ली जी राय यार तो मेहनत नंग आत्मविश्वास यो जी ओलंपिक रो एरी भारत योल गी बोंठे स्वर्ण पदक ऋषिश एरी भारत योल गी मीन तेजी लिखशीश अगर ताल शुरुआत दो रे हार मनाए ली लिखती नंग थे सफलता ताल दो खुक्षु मई नीश आत्मविश्वास ता नंग लो नंग थे नामेश की मी नाना गियर मई की गियर त छाई दो खति को रेईश पर आत्मविश्वास हिंग जो थजु गियर दो खना सामना लिखचुश दूरे बड़ाई क्यारे रो लोचुम खची बार बेते जी इम्तियान रा रा नोई लोकचुम नंग रिजल्ट की टेंशन लिख चिन छो सूजी तेजी तेजी जुमरंग रो मी जी अम्पो फेरे रो रे ग्यर मेश सूजी नुई लेन गी शुरुआत लिखचर रो रे ग्यर तेज मगर हिंग जी राई रो समझाई ली नंग की खल लेन तिक्या नंग गी लिखचर ठुकत राई दो लो नंग थजु लेन एपो नंग यम्पो सफल क्या मेश हिती जो इनी जो यार तो भरोसा ता नंग मता नंग हिंग जो राय की यार तो भरोसा लिखचा होशित में गुनशीश दथे आत्मविश्वास बढ़ाई खाना लिख चुमलो नंग साई बसल दूरे एपो मिजा अगर हिंग जी हर पक्ता मारे मिज नंग ठुपचुम मदे क्यमिन मदे थे ना मिजा नंग ले लेन रे उल्टा क्यमेश एरी आत्मविश्वास रे खोम जी इल्थी चुन व थजु बोंठे हिंग जो एपो मिजा नंग लिखचा होशित मई गुनशीश राय बोंठे राय यंपो एपो प्रेरित लिखचुम गि फ्यस फ्यमेंचो दरुंग एपो तैयारी नंग मेहनत लिखचा खती लेन क्या नंग शिंडा दजी पूरा तैयारी यंपो ली नंग थजु रे एरी आत्मविश्वास रो बढ़ाई लिखचीश जैसे बेते जी इम्तिहान दचा पूरा तैयारी यंपो एल नंग नोई गियर रे मैश दरुंग इम्तिहान रो रे एपो लिखचुश दरुंग राय गलती रोकची सीख थिंचा पता मई दो गलती लिखचा गलत मेश मगर थजु गलती रो हर हिर बार बार लिखचा रो गलत लोचुश हिंग जो एरी नोरचिचु एलीचु लेन रोकची सीख थिंचा थिंचा होशित में गुनशीश हेर ती बार लिखचुमगी गलती लिखचुमेश खल लेन ती के नंग खलेन मडी नंग थजु लेन हिंग जो नुई नुई लब्जा दचीश हिती यंपो तुलना लिखचुमेश हिंग मी छाई बनती बनती इंछो छाई की क्षमता नंग हालात सस सस हेश थे रोकंजी हिंग जो हिती क्षी यंपो तुलना लिखचुमेश छाई छाई इंजी ना यंपो दे लेन लिखचुम की क्षमता सस सस तेयेश व राई दो हिती रोकची छुई ते चुमेश आत्मविश्वास हिंग जो सफलता के दी दचिमेश बल्कि एरांग जो नंग चीशित दचिश मजबूती दचिश आत्मविश्वास ते चुमी बारदो बक्तंग थिब न जो चीज सही फैसला थिंचुश दरुंग हिति जो रे प्रेरणा दचिश तनसुंग शे मोबाइल जो रो थे सोशल मीडिया जो रो कंजी दे नंग सफल के चुमी रो कंजी इंजी रो हिती रोकची छुई ते चुम थे सोशल मीडिया की दुनिया एकदम पूरा एपो मईश सही मेश मी जी केसका फोटो नंग केसका फेस जी दचीश थे छाई रोकन जी हिंग जो राय की बोंठे निराश के चुमेंश
हिंगजो थे हित बुचा गुनशीश की मी की पहचान एरी फिरे की मौत नंग जुक्स चुकन जिमेश बल्कि एरी नंग ची सेम रुक ची लिखचूश एरी मीचे रो उतार चढ़ाव तर राज जोमेश खची बार सफलता खुकशुश खची बार होश में बार दो थंग शदचुश मगर हिंगजो राय ना आत्मविश्वास योगचा गुनशीश थे फस खोम गया थे लोकत राय यार तो विश्वास लेनी थे दुनिया रोचाई बसल तेजी ताकत एरी आत्मविश्वास हैश थे लवजना यंपो ललती हिन कते ललमिन केशी मोलदंग दर्चा महिला मंडल थिरची ललती।

हेल्पलाइन नंबर, फास्ट ट्रैक कोर्ट, नांगलेन लिच्ची जगारो, सुरक्षा की कानून थे छाई सरकार जिली शीश। लेकिन कानून लीजी, लागू लीजी, के जिखर बदलाव रमेमेश, जरूरी हिंग छाई दो, समाज की मी छाई दो, जागरूक क्या रहेश, गलत की खिलाफ लोचुम की ताकत रहेगी ऐश। इन्हीं जी आसपास सुहिती अंपु गलत क्या थांग नंग चुप थे जो नी थे चुप जो नंग मी मारी लिच्ची मी जो रोत नोई ताकत रेयेश। जिमे लसमी जो सुरक्षा के जिमे इज्जत सम्मान की हक देयेश। ताल जोरे बुत्सा जी डंडा लुकचुम लेन लिकचुम इंजी सफलता इंजी फैसला थिंचुम नंग राई सपना पूरा लिकचुम की अधिकार देयेश। सुई समाज जो लसमी चिमे जो एपो ली जी समान दचीश थजू युल असील तरक्की लिकचीश। थे लब्जा चा नहीं लिकचुश दथे नंग यंपो दौलत राम की थिरची मुँह मिठे तेरी यारी लला हिनकते।

दथन गी समाचार हिन गते प्रदेश रुचा न नुई बसिल नुई छत पर के येश नुई छत पर के जी राज्य गी गतोक चु सके जो नुई छत पर गी सामना लिख च परिक चीश। मौसम विभाग जी थन कांगड़ा कुल्लू सोलन न किन्नौर जिला रो लू लोशी चुल्लन कच्चुम गी येल्लो अलर्ट देता। थे बलाकुंग विभाग जी हिमालय कचांग सके जो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रजी नीलोत। थे रोकची थन ची 25 मई अस्तो राज्य की ऊंचाई की सके जो शिल्ती रमेश की संभावना नील होता। शिल्ती जी मी जुत्सु न छत पर ची राहत खुकशूज लोता। पेट्रोल नांग डीजल की लेस थन गुपचू डवा लीटर ती रो बोक्शियल्श। थे हफ्ता ती रो दूसरी बार बड़े चीहेश। थे बलाकुंग प्रदेश की सोलन जिला की रीदंग लेनी पर जो तालदो रीदंग लेंचा बुनठे पेट्रोल पंप रो डीजल नांग पेट्रोल म खुकशलोता। थे क्या जी ताल जो रिदंग लेंच रुकई नंग बार दो के ईश। सर्वोच्च न्यायालय जी जगह जगह रो खिम ख्यू तुम जी टीका नंग नस बंदी ली जी खोची ख्यू जो रो तब शी फिला वंचुम गी निर्देश जो तब शी थिंच रो मना लिखता। न्यायमूर्ति विक्रम थान नाथ जी अध्यक्षता रो नवंबर 2025 की दशी चू आदेश रो इपोई बुंठे मांग रोथन खारिज लिखता। दथे नंग यंपो थन की समाचार खोम्स दथे प्रोग्राम की आखिर लला हिन कते माडोले माडोले नीरू चांदनी थिरची ललती।

0: लाहौली कार्यक्रम अभी आपने सुना, इसके साथ ही हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम अब संपन्न होते हैं। ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। 7:05 होने को हैं। अंग्रेजी समाचार अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi said India and Nordic countries have decided to give their relations the form of Green Technology and Innovation Strategic Partnership. Mr. Modi made the remarks while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the third India-Nordic summit in Norwegian capital Oslo today. Prime Ministers of Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark also took part in the media briefing. Prime Minister Modi said, with this green technology partnership, they will connect Iceland's expertise in geothermal and fisheries, Norway's expertise in blue economy and Arctic, and all Nordic countries' expertise in maritime and sustainability to India's skills to ensure a better future for the entire world.
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: Prime Minister Modi said to provide energy and speed to India's relations with Nordic countries, they formed this format 8 years ago.
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: From Oslo, Prime Minister Modi will travel to Italy today on the fifth and final leg of his five-nation

0: strengthen their economic engagement and exploring new areas of cooperation. Trade ties that are already on strong footing are expected to grow even further after the high-level talks during the visit. Suparna Bhatia for Akashvani from Rome.
1: Union Home and Cooperation Minister Amit Shah today said Bastar Division of Chhattisgarh will emerge as the country's most developed tribal region within the next 5 years. Addressing the media in Jagdalpur, Mr. Shah said that after making Bastar free from Naxalism, the centre and the Chhattisgarh government have jointly prepared a scientific roadmap for the region's development. In West Bengal, Trinamool Congress candidate Jahangir Khan today announced the withdrawal of his nomination for the by-election to the Falta Assembly constituency to be held on Thursday. Mr. Khan, in a statement, said his decision was aimed at ensuring peace and development in the region and welcomed the special package announced for Falta by the new BJP-led government. In a statement, the Trinamool Congress said Jahangir Khan's withdrawal was his personal decision and not that of the party. With Khan out of the fray, the contest will now be among BJP candidate Devangshu Panda, Congress nominee Abdul Razak Moella, and CPIM candidate Shambhunath Kurmi. In cricket, the Indian squads for the Test and ODI series against Afghanistan were announced today with several notable changes across both formats. Wicketkeeper batter Rishabh Pant has been removed as vice-captain of the Test side and also dropped from the ODI squad. Wicketkeeper batter KL Rahul has been named the new vice-captain of the Test team to be led by Shubman Gill. In IPL cricket, Rajasthan Royals won the toss and opted to bowl against Lucknow Super Giants in Jaipur. The match will begin at 7:30 p.m. The Kremlin today confirmed that Russian President Vladimir Putin will attend the BRICS summit, scheduled to be held in September this year in New Delhi under India's chairmanship. And that is the end of this news bulletin.
2: एक सौ तीन दशमलव सात मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला का प्रसारण। 7:10 हुए हैं। लीजिए पेश है कृषि जगत कार्यक्रम।
3: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान और बागवान भाई बहनों को हमारा
4: नमस्कार।
3: किसान भाइयों, आज के अंक में मैं हूँ हेमलता शर्मा
4: और किसान श्रोताओं मैं हूँ योगिता शर्मा।
3: योगिता जी, क्या हालचाल है आपके?
4: देखिए हेमलता जी, हालचाल बहुत ही बढ़िया है और उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान और बागवान भाई बहन भी स्वस्थ होंगे और जो उनके कृषि और बागवानी के दैनिक कार्य हैं उनमें भी वो व्यस्त जरूर होंगे, क्योंकि आजकल खेतों में कई तरह के काम बढ़ गए हैं। जैसे बात करें अगर अन्न की फसलों की, तो अन्न की फसलों में आजकल गेहूं और जौ की कटाई हो रही है और साथ ही गेहूं और जौ का भंडारण भी हो रहा है। और साथ में अगर बात करें सब्जियों की, तो सब्जियों में देखिए लहसुन पककर तैयार हो चुका है और लोग लहसुन की फसल खेतों से ले रहे हैं।
3: जी, और खास बात ध्यान रखें, गर्मी का मौसम बढ़ रहा है। गर्मी के मौसम में अपना पशुधन का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि सुबह 5 बजे रात खुल जाती है और आप पशुधन को बाहर बांधें और अपने आप खेतों में जाएं और साथ में पानी भी साथ ले जाएं, और जैसे ही आप आए 10-11 बजे पशुओं को पानी पिलाएं और अंदर बांधें और 4-1 बजे पशुओं को आप बाहर बांध सकते हैं, क्योंकि पशुधन ही हमारे किसान की रीढ़ की हड्डी होती है और आजकल काम बहुत है। जब भी आप गेहूं का भंडारण करें तो अपने पेड़ों को जिसमें आप भंडारण करते हैं या बोरियां हैं, तो आप उसे जो है अच्छे से साफ कर लें और उसे धूप लगाएं, और जहां भंडारण करते हैं वहां कई बार क्या होता है कि चूहों के बिल होते हैं, वहां उसे अच्छे से लिपाई कर लें या जो भी आपका फर्श है उसे अच्छे से देख लें कि कहीं यहाँ पे कोई कीटाणु तो नहीं आ सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और जहां भी भंडारण करें वहां हवादार जरूर होना चाहिए, और जब भंडारण करें तो गेहूं को आप जैसे मुंह में लेके कड़क की आवाज आए तो समझ लें कि आपकी गेहूं की जो फसल है वो भंडारण के लिए भी तैयार हो चुकी है। तो कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।
4: तो किसान भाइयों, बात करते हैं आज के मुख्य आकर्षणों के बारे में। आज काम की बातों के अंतर्गत आपको जानकारी दी जाएगी आम के बागीचों में रोग प्रबंधन, इस विषय पर। साथ ही पहाड़ी गीतों से आपका मनोरंजन भी करवाया जाएगा और जानकारीपूर्ण बातचीत का पुनः प्रसारण भी आपको सुनाया जाएगा, जिसका विषय है कीटनाशकों के प्रयोग व सावधानियां। इस विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर संजीव कुमार और उनसे बातचीत करेगी निशा शर्मा
3: जी। तो किसान भाइयों बात कर लेते हैं आम के बागीचों में रोग प्रबंधन, और ये पत्थर हमें

0: बसंतपुर पिरगली से निर्मला देवी शर्मा का भी आया है। उन्होंने आम का बगीचा लगा रखा है और उसमें कई तरह के रोग लग जाते हैं और कई पेड़ उनके ऐसे हैं कि उनमें फल ही नहीं लगता है, तो वो रोग प्रबंधन यदि कर लें तो उसमें फल लग सकता है। तो बात कर लेते हैं सफेद चूर्ण रोग की। इस रोग के लक्षण पुष्प क्रमों की डंडियों, पत्तियों और नए फूलों पर सफेद फफूंद या चूर्ण के रूप में देखे जा सकते हैं। नई पत्तियों की ऊपरी व निचली सतह पर छोटे सफेद या सलेटी रंग के धब्बे दिखाई देते हैं जो निचली सतह पर अधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं। धीरे धीरे इन धब्बों का आकार बढ़ने लगता है और रंग गहरा भूरा हो जाता है। ये बीजाणु बोरों पर सफेद चूर्ण की तरह दिखाई पड़ते हैं जो फूलों के झड़ने के कारण बनते हैं। फल मटर के दाने के बराबर होने के बाद पेड़ से झड़ भी जाते हैं।
1: किसान श्रोताओं, बात करते हैं सफेद चूर्णी रोग के नियंत्रण की। इस रोग की रोकथाम के लिए फफूंद नाशक जैसे घुलनशील सल्फर 1000 ग्राम या फिर डिनोकैप 100 मिलीलीटर, इनमें से कोई भी आप एक दवा लें, या ले सकते हो आप कैलिक्सिन 200 मिलीलीटर, कोई भी आप एक दवा लें और इसका छिड़काव आप अपने आम बागीचों में कर सकते हैं। और फफूंद नाशकों की अनुमोदित मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर पहला छिड़काव फूल खिलने से पहले और दूसरा फल स्थापित होने पर और तीसरा छिड़काव फल मटर के दाने के बराबर हो जाने पर आप जरूर करें।
0: किसान भाई, ये तो बात हुई नियंत्रण की। बात कर लेते हैं गुच्छा रोग या गुमा विकार। ये रोग साधारण रूप से दो तरह से होता है, वनस्पतिक एवं पुष्पीय गुच्छा। वनस्पतिक गुमा विकार में पौधों की छोटी छोटी पत्तियां एक स्थान से निकलकर एक गुच्छा सा बना देती है जिससे पौधों की वृद्धि रुक जाती है। वनस्पतिक गुमा विकार पौधों में नर्सरी में ही शुरू हो जाता है। पुष्पीय विकार ग्रसित फूलों या बोरों की मुख्य शाखाएं छोटी व मोटी हो जाती है और किसान भाइयों सामान्य बोरों की तुलना में बड़े फूलों से भर जाती है और ग्रसित और गुच्छे की तरह दिखाई देती है। उनमें फल नहीं लगते और इस रोग से प्रभावित फूल पेड़ों पर कई दिनों तक लटके रहते हैं। यदि बात करें इसके नियंत्रण की तो रोग से प्रभावित पुष्पीय और वनस्पतिक शाखाओं को काटकर नष्ट कर दें और पेड़ पर पोटाशियम 60 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी में हमें इसका छिड़काव या नेफ्थालीन एसिटिक अम्ल 20 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी का घोल बनाकर आप इसका छिड़काव कर सकते हैं।
1: जी किसान भाइयों, बात करें डाइवैक व गोंदित रोग के बारे में। इस रोग के लक्षण आप इस तरह से जान सकते हैं कि ये जो रोग है ये फफूंद के कारण होता है। रोग के शुरू में एक वर्ष से कम आयु वाली कोमल टहनियों पर गहरे पैच पड़ने से पत्तियां पीली होकर गिर जाती है और किसान श्रोताओं, ग्रसित टहनियां दूसरे वर्ष ऊपर से सूखने लगती है। बाद में बड़ी टहनियों की छाल पर कहीं कहीं सूखे धब्बे पड़ जाते हैं जिनसे गोंद निकलती रहती है। प्रभावित टहनियां ऊपर से नीचे की ओर सूख जाती है। तो इस तरह के लक्षण किसान श्रोताओं अगर आपको अपने फल बागीचों में दिखाई दें तो इसके नियंत्रण के लिए आप क्या करें कि टहनियों के रोगी भागों को सर्दियों में खुरच कर बोडो या चौबाटिया पेंट लगाएं। 20 से 25 दिन के अंतराल पर बोडो मिक्सचर 1 किलोग्राम नीला थोथा, इसके साथ 1 किलोग्राम अनबूझा चूना या कॉपर ऑक्सोक्लोराइड 300 ग्राम प्रति 100 लीटर में डालकर 2 से 3 बार फल बागीचों में छिड़काव करें। पौधों में आवश्यकता के अनुसार सिंचाई व संतुलित खादों का प्रयोग करें और तनों पर बोडो पेस्ट 800 ग्राम नीला थोथा 1 किलोग्राम चूना 10 लीटर पानी को मिलाकर आप बोडो पेस्ट का लेप भी अपने फल बागीचों में कर सकते हैं।
0: जी किसान भाइयों, बात कर लेते हैं श्याम वरण, जिसे कि एंथ्रेक्नोज भी कहा जाता है। इस रोग के लक्षण पौधों के सभी भागों में जैसे पत्तियों, टहनियों, फूलों और फलों पर गहरे भूरे रंग के काले रंग के अंदर की तरफ धसे हुए धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। नई टहनियां ऊपरी भाग मुरझाने लगती है, फूल बोर या कूर भी काले या पड़ जाते हैं या मुरझा जाते हैं। रोगी फल पेड़ से गिरने शुरू हो जाते हैं। भंडारण में रोगी फल तेजी से सड़ जाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए संक्रमित टहनियों को काट छांट करें, प्रभावित शाखाओं तथा पत्तियों व फूलों को इकट्ठा करके नष्ट कर दें। बेंडाजिम 100 ग्राम का घोल बनाकर प्रति 200 लीटर पानी में इसका छिड़काव आप कर सकते हैं। फलों को पैकिंग से पहले कार्बेंडाजिम 100 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी के घोल में 5 मिनट के लिए डबो कर अवश्य रखें।
1: जी
0: किसान भाइयों, ये तो थी जानकारी आम के बागीचों में रोग प्रबंधन के बारे में। तो अब कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में ये प्यारा सा लोकगीत।

0: किसान श्रोताओं, किशोर कुमार की आवाज में ये तो सुना आपने प्यारा सा पहाड़ी लोकगीत। और अब समय हो गया है जानकारी पूर्ण बातचीत के पुनः प्रसारण का, जिसका विषय है कीटनाशकों के प्रयोग व सावधानियां। इस विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर संजीव कुमार और उनसे बातचीत करेंगी निशा शर्मा। तो किसान भाइयों, आइए सुनते हैं ये जानकारी पूर्ण बातचीत।
1: जी किसान भाइयों नमस्कार, कार्यक्रम कृषि जगत में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, हमेशा की तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं जानकारी पूर्ण विषय, कीटनाशकों के प्रयोग में आवश्यक सावधानियां। और आज हमारे साथ इसी संदर्भ में अधिक जानकारी देने जा रहे हैं संजीव कुमार। संजीव कुमार जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: सबसे पहले आप हमारे किसान बागवान भाई बहनों को ये बताएं कि कीटनाशकों के प्रयोग के समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और ये क्यों जरूरी है।
2: जी, कीटनाशकों के प्रयोग में जो हमारी मुख्य बातें होती है उसमें सबसे पहले जो है 5-6 बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहले है कीटनाशकों के जो खरीद होती है, खरीदने के समय हमें किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए। दूसरा है खरीदने के बाद उनका भंडारण कैसे करना चाहिए। फिर उनका घोल जब बनाते हैं हम तो कुछ सावधानियां रखनी होती है, तो इसका भी ध्यान रखना होता है। फिर उसके बाद आता है उपकरणों का चयन, जो किस तरह के उपकरण हमें चुनाव करना चाहिए जो उपयुक्त होते हैं।
1: अच्छा।
2: फिर उसका जो घोल बनाने के बाद, उपकरणों के चयन के बाद, छिड़काव किस तरह से करना चाहिए, तो उस समय भी हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। और उसके बाद आता है छिड़काव करने के बाद कि जो हमें छिड़काव के बाद जो डिब्बे वगैरह बच जाते हैं तो कैसी सावधानियां हमें रखनी चाहिए।
1: हाँ जी, तो बात करें अगर हम कीटनाशकों को खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हमारे किसान भाइयों को, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं।
2: जी, सबसे पहले जो हम कीटनाशकों की खरीद के लिए जाते हैं तो हमें कुछ विशेष बातें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहले हमें जो कीटनाशक है उनकी जो हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए, तो उसके लिए हम विशेषज्ञ से हमें जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए कि किस तरह का कीटनाशक खेतों के लिए उपयुक्त है। कई बार फफूंद नाशक होता है, वो जो विक्रेता होते हैं वो कीटनाशक की जगह फफूंद नाशक दे देते हैं, तो ये कीटनाशकों के लिए जो उनके निजात दिलाने के लिए जो हमें उपयुक्त नहीं होता है, तो हमें इसका विशेषज्ञ से जानकारी लेनी चाहिए। इसके अलावा हमें किसी विश्वसनीय स्रोत से ही कीटनाशक खरीदना चाहिए। इसके अलावा जो कीटनाशक के डिब्बे होते हैं वो, या टीन के डिब्बे हैं, वो सील बंद होने चाहिए, उसकी सील ठीक तरह से लगी होनी चाहिए। और अगर वो टीन का डिब्बा है तो उसमें जंग नहीं होना चाहिए और रिसाव नहीं होना चाहिए उसमें। और आवश्यकता से अधिक हमें जो कीटनाशक है वो नहीं खरीदना चाहिए। इसके अलावा जो कीटनाशक दवा खरीदते समय उसके ऊपर एक पर्चा लगा होता है जिसमें पूरी जानकारी दी होती है, और उसे पढ़ लेना चाहिए कहीं एक्सपायरी तो नहीं है, उसका बैच नंबर क्या है और उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है।
1: जी।
2: इसके बाद जो कीटनाशक है हम जब घर ले जाते हैं तो उस समय भी हमें सावधानी रखनी चाहिए कि कीटनाशक जो है वो हम खाद्य पदार्थ और जो दूसरे चारा, पशुओं के लिए जो चारा होता है, उसके साथ ना रख कर ले जाएँ, तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए।
1: जी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है घर का सामान भी हम ले जाते हैं और साथ में कीटनाशक भी अगर हमने खरीदा है, तो उन दोनों वस्तुओं को आप अलग अलग रखें।
2: जी जी
1: जी। तो देखिए संजीव जी, इसके बाद बारी आती है भंडारण की, तो भंडारण के दौरान किस प्रकार से रखरखाव जरूरी होता है।
2: जी, अब खरीदने के बाद जो भंडारण करना होता है तो उस समय हमें जो कीटनाशक होते हैं वो वास्तविक जो डिब्बे होते हैं जिसमें हमें दुकानदार से लाया होता है, उसे बच्चों और पालतू पशुओं और चारे से हमें इस तरह से कक्ष में रखना चाहिए जो जहाँ पर चारा ना हो, ना बच्चे पहुँच सके, उनकी जो पहुँच है उससे हमें दूर रखना चाहिए। भंडारण जो गृह होता है, कमरा, वो सदा ठंडा होना चाहिए, हवादार होना चाहिए और वहाँ पर सूखा होना चाहिए, कहीं पानी वगैरह, बारिश वगैरह गिरने का खतरा ना हो, ताकि वो कुछ उससे गैस वगैरह ना पैदा हो। इसके अलावा जो भंडारण गृह का हमें लगातार निरीक्षण करते रहना चाहिए कि बीच में कहीं लीकेज तो नहीं हो रही, गैस तो नहीं पैदा हो रही है।
1: अच्छा।
2: और अगर हमें भंडारण गृह में जाना हो तो एकदम से हम उसके अंदर प्रवेश ना करें, उससे पहले हमें खिड़कियां और दरवाजे खोल देने चाहिए अच्छी तरह से।
1: जी जी। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे कहीं पालतू पशु भी होते हैं देखिए घर में,
2: जी जी,
1: तो वो भी वहां तक ना पहुंचे।
2: जी जी
1: जी। तो इसके बाद देखिए कीटनाशकों का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो घोल बनाया जाता है।
2: हाँ जी।
1: तो घोल बनाते समय क्या क्या सावधानियां रख सकते हैं।
2: जी, कीटनाशक के घोल बनाने से पहले डिब्बे पे जो दिशा निर्देश दिए होते हैं, जो पर्चा लगा होता है, उसे हमें अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए और शरीर को जो पूरी तरह से ढक लेना चाहिए, जैसे हाथों में रबड़ के दस्ताने पहन लेने चाहिए, आंखों के लिए ताकि आंखों से प्रवेश न करे कीटनाशक, चश्मा होता है चश्मा लगा लेना चाहिए।
1: हाँ जी।
2: और कीटनाशक जो घोल होता है वो वहीं पर बनाना चाहिए जहां पर हमें इस्तेमाल करना, यानी खेतों में ही कीटनाशक का घोल बनाना चाहिए।
1: अच्छा।

0: अलावा जो घोल बनाने के लिए जो पानी की मात्रा होती है उसका हमें बड़ा ही ध्यान रखना होता है कि अगर हमें एक एकड़ में 200 लीटर पानी इस्तेमाल करना होता है, अमूमन 200 लीटर पानी ही एक एकड़ में लगता है, अगर हम अच्छी ढंग से छिड़काव नहीं करेंगे तो वो पानी का कम होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए,
1: अच्छा
0: मतलब छिड़काव का ढंग बेहतर होना चाहिए।
1: जी, तो इसके बाद बात करते हैं हम उपकरणों की। तो छिड़काव करते समय किस तरह के उपकरण जो हैं, यंत्र जो हैं, उनका चयन करना चाहिए?
0: जी, छिड़काव के जो उपकरण होते हैं वो लीक नहीं कर रहे होने चाहिए, ख़राब नहीं होने चाहिए, इस तरह के उपकरण होने चाहिए। और जो नलिकाएं होती हैं उसमें वो जो बताई होती है उन्हीं का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर नलिकाएं जो बंद होती है तो उन्हें मुंह से साफ़ नहीं करना चाहिए,
1: हाँ जी,
0: उसे दांत साफ़ करने वाले ब्रश से साफ़ करना चाहिए। इसके अलावा जो ख़राब और जो सलाह में ना दी गई हो नोज़ल, जो नोज़ल लगती है उसमें कई फ्लैट फैन होती है या दूसरी नोज़ल होती है, तो उन्हीं का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर वो बंद हो जाती है तो मुंह से उन्हें फूंक मार के साफ़ नहीं करना चाहिए।
1: अच्छा जी,
0: हमारी जो बीडीसाइड जो हम खरपतवार नाशक होती है
1: हाँ
0: और
1: जी,
0: कीटनाशक, ये अलग अलग होती है दवाइयाँ,
1: हाँ जी,
0: तो हमें उस तरह के उपकरण चयन करने चाहिए कि दोनों के लिए अलग अलग होने चाहिए। अगर हमें हमारे पास एक ही उपकरण है जो छिड़काव यंत्र है
1: जी,
0: तो हमें अच्छी तरह से पहले छिड़काव यंत्र को साफ़ कर लेना चाहिए एक जो दवाई का इस्तेमाल के बाद,
1: जी
0: फिर
1: अगर
0: तभी।
1: उसमें
0: जी,
1: खरपतवार नाशक दवाइयों का छिड़काव पहले किया है, बाद में आपने कीटनाशकों का करना है, तो उसको अच्छी तरह से पहले साफ कर लेना है।
0: जी जी जी
1: अच्छा, तो देखिए संजीव जी, ये तो बात हुई उपकरणों की। अब हमारे किसानों को आप ये बताएं कि छिड़काव के समय उन्हें क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए?
0: जी छिड़काव के समय जो सावधानियाँ हमें रखनी होती है, सबसे पहले इसकी मात्रा का हमें ध्यान रखना होता है। तो मात्रा में मैंने अभी बताया, जैसे 200 लीटर एक एकड़ में लगता है तो 200 लीटर पानी ही का ही इस्तेमाल करें। और इसके बाद आता है समय, छिड़काव का जो समय जो होता है उसका भी हमें ध्यान रखना होता है। तो सुबह के समय या शाम के समय ही हमें छिड़काव करना चाहिए ज़्यादातर, क्योंकि उस समय हवा का जो वेग होता है वो स्थिर होता है। और अगर हमें दोपहर में कहीं छिड़काव करने पड़ जाए तो दोपहर में हमें देखना चाहिए कि हवा की दिशा किस तरफ है। अगर वो विपरीत दिशा में है तो हमें हवा की दिशा में ही छिड़काव करना चाहिए, और
1: अच्छा
0: छिड़काव इस तरह से करें कि वो हम पीछे की तरफ हटते हुए छिड़काव करना चाहिए, ताकि वो जो छिड़काव किया होता है, आज जैसे गंदम में हम प्री सोइंग जो छिड़काव करते हैं तो वो सोइंग से पहले करते हैं, तो और उसमें लेयर बननी चाहिए, पूरी पूरी
1: अच्छा
0: परत बनती है। अगर वो परत पैरों से ख़राब होती है तो वो उसका प्रभाव नहीं पड़ता है,
1: अच्छा
0: तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा जो मधुमक्खियाँ की संख्या अगर ज़्यादा हो खेतों में, तो फूल आने की अवस्था में जो होती है ज़्यादातर, तो उसमें भी हमें छिड़काव नहीं करना चाहिए।
1: अच्छा
0: अगर बारिश आ रही हो तो उसमें हमें छिड़काव का जो घोल बनाया होता है उसमें स्टिकर डालना चाहिए। स्टिकर के लिए किसान भाई डिटर्जेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, सोप का इस्तेमाल कर सकते हैं, कि
1: अच्छा
0: साबुन का,
1: कोई भी
0: उससे
1: साबुन?
0: जी, उससे क्या होता है कि पत्तों में छिड़काव करने के बाद, छिड़काव करने से वो चिपक जाता है पत्तों के साथ, और
1: अच्छा
0: उतना समय उन्हें मिल जाता है कि वो पौधों में प्रवेश कर जाए। बारिश हो भी जाए तो उसका असर नहीं पड़ता स्टिकर लगाने से। अगर फिर भी अगर स्टिकर नहीं लगाया और बारिश हो जाए 2 घंटे के अंदर, तो
1: जी,
0: हमें दोबारा छिड़काव करने की आवश्यकता पड़ती है। 2 घंटे से ऊपर समय हो जाए और छिड़काव हमें दोबारा नहीं करना होता, क्योंकि उस समय तक वो पत्तों में प्रवेश कर चुका होता है।
1: जी तो इसके बाद देखिए, छिड़काव करने के बाद भी किसी तरह की कोई सावधानियां जो हैं वो रखनी चाहिए?
0: जी, सबसे पहले तो जब हम छिड़काव कर देते हैं तो वहाँ पर एक सावधानी बोर्ड लगा देना चाहिए कि यहाँ पर छिड़काव किया हुआ है, दवाई का इस्तेमाल किया हुआ है।
1: हाँ जी,
0: इसके बाद जो घोल बचता है, अगर वो घोल बचे तो उसे दूर पानी के कोई, जैसे नदी नाले होते हैं या कोई स्रोत है पानी का, उससे दूर गड्ढे में डाल देना चाहिए।
1: अच्छा,
0: मैं पैकेट बचते हैं, कोई डिब्बा
1: हाँ
0: बचता है टीन का, तो
1: जी,
0: उसे पैरों से चपटा करके
1: हाँ
0: उसे
1: हाँ
0: गड्ढे में अच्छी तरह से दबा देना चाहिए, ताकि कोई पशु या किसी के मुंह ना लग सके वो।
1: जी,
0: तो इन बातों का हमें ध्यान रखना होता है। और कटाई जो होती, कई बार क्या होता है कि फसल पक रही होती है तो उस समय हम इस्तेमाल करते हैं कीटनाशकों का, तो
1: अच्छा
0: कम से कम 7 या 10 दिन का हमें उसमें इंतज़ार करना चाहिए तोड़ान के लिए।
1: जी, ताकि रसायनों का अवशेष उसमें ना रहे।
0: जी,
1: तो इसके अलावा देखिए, कीटनाशक अवशेषों को कम करने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
0: इसमें हमारा ऐसा होता है कि मैं एक बात बताऊंगा, रेजिड्यूल इफेक्ट जिसे बोलते हैं, अवशेष जो होता है कीटनाशकों का वो बच जाता है। जब हम किसी कीटनाशक को इस्तेमाल करते हैं तो वो कितने दिन तक पौधों में उपस्थित रहता है, तो वो हमारे लिए किस तरह से हानिकारक होता है, तो सभी रसायनों का अलग अलग इसमें अवधि होती है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादातर हमें एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन का करना चाहिए, जिसमें हमें दूसरी विधियाँ, जैसे जैविक रसायन है,
1: हाँ
0: जैविक
1: जी,
0: जो नीम है, बीटी है, एनपीवी वायरस है, इनका इस्तेमाल करना चाहिए, और रसायनों से हमें थोड़ा बचना चाहिए। जब ज़रूरत हो तो तभी हमें रसायनों का

0: करना चाहिए।
1: जी, तो संजीव जी आप ये बताएं कि दवाओं के संपर्क में आने की संभावना क्या रहती है और कैसे ये हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं?
0: जी निशा जी, ऐसे है कि 95 से 97% जो दवाई का जो प्रवेश है वो हमारी जो स्किन है, चमड़ी है, जो उसी के माध्यम से वो हमारे शरीर में प्रवेश करता है। परंतु तो
1: अच्छा।
0: इसके अलावा भी जो मुंह से है निगलने पर, या फिर सांस द्वारा या आंखों द्वारा भी ये हमारे शरीर में प्रवेश कर सकता है।
1: जी, तो अगर कीटनाशक के संपर्क में कोई आ गया है तो क्या करना चाहिए उस समय?
0: अगर किसी ने कीटनाशक निगल लिया है तो मुंह द्वारा, तो उसको सबसे पहले हमें किसी गुनगुने पानी, उसमें थोड़ा सा साबुन मिला के उसे पिला देना चाहिए ताकि वो उल्टी कर सके। उसे ज़बरदस्ती उल्टी करवानी चाहिए ताकि वो जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है हमारा, उसमें वो प्रवेश ना कर सके।
1: जी
0: इसके अलावा अगर सांस द्वारा वो अंदर प्रवेश कर चुका है तो उसे किसी खुले स्थान पर ले जाना चाहिए, जहाँ पर उसके कपड़े थोड़े से ढीले करके अगर फिर भी उसे सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है तो उसे उल्टा लिटा के, पेट के बल के बाहें आगे की तरफ फैला के धीरे धीरे पीठ को सहलाना चाहिए। अगर कृत्रिम सांस की उसे ज़रूरत पड़ती है तो वो भी देनी चाहिए। इसके अलावा हमें जो डॉक्टर के लिए जो पर्चा होता है दवाई के साथ जो मिलता है, उसको डॉक्टर को दिखा के हमें उसका तुरंत इलाज करवाना चाहिए।
1: जी, संजीव जी आप ये बताएं कि कैसे पता चलता है कि ये कीटनाशक कितना जहरीला है? क्या इसके लिए कोई पहचान होती है?
0: जी देखिए निशा जी, कीटनाशक के जहरीलापन जो होता है वो विषैला है, कितना विषैला है, इसका हर जो निर्माता कंपनी है उनको ये दिशा निर्देश दिए होते हैं कि वहाँ पर जो डिब्बे होते हैं या टीन जो पैकेट है उसमें हर तरह की जानकारी उन्हें देनी पड़ती है।
1: जी
0: उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, एक्सपायरी जो डेट होती है, उसके अलावा जो बैच नंबर है और उसमें एंटीडोट क्या है। अगर विषैला है, अगर किसी ने निगल लिया है या उसके शरीर में प्रवेश कर गया है तो उसकी पूरी जानकारी एंटीडोट दिया होता है कि किस तरह से उसका इलाज करना है। इसके अलावा जो है सबसे महत्वपूर्ण है, जो किसान भाई जो बड़ा साधारण तरीका है जिससे वो पता कर सकते हैं कि कितना विषैला है,
1: हाँ
0: तो
1: जी,
0: उसमें कलर कोड दिए होते हैं।
1: हाँ जी,
0: कलर कोड में जो हमारे 4 तरह के जो कलर रंग दिए होते हैं, सबसे पहला जो होता है वो है लाल रंग जो होता है, जो
1: अच्छा।
0: कि अत्यंत जहरीला होता है, उन्हीं जो दवाइयों में वो लाल रंग दिया होता है, वो त्रिभुज आकार में बना होता है। इसके बाद आता है पीला रंग,
1: जी
0: जो उससे कम जो जहरीले होते हैं दवाइयाँ उनमें वो पीला रंग कोड किया होता है।
1: जी
0: और उसके बाद आता है नीला रंग जो होता है, तो इसमें जो नीला रंग होता है वो थोड़ा मॉडरेटली टॉक्सिक होता है, तो
1: जी
0: ये भी कई दवाइयों में होता है जो बड़े ही कम जहरीले होते हैं।
1: जी
0: लास्ट में जो अंत में जो आता है वो है वो हरा रंग, जो
1: हरा,
0: हरा जो रंग होता है वो जो हमारे दूसरे जो घरों में हम हाउस होल्ड जो हम इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं, कीटनाशक जैसे मच्छरों के लिए हम यूज़ करते हैं मॉस्किटो मैट वगैरह, ये
1: जी
0: सारे उसी में आते हैं। तो
1: जी
0: ये कलर कोड जो दिए होते हैं इनसे हम किसान भाई बड़े साधारण ढंग से, मतलब साधारण तरीके से
1: पहचान
0: पहचान सकते
1: सकते
0: हैं कितना
1: हैं।
0: जहरीला है। उसी के अनुसार वो उनका जो भंडारण भी कर सकते हैं, बच्चों से दूर रख सकते हैं। तो जो मैं फिर बताना चाहूँगा, सबसे जहरीला है लाल रंग का, पीला उससे कम है, और फिर नीला, और फिर सबसे जो कम जहरीला होता है वो हरे रंग का होता है।
1: जी, इसके साथ ही कार्यक्रम के अंत में आप हमारे किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: जी मैं किसान भाई को यही कहना चाहूँगा कि अगर कीटनाशकों की ज़रूरत है तभी उनका हमें इस्तेमाल करना चाहिए,
1: जी
0: अगर ज़रूरत नहीं है तो हमें दूसरी विधियाँ जैसे एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन है या नीम है या दूसरे जो जैविक जो रसायन है उनका इस्तेमाल करना चाहिए, और कम से कम इस्तेमाल करें और वातावरण को भी शुद्ध रखें और सुरक्षित खेती करें।
1: जी बिल्कुल, और कीटनाशकों का प्रयोग अगर करना भी पड़ता है तो बहुत सी सावधानियां जो आपने बताई उनका ध्यान जो है वो हमारे किसान बागवान भाई बहन जरूर रखें।
0: जी,
1: तो संजीव कुमार जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और बहुत ही बढ़िया जानकारी दी आपने कीटनाशकों के प्रयोग में, सावधानियों के बारे में। इन सब जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: किसान भाई, ये तो सुनिए आपने जानकारीपूर्ण बातचीत का पुनः प्रसारण, जिसका विषय था कीटनाशकों के प्रयोग व सावधानियां। बातचीत में भाग ले रहे थे डॉक्टर संजीव कुमार और उनसे बातचीत कर रहे थे निशा शर्मा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस जानकारीपूर्ण बातचीत से अवश्य लाभ उठाएंगे, क्योंकि जानकारी का होना हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व रखता है। किसी भी कार्य को करने के लिए यदि जानकारी हो तो कार्य आसान हो जाता है और समय की बचत होती है। अब आपको इंतजार होगा प्यारे से लोकगीत का, आइए सुनते हैं समूह स्वरों में ये प्यारा सा लोकगीत।

0: सजावटी वस्तुएं बनाना, और इसके साथ ही जानकारीपूर्ण बातचीत का पुनः प्रसारण भी आपको सुनाया जाएगा, जिसका विषय है गाभिन गाय और बच्चों की देखभाल। इस विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर संदीप गुप्ता और उनसे बातचीत करेंगे अशोक
1: जी। किसान भाइयों, इसी के साथ हमारा आज का कृषि जगत कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी श्रोताओं से अनुमति चाहते हैं। नमस्कार।
0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता दीपक कुमार।
2: कृषि जगत कार्यक्रम अभी आपने सुना। आप सुन रहे हैं FM शिमला का प्रसारण। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

किसान श्रोताओं, समूह स्वरों में ये तो सुना आपने प्यारा सा पहाड़ी लोकगीत, और अब चलते चलते बात कर लेते हैं कल के मुख्य आकर्षणों के बारे में। किसान भाइयों, कल काम की बातों के अंतर्गत आपको जानकारी दी जाएगी फूलों एवं कृषि अवशेषों से मूल्य वर्धित

0: मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। 7:45 होने को हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर व धर्मशाला केंद्रों के साथ ही FM बैंड 103.7 MHz, मोबाइल ऐप और रेडियो की DTH सेवा पर भी सुना जा सकता है।
1: आपका गांव है आपका गर्व, इसको विकसित बनाने के लिए आइए मिलके मनाएं लोकतंत्र का पर्व।
2: हो चुकी है देवभूमि हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा। ये मतदान 3 चरणों में 26, 28 और 30 मई को होगा। ऐसे में आए एक सच्चा नागरिक बनकर मिलकर निभाएं जिम्मेदारी और भारी संख्या में मतदान देकर दिखाएं अपनी भागीदारी।
1: आपका हर एक कीमती वोट आपके गांव की दशा और दिशा तय करेगा, तो अपने मताधिकार का प्रयोग करना ना भूलें। राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए सरकार चला रही है अनेक योजनाएं। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए प्रचार लगातार जारी, 26, 28 और 30 मई को 3 चरणों में होगा मतदान। नगर निकाय चुनाव नतीजों पर राजनीति जारी, जगत सिंह नेगी ने भाजपा पर लगाया बढ़ा चढ़ाकर जीत के दावे पेश करने का आरोप। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, नगर निकाय चुनावों में जीत के झूठे आंकड़े पेश कर पंचायत चुनावों को प्रभावित करना चाहती है कांग्रेस। और सुप्रीम कोर्ट का लावारिस कुत्तों को नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व के निर्देशों को वापस लेने से इनकार। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और बदलती सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं व चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि महिलाएं सशक्त बनेंगी तो पूरा परिवार आर्थिक रूप से सशक्त बनेगा। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए प्रचार लगातार जारी है। सभी उम्मीदवार मतदाताओं को रिझाने के लिए अपनी प्राथमिकताएं उनके सामने रखकर वोट मांग रहे हैं। पंचायती राज संस्थाओं के लिए मतदान 26, 28 और 30 मई को 3 चरणों में होगा। इस बीच पंचायती राज चुनाव के सफल और निष्पक्ष संचालन के लिए चुनाव अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस दौरान मतदान प्रक्रिया, मतदान सामग्री प्रबंधन और मतदान केंद्रों पर पालन किए जाने वाले नियमों की जानकारी दी जा रही है। इसके साथ ही चुनाव कर्मियों को मतपेटी के उपयोग और चुनाव प्रक्रिया का अभ्यास भी करवाया जा रहा है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि पंचायती राज और स्थानीय शहरी निकायों के चुनाव परिणामों की वास्तविक स्थिति जिला परिषदों और पंचायतों के निर्वाचन के साथ ही स्पष्ट होगी। जगत सिंह नेगी ने आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा शहरी निकाय चुनाव नतीजों को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है, जो सही नहीं है, क्योंकि अभी इन संस्थाओं के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों का

0: चयन होना बाकी है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा नेताओं का बयानबाजी में कोई मुकाबला नहीं है और वे हमेशा बढ़ा चढ़ाकर दावे करते हैं, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और होती है।
1: नगर निगम के जो हमारे नगर निकाय के चुनाव हुए, इसमें कांग्रेस समर्थित लोगों की तादाद बढ़ी है। अभी समय है, गठन होने दो, नगर परिषदों को गठन होने दो, स्पष्ट हो जाएगा कहां कहां के अध्यक्ष कौन बनाता है, क्योंकि अभी पंचायतों और जिला परिषदों के चुनाव होने हैं, उसको प्रभावित करने के लिए ये लोगों को गुमराह कर रही है, जब हकीकत और है। इसमें जो चुनाव हुए अभी, जिनके रिजल्ट निकले हैं, चाहे परिषद के है चाहे हमारे नगर पंचायतों की है, उसमें कांग्रेस के भारी तादाद में लोग जीते हैं।
0: नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू नगर निकाय चुनावों में जीत के झूठे आंकड़े पेश कर पंचायत चुनावों को प्रभावित करना चाहते हैं। जयराम ठाकुर ने मंडी जिला के सराज विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान शंकर देहरा में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि नगर निकाय चुनावों में भाजपा की प्रचंड जीत ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ विदाई की शहनाई बजा दी है। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों के बाद अब प्रदेश की ग्रामीण जनता भी कांग्रेस की चुनावी गारंटियों के पूरा न होने के कारण खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है और पंचायत चुनावों में सरकार को कड़ा सबक सिखाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने दावा किया है कि प्रदेश में नगर निकाय चुनावों में कांग्रेस की भारी जीत हुई है। उन्होंने आज शिमला में कहा कि भाजपा नेता चुनाव नतीजों को लेकर झूठे दावे पेश कर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जीत ने साबित कर दिया कि प्रदेश के लोग पार्टी के साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि उनकी पार्टी ने 47 नगर निकायों में से 32 में पूर्ण बहुमत हासिल किया है। उन्होंने ये भी दावा किया कि कांग्रेस इससे भी अधिक निकायों में अपने अध्यक्ष बनाएगी। राज्यसभा सांसद प्रोफेसर सिकंदर कुमार ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च राजकीय सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किए जाने से भारत की विश्व में साख व कूटनीति और मजबूत हुई है। प्रोफेसर सुकेंद्र कुमार ने कहा कि ये केवल एक पुरस्कार नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के बढ़ते वैश्विक गौरव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले एशियाई नेता बन गए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति रक्षात्मक से आक्रामक और आत्मनिर्भर मोड में बदल गई है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। अदालत ने बच्चों, बुजुर्गों और यात्रियों पर कुत्तों के हमलों की बेहद चिंताजनक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा है कि ये समस्या हवाई अड्डों और आवासीय कॉलोनियों सहित संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। पीठ ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की महत्वाकांक्षी पहल एक भारत श्रेष्ठ भारत युवा संगम कार्यक्रम के तहत पुडुचेरी और हिमाचल के बीच सांस्कृतिक व शैक्षणिक आदान प्रदान की नई शुरुआत हुई है। इसके तहत NIT पुडुचेरी के 48 छात्रों और 5 फैकल्टी समन्वयकों का एक दल आज केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला पहुंचा। इस मौके पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सत प्रकाश बंसल ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य केवल शैक्षणिक भ्रमण नहीं बल्कि देश के विभिन्न राज्यों के युवाओं के बीच भावनात्मक जुड़ाव और अनुभव आधारित सीख को बढ़ावा देना है।
2: शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा हर वर्ष एक भारत श्रेष्ठ भारत युवा संगम कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों का शिक्षा के बारे में और आपस में परस्पर आदान प्रदान हो उसके लिए ये पहल रहती है कि कोई भी दो स्टेट्स का पेयर बनाया जाए और वहाँ के बच्चे आपस में एक दूसरे की स्टेट में जाएं और वहाँ पर जाकर के उसके बारे में अपने रिपोर्ट तैयार करते हैं और वो रिपोर्ट वो शेयर करते हैं। तो इसी के अंतर्गत केंद्रीय विश्वविद्यालय को इस वर्ष पुडुचेरी के साथ

0: जिसकी मेजबानी एनआईटी पुडुचेरी कर रही है और हिमाचल के साथ 48 बच्चे एनआईटी पुडुचेरी से आज यहां पहुंच चुके हैं।
1: हिमाचल प्रदेश मिडडे मील वर्कर यूनियन और आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन ने राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आंगनवाड़ी हेल्पर और मिडडे मील वर्करों की ड्यूटी पंचायत चुनाव में पोलिंग पार्टियों के लिए खाना बनाने के लिए लगाने का विरोध किया है। मिडडे मील वर्कर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष संदीप कुमार और सचिव शांति ने कहा कि चुनाव ड्यूटी में लगे सभी कर्मचारियों को वेतन मिलता है, लेकिन मिडडे मील वर्करों को इस कार्य का कोई वेतन नहीं दिया जाता। उन्होंने निर्वाचन आयोग से मांग की है कि पंचायत चुनावों में मिडडे मील वर्करों और आंगनवाड़ी वर्करों व हेल्परों की ड्यूटी न लगाई जाए। प्रदेश विधानसभा सचिवालय में बीते रोज और आज लोक लेखा समिति की बैठकों का आयोजन किया गया। इन बैठकों की अध्यक्षता सभापति अनिल शर्मा ने की। बैठकों में विधायक रणधीर शर्मा, संजय रतन, जीतराम कटवाल, बलेंद्र राजन, केवल सिंह पठानिया और चंद्रशेखर ने हिस्सा लिया। इन बैठकों में समिति ने लोक निर्माण व उद्योग विभाग से संबंधित प्राप्त विभागीय उत्तरों पर विचार विमर्श किया। प्रदेश में तापमान में वृद्धि लगातार जारी है। तापमान बढ़ने से राज्य के मैदानी जिलों में लोगों को जोरदार गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने आज कांगड़ा, कुल्लू, सोलन और किन्नौर जिलों में अलग अलग स्थानों पर लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच विभाग ने कहा है कि हिमालय क्षेत्र में ताजा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है। इसके प्रभाव से आज से 25 मई तक राज्य के मध्यम व अधिक ऊंचाई वाले अलग अलग स्थानों पर वर्षा की संभावना है, जिससे लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत की उम्मीद है। विभाग ने 21 और 22 मई को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों में अलग अलग स्थानों पर वर्षा होने, अंधड़ और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी तूफान चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया है। इस बीच प्रदेश के अधिकांश पर्यटक स्थलों पर इन दिनों मौसम सुहावना बना हुआ है और भारी संख्या में पर्यटक यहां घूमने के लिए पहुंच रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए सरकार चला रही है अनेक योजनाएं। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए प्रचार लगातार जारी। 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में होगा मतदान। नगर निकाय चुनाव नतीजों पर राजनीति जारी। जगत सिंह नेगी ने भाजपा पर लगाया बढ़ा चढ़ाकर जीत के दावे पेश करने का आरोप। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, नगर निकाय चुनावों में जीत के झूठे आंकड़े पेश कर पंचायत चुनावों को प्रभावित करना चाहती है कांग्रेस। और सुप्रीम कोर्ट का लावारिस कुत्तों को नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व के निर्देशों को वापस लेने से इनकार। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर व धर्मशाला केंद्रों के साथ ही FM बैंड 103.7 MHz, मोबाइल ऐप और रेडियो की DTH सेवा पर भी सुना गया। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें। मीडियम वेव और FM बैंड पर हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुने देशगान।

0: देशगान अभी आपने सुना, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें। मीडिया वेब पर
1: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला का प्रसारण। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एफएम शिमला पर। हमारी स्टूडियोज़ की घड़ी में 8 बजे हैं एफएम शिमला पर। वक्त है भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का। वक्त की रफ्तार चाहे कितनी भी तेज हो, पर कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो ठहर जाती है। वो आवाज़ें जो आज भी हमें हमारे बचपन, पुरानी गलियों और उस पहली मोहब्बत की याद दिलाती है। लीजिए सुनिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में उड़न खटोला फिल्म का गीत, गीत के बोल शकील बदायूनी के, संगीत नौशाद का।

0: गांव की पहचान होती है उसकी मजबूत पंचायत से, और पंचायत मजबूत बनती है आपके एक वोट से।
1: क्योंकि ईमानदारी और बिना किसी के प्रभाव में आए दिए गए आपके वोट ही तय होते हैं गांव, और बनती है सड़क, पानी, स्वच्छता और रोजगार संबंधी नीतियाँ।
0: इसीलिए 26 मई, 28 मई और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपनी भागीदारी निभाएं।
1: अपने परिवार और गांव वालों को भी जागरूक बनाएं और 100% मतदान के संकल्प को हासिल करने का लक्ष्य बनाएं।
0: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
2: FM शिमला पर आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत कार्यक्रम। लीजिए सुनिए गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाज़ों में मिस्टर और मिसेज बचपन फिल्म का गीत, गीत के बोल मजरूह के संगीत ओपी नैयर का।

0: चुनाव सिर्फ एक शब्द नहीं, ये है सच्चे लोकतंत्र की नींव, और मतदान है एक जागरूक नागरिक की पहचान, जिसे इस्तेमाल कर वो तय करते हैं अपने क्षेत्र, राज्य और देश की दशा व दिशा।
1: तो आइए अपनी जिम्मेदारी निभाएं, आगामी पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर भाग लें और गांव के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।
0: आपका एक एक वोट तय करेगा पंचायत का भविष्य। तो निर्धारित तिथि को अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर सोच समझ कर और बिना किसी प्रभाव के मतदान जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी ही नहीं अधिकार है।
1: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: FM शिमला पर आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत कार्यक्रम। लीजिए सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में जिस देश में गंगा बहती है फिल्म का गीत, गीत के बोल हसरत जयपुरी के, संगीत शंकर जयकिशन का।

0: आपका गांव है आपका गर्व, इसको विकसित बनाने के लिए आइए मिलके मनाएं लोकतंत्र का पर्व।
1: हो चुकी है देवभूमि हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा। ये मतदान 3 चरणों में 26, 28 और 30 मई को होगा। ऐसे में आए एक सच्चा नागरिक बनकर मिलकर निभाएं जिम्मेदारी और भारी संख्या में मतदान देकर दिखाएं अपनी भागीदारी।
0: आपका हर एक कीमती वोट आपके गाँव की दशा और दिशा तय करेगा, तो अपने मताधिकार का प्रयोग करना ना भूलें। राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: हमारा गांव है हमारी पहचान, हमारा गांव है हमारा अभिमान। आइए मिलकर दें इसके विकास में अपना योगदान।
1: हम सब ने ठाना है कि 100% मतदान के लक्ष्य को पाना है।
0: पंचायत चुनाव आ रहे हैं, जहां आपका हर ईमानदारी से दिया गया वोट तय करता है गांव की दशा और दिशा, साथ ही बनता है गांव के विकास का आधार।
1: तो 26, 28 और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और अपने परिवार और आस पास के हर वोटर को मतदान के लिए प्रेरित करे।
0: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
2: FM शिमला पर आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत कार्यक्रम। लीजिए सुनिए आशा भोसले की आवाज में स्वर्ण सुंदरी फिल्म का गीत। गीत के बोल भरत व्यास के, संगीत आदि नारायण राव का है।

0: हिमाचल के युवाओं, अब सिर्फ सोशल मीडिया पर ओपिनियन देने का नहीं, वोट देने का भी वक्त आ गया है।
1: इस पंचायत इलेक्शन में 50 लाख से ज्यादा वोटर्स अपने मत का अधिकार इस्तेमाल करेंगे और हजारों फर्स्ट टाइम वोटर्स भी बनेंगे इस बदलाव का हिस्सा। 26 मई, 28 मई और 30 मई, याद रखिए ये तारीखें।
0: आपकी एक वोट आपके गाँव की सोच, विकास और लीडरशिप को तय करेगी। तो निकलिए घर।

0: से और बनिए जिम्मेदार नागरिक। पंचायत चुनाव 2026 वोट जरूर करें।
1: आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में माया फिल्म का गीत, गीत के बोल मजरूह के संगीत सलील चौधरी का

0: भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आज बस इतना ही। आप यूं ही सुनते रहिए एफएम शिमला का प्रसारण।
1: हिमाचल में फिर से सज गया है लोकतंत्र का महापर्व, पंचायत चुनाव 2026।
2: 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में होने जा रहे हैं पंचायत इलेक्शंस, जहां आपकी एक वोट तय करेगी आपके गांव का कल।
1: सड़क, पानी, सफाई, रोजगार और गांव के विकास से जुड़े फैसलों में आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है।
2: इस बार बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए और चुनिएगा ईमानदार, योग्य और जिम्मेदार प्रतिनिधि। हिमाचल पंचायत इलेक्शंस 2026, मजबूत पंचायत, मजबूत हिमाचल।
0: एक सौ 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला का प्रसारण। 8:30 हुए हैं। लीजिए पेश है फिल्म संगीत। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में लीजिए सुनिए कर्ज फिल्म का गीत। गीत के बोल आनंद बख्शी के, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।
3: कितने बरस की?
4: मैं 16 बरस की।
3: तो मैं 17 बरस का।
4: 16
3: 17
4: 17
3: 16

0: गांव की पहचान होती है उसकी मजबूत पंचायत से, और पंचायत मजबूत बनती है आपके एक वोट से।
1: क्योंकि ईमानदारी और बिना किसी के प्रभाव में आए दिए गए आपके वोट ही तय होते हैं गांव, और बनती है सड़क, पानी, स्वच्छता और रोजगार संबंधी नीतियाँ।
0: इसीलिए 26 मई, 28 मई और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपनी भागीदारी निभाएं।
1: अपने परिवार और गांव वालों को भी जागरूक बनाएं और 100% मतदान के संकल्प को हासिल करने का लक्ष्य बनाएं।
0: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
2: लता मंगेशकर और जॉली मुखर्जी की आवाज़ों में लीजिए सुनिए आईना फिल्म का ये गीत।

फिल्म संगीत में आज बस इतना ही। आप यूं ही सुनते रहिए एफएम शिमला का प्रसारण। 8:45 होने को हैं अब। आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे न्यूज़ एट 9।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबीज से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी, दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: श्री मोदी ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
1: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्नत भागीदारी के जरिए प्रत्येक नॉर्डिक देश की विशेषज्ञताओं का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं, स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं।
1: वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत हैं कि

0: मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है, और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है, नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड।
1: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत के राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: सुश्री राव ने बताया कि यह यात्रा समुद्री सुरक्षा, मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं, व्यापार साझेदारियों और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ठोस परिणाम देने का लक्ष्य रखती है और इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण समझौतों की घोषणा होने की उम्मीद है। इटली में भारतीय समुदाय के बारे में बात करते हुए भारत की राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि भारतीय प्रवासी समुदाय ने डेयरी और कृषि सहित कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय की गतिशीलता और कल्याण से जुड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान चर्चा हो सकती है। सुपर्णा भाटिया, रोम से।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बेक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलों की तलाश करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। श्री प्रधान ने कहा कि दोबारा परीक्षा सख्त सुरक्षा नियमों के अंतर्गत सुरक्षित, बिना किसी रुकावट के और पूरी तरह से पुख्ता तरीके से आयोजित की जानी चाहिए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाश अभियान चलाकर कथित नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 23 मई तक आवेदन जमा करा सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2031 तक बस्तर के लोगों के औसत आमदनी में 6 गुना वृद्धि करना है। उन्होंने कहा कि बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर अगले 5 सालों के लिए इसके विकास से संबंधित एक वैज्ञानिक प्रारूप तैयार किया है।
2: 19 मई 2026 की ये तिथि है कि जहां से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया जा रहा है। बस्तर के 7 जिले को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा यहां पर करीब करीब 200 सुरक्षा कैंप बनाए।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने, भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और विकसित भारत की दिशा में देश की प्रगति के लिए उद्योग और सरकार के बीच सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है।

0: नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री गोयल ने ये बात कही।
1: That we will convert the current situation.
2: हम दुनिया की भू राजनीतिक परिस्थितियों और उनसे जुड़े जोखिमों को तेज सुधारों के अवसर में बदलेंगे, खुद को अधिक मजबूत और लचीला बनाने की तैयारी करेंगे, अपनी सप्लाई चेन को और सशक्त करेंगे, और दुनिया जो भी अवसर दे रही है तथा भारत जो अवसर दुनिया को प्रदान कर रहा है उसके पूरे लाभ उठाएंगे। उदाहरण के तौर पर वे 38 देश जो एक के बाद एक मुक्त व्यापार समझौते के ढांचे में शामिल हो रहे हैं।
0: वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का लक्ष्य 2030-31 तक 350 अरब डॉलर का कपड़ा बाजार बनाना है। इसमें 100 अरब डॉलर का निर्यात शामिल होगा। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि टिकाऊ और प्राकृतिक फाइबर ही कपड़ा क्षेत्र के भविष्य को आगे बढ़ाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उर्वरक प्राप्त करना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। ओडिशा के भुवनेश्वर में श्री चौहान ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद केंद्र सरकार किसानों के लिए पर्याप्त उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबी से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दे दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी का दुष्कर्म मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। इससे पहले इस मामले में सियालदह सत्र अदालत ने संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने आज फालता विधानसभा क्षेत्र में होने वाले आगामी पुनर्मतदान से अपना नाम वापस लेने की घोषणा की है। भाजपा के नेतृत्व वाली नई सरकार के विशेष पैकेज की उन्होंने सराहना की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। रूस ने बताया है कि श्री पुतिन 12 और 13 सितंबर को सम्मेलन में शामिल होंगे। एक साल के अंदर श्री पुतिन की ये दूसरी भारत यात्रा होगी। इससे पहले वो दिसंबर 2025 में भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली आए थे। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में कारीगरों और बुनकरों के एक समूह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आज राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपनी प्रतिभा दर्शाने के लिए मंच प्रदान करने पर राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रपति ने कारीगरों और बुनकरों को सहायता देने की जरूरत पर बल दिया ताकि उनका हुनर अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके और वे आत्मनिर्भर बन सकें। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 114 अंक गिरकर 75,201 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 32 अंक लुढ़ककर 23,618 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 18 पैसे कमजोर होकर 96.53 रुपए के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
1: मौसम विभाग ने गुरुवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली NCR में भीषण लू की आशंका है। अगले 2 से 3 दिन के लिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश या मराठवाड़ा और उड़ीसा में लू चलने की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि 21 मई तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, बिहार, गंगा के मैदानी, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में गरज के साथ तेज हवाओं का अनुमान है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान

0: केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एक दिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उपकप्तान होंगे। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक लखनऊ सुपर जायंट्स ने 16 ओवर में 2 विकेट पर 182 रन बना लिए हैं। राजस्थान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबी से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी। दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी and I am Subhadra Ramachandran with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says investments from Nordic countries in India rose by 200% in past decade, attends third India-Nordic summit in Oslo with counterparts from Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark. Education Minister Dharmendra Pradhan reviews preparation for NEET UG re-examination to be held next month. Supreme Court allows euthanasia for rabid and dangerous stray dogs to protect human life. Russian President Vladimir Putin to attend New Delhi BRICS summit in September this year. IMD warns of severe heatwave conditions in northern India, forecast heavy rainfall in southern region. In cricket, Shubman Gill to lead Indian squads in Test and ODI series against Afghanistan. India and the Nordic nations, comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland, have elevated their bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the third India-Nordic summit in Norwegian capital Oslo today.
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: Prime Minister Narendra Modi said investments from Nordic countries in India rose by 200% in the past decade.
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: Prime Minister Modi affirmed that the relations between India and the Nordic countries are set to usher in a new golden era with the recently concluded trade agreements, including trade and economic partnership and India-EU free trade deal. On terrorism, Mr. Modi said the two sides have a clear and united stand, no compromise, no double standards.
2: आज हम सब ने मिलकर ग्लोबल इश्यूज पर भी विचार साझा किए। वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे। और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया,

0: Pradhan reviews preparation for NEET UG re-examination to be held next month. Supreme Court allows euthanasia for rabid and dangerous stray dogs to protect human life. Russian President Vladimir Putin to attend New Delhi BRICS Summit in September this year. IMD warns of severe heatwave conditions in northern India, forecasts heavy rainfall in southern region. In cricket, Shubman Gill to lead Indian squads in Test and ODI series against Afghanistan. That's all in the news at 9. Good night.
1: एक सौ 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला का प्रसारण। एक बार फिर से स्वागत आप सभी का एफएम शिमला पर। रात्रि के 9:15 हुए हैं एफएम शिमला पर। अब वक्त है एक फिल्म से कार्यक्रम का, और आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे 70 के दशक की एक ऐसी सुपरहिट फिल्म की जिसके गीत, कहानी और कलाकारों ने दर्शकों के दिलों में अपनी अलग जगह बनाई। जी हां, आज हम बात करेंगे लोफर फिल्म के बारे में। ये फिल्म 1973 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। इसका निर्देशन ए भीम सिंह ने किया है। फिल्म में धर्मेंद्र, मुमताज, ओम प्रकाश, प्रेमनाथ और के एन सिंह ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं।

0: चुनाव सिर्फ एक शब्द नहीं, ये है सच्चे लोकतंत्र की नींव, और मतदान है एक जागरूक नागरिक की पहचान, जिसे इस्तेमाल कर वो तय करते हैं अपने क्षेत्र, राज्य और देश की दशा व दिशा।
1: तो आइए अपनी जिम्मेदारी निभाएं, आगामी पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लें और गांव के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।
0: आपका एक एक वोट तय करेगा पंचायत का भविष्य। तो निर्धारित तिथि को अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर सोच समझ कर और बिना किसी प्रभाव के मतदान जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी ही नहीं अधिकार है।
1: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: FM शिमला पर आप सुन रहे हैं एक फिल्म से कार्यक्रम, और आज हम बात कर रहे हैं लोफर फिल्म के बारे में। फिल्म में धर्मेंद्र ने एक ऐसे युवक रणजीत का किरदार निभाया है जिसे समाज लोफर कहता है, लेकिन हालात और परिस्थितियां उसे गलत रास्ते पर ले जाती है। रणजीत एक जेबकतरा बन जाता है और बदमाशों की एक गैंग के लिए काम करता है, लेकिन वो दिल का अच्छा इंसान है।

फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है। रंजीत के जीवन में अंजू नाम की लड़की यानी मुमताज की एंट्री होती है। अंजू को लगता है कि रंजीत एक शरीफ और बड़ा आदमी है। रंजीत को भी अंजू से प्यार हो जाता है और वो अपनी बुरी ज़िंदगी को छोड़ने का फैसला करता है।

लेकिन गैंग का बॉस रंजीत को ब्लैकमेल करता है और उसे एक आखिरी बड़ी चोरी करने के लिए मजबूर करता है। क्या रंजीत इस दलदल से बाहर निकल पाता है? क्या अंजू उसके अतीत को जानने के बाद भी उसे अपनाती है? इसके लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी।

ये फिल्म मनोरंजन के साथ साथ समाज को ये संदेश देती है कि इंसान परिस्थितियों का शिकार हो सकता है, लेकिन अगर दिल और इरादे अच्छे हों तो वह हर मुश्किल से बाहर निकल सकता है।

0: एक फिल्म से कार्यक्रम में आज बस इतना ही। आप यूं ही सुनते रहिए एफएम शिमला का प्रसारण।
1: आकाशवाणी के साथ जुड़िए और अपने उत्पाद और सर्विसेज यानी सेवाओं से जुड़े अपने कारोबार के बारे में सस्ते दामों पर विज्ञापनों के माध्यम से प्रचार प्रसार कर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें।
2: शुभवाणी, लाभवाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
1: नियम और शर्तें लागू।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला का प्रसारण। 9:30 हुए हैं एफएम शिमला पर। वक्त है दिल की आवाज़ भी सुन कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम में आज हम आपको फिल्मी गीत सुनवाएंगे। कार्यक्रम में लीजिए सुनिए कुमार सानू की आवाज़ में एक लड़का एक लड़की फिल्म का गीत, गीत के बोल मजरूह के, संगीत आनंद मिलिंद का।

लीजिए सुनिए आशा भोसले और शब्बीर कुमार की आवाज़ों में सोहनी महिवाल फिल्म का गीत, गीत के बोल आनंद बख्शी के, संगीत अन्नू मलिक का।

0: दिल की आवाज़ भी सुन कार्यक्रम में आज बस इतना ही। आप यूं ही सुनते रहिए FM शिमला का प्रसारण।
1: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला का प्रसारण। रात्रि के 10 बजे हैं। लीजिए पेश है गजलें। आइए सुनते हैं गुलाम अली की आवाज में ये गजल।

चलो हंसने की कोई हम वजह ढूंढते हैं, ना हो जिधर कोई गम वो जगह ढूंढते हैं। लीजिए सुनिए चंदनदास की आवाज़ में ये गज़ल।

एफएम शिमला पर आप सुन रहे हैं गजलें। लीजिए सुनिए चित्रा सिंह और जगजीत सिंह की आवाजों में ये गजल।

0: गजलें अभी आपने सुनी, आप सुन रहे हैं FM शिमला का प्रसारण।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला का प्रसारण। रात्रि के 10:30 हुए हैं। एफएम शिमला पर वक्त है सदाबहार नगमे कार्यक्रम का। कार्यक्रम में लीजिए सुनिए किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में कामचोर फिल्म का ये गीत।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में लीजिए सुनिए झुक गया आसमान फिल्म का गीत, गीत के बोल हसरत जयपुरी की, संगीत शंकर जयकिशन का।

FM शिमला पर आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे कार्यक्रम। लीजिए सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में विधाता फिल्म का गीत, गीत के बोल आनंद बख्शी के, संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

लता मंगेशकर की आवाज़ में शारदा फिल्म का गीत अभी आपने सुना। गीत के बोल आनंद बख्शी के थे, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। FM शिमला पर आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे कार्यक्रम। लीजिए सुनिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आए दिन बाहर की।

कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनिए आरजू फिल्म का गीत, आवाज़ लता मंगेशकर की है। गीत के बोल हसरत जयपुरी के, संगीत शंकर जयकिशन का।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम में आज बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए FM शिमला का प्रसारण। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में।

0: समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में द्विपक्षीय व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं और स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात राजधानी रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा का आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलों पर चर्चा करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाशी अभियान चलाया। सर्वोच्च न्यायालय ने जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेबीज से संक्रमित और जानलेवा कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजीकर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण अब 99.6% तक पहुंच गया है। देश में 69,873 किलोमीटर से अधिक रेलमार्ग का विद्युतीकरण किया जा चुका है। मणिपुर के महान नाटा संकीर्तन गुरु युमनाम जात्रा सिंह को 25 मई को राष्ट्रपति भवन में मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नागरिक अलंकरण समारोह के दौरान यह पुरस्कार प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली NCR में भी भीषण लू की चेतावनी है। अगले 2 से 3 दिनों तक

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी FM शिमला से बोल रहे हैं। रात्रि की 11:10 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा समाप्त होती है। कल प्रातः 5:55 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। जय हिंद।